FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 31 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के समूचे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलो।

0: टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज के विचार हैं मन विषय पर।

प्रकाश देने वाले दीपक को देखने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार स्वप्रकाशित आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा अपरिवर्तनशील है। बुद्धि का कोई स्वयं प्रकाश नहीं होता और ये आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। यदि बुद्धि सांसारिक विषयों को समझ और जान पाती है तो ये आत्मा की शक्ति के कारण है। बुद्धि का आधार मेधा शक्ति है। बुद्धि की शक्ति आत्म चैतन्य की प्रतिछाया है। मन के दो पहलू हैं, कर्ता और भोक्ता। ये आसक्ति भाव और स्वामित्व भाव का कारण है। सुषुप्ति की अवस्था में परम चैतन्य प्रकाशित रहता है तथा मन, इंद्रियां और बुद्धि निष्क्रिय रहते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपा लोहा अग्नि से भी अधिक लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति का चैतन्य प्रकाशित होता है। जब सुषुप्ति में मन निष्क्रिय हो जाता है तो अतिमानस सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य में कोई इच्छा, भय या चिंता नहीं होते। मनुष्य इंद्रियों और मन द्वारा बंधा है। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे पहले मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन स्थिर होने पर अतिमानस की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में भौतिक या क्षणभंगुर सांसारिक अनुभवों के लिए स्थान नहीं होता। जब तक मन पवित्र है तब तक हृदय में कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। जब मन अशुभ भावों से प्रदूषित होता है तो बुरे विचारों को जन्म लेने का अवसर मिलता है। हमें इस तथ्य को जानना है कि मानव जीवन मन पर आधारित है। जब तक मनुष्य मन द्वारा संचालित होता है तब तक विराट चैतन्य के असीम स्वरूप का अनुभव नहीं होता। हम एक बड़ा मकान बनवाते हैं जिसमें अनेक शयन कक्ष, भोजन कक्ष, स्नानागार आदि होते हैं। ये बड़ा मकान

0: अनेक छोटे कमरों में विभाजित प्रतीत होता है। इसका कारण अंदर की दीवारें हैं। यदि दीवारें हटा दी जाएं, तो एक बड़ा कक्ष रह जाएगा। इसी प्रकार मानव शरीर वो उपाधि या दीवार है जो मनुष्य की अनुभूति को शरीर तक सीमित करती है। एक बार इस देहात्म भाव से मुक्त हो जाने पर सर्वव्यापी सार्वभौमिक विराट चैतन्य का अनुभव होता है। जिस प्रकार हाथ, कान, आँख, पांव सभी मानव शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य समाज के अंग हैं। समाज मानवता का अंग है, मानवता प्रकृति का अंग है और प्रकृति ईश्वर का अंग है। ईश्वर और मनुष्यों के इस अंग अंगी भाव संबंध को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। यद्यपि मनुष्य बुद्धि से युक्त है, किंतु वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। मनुष्य को मानव जीवन के महान महत्व को समझना चाहिए जो अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। देहात्म भाव के कारण मनुष्य अपना अंतर्निहित दिव्यत्व भूल रहा है। प्रकृति तथा सांसारिक विषयों के बारे में काफी अध्ययन करने पर भी हम कृत्रिम जीवन जीते रहते हैं। आज संसार में न केवल व्यक्ति की इंद्रियां प्रदूषित हैं, अपितु पांचों तत्व भी प्रदूषित हैं। वायु, जल, जो वस्तु भी हम देखते हैं वो प्रदूषित है। अतः इस संसार में शांति की आशा कैसे की जा सकती है? वेदांत शिक्षा देता है कि हमें मन के पार जाकर अंतर्दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, ताकि हम बुरी भावनाओं को हृदय में प्रवेश करने और ईश्वर के निवास को प्रदूषित करने से रोक सकें।
1: मन, इस विषय पर आज थे विचार विचार बिंदु में। आकाशवाणी अल्मोड़ा से हम बोल रहे हैं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत आराधना।

0: आराधना के प्रथम भजन पुष्पांजलि अर्पित है चिदानंद स्वरूप शिवोहम प्रभो भोलेनाथ शिव को। स्वर रूप कुमार राठौर, रविंद्र साठे, गौरव और ध्रुव के।
1: जब शिवोहम भाव हृदय में जागृत होता है और सत चित और आनंद की अनुभूति होने लगती है, तब चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।

राम नाम की लौ लगी, राम नाम की लौ लगी, जीवन लिया सवार, राम नाम की महिमा अपरंपार। जिसे राम नाम का संबल मिल जाए जीवन में, उसे फिर और क्या चाहिए, बस राम का गुणगान कर सकूं, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा नाथ। आइए मिलकर प्रभु श्री राम का गुणगान करें पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के संग।

राधे मोहन बनवारी, राधे में प्राण कृष्ण के बसे, सारा संसार तुम दोनों पर ही वारी वारी। आराधना के समापन की भजन पुष्पांजलि को स्वर दिया है पीयूषा कैलाश अनुज ने।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज की बात। श्रोतों, आज है 31 मई। आज इतिहास में क्या घटा खास, जानिए आज की बात में। सभी श्रोताओं को अंजू पांक्ति का नमस्कार। श्रोतों, ब्रिटिश खोजकर्ता मार्टिन ट्रॉबिसर ने 31 मई 1578 को अपनी तीसरी आर्कटिक यात्रा शुरू की थी। इस अभियान में कुल 15 जहाज और लगभग 400 व्यक्ति शामिल थे। ये उस समय तक का सबसे बड़ा इंग्लिश आर्कटिक अभियान था। उनका उद्देश्य उत्तरी अमेरिका के रास्ते एशिया पहुँचने के लिए नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज करना था। 31 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह ने उग्र रूप ले लिया था। ये तिथि पहले से तय की गई थी, जब विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ उठ खड़े हुए थे। इस दिन ब्रिटिश प्रतिष्ठानों, सेना छावनियों और सरकारी इमारतों पर हमले हुए, जिससे ये आंदोलन बड़ी जनक्रांति बन गया। ये दिन 1857 की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। श्रोतों, 31 मई 1910 को ब्रिटेन ने चार उपनिवेशों, केप कॉलोनी, नटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट को मिलाकर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना की। लुईस बोथा पहले प्रधानमंत्री बने। ये एक डोमिनियन स्टेट्स वाली सरकार थी, जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन लेकिन आंतरिक रूप से स्वायत्त थी। इस नई राजनीतिक संरचना में श्वेत अल्पसंख्यकों को सत्ता और अधिकार मिले, जबकि अश्वेत अफ्रीकी, एशियाई और रंग भेद श्रेणी के लोगों को मताधिकार और समान अधिकारों से वंचित रखा गया। यही व्यवस्था आगे चलकर रंग भेद नीति की नींव बनी, जिसने दक्षिण अफ्रीका को दशकों तक जातिवाद, भेदभाव और संघर्ष के दौर में डाले रखा। तिरंगे के इतिहास में भी आज का दिन बहुत खास है। 31 मई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजयवाड़ा अधिवेशन में पहली बार पार्टी के झंडे को अनौपचारिक मान्यता दी। ये झंडा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें दो रंग लाल और हरा शामिल किए गए और बीच में चरखा रखा गया। महात्मा गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग जोड़ा गया, जो अन्य समुदायों और शांति का प्रतीक बना। ये झंडा आगे चलकर कुछ बदलावों के साथ 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र आया। इस तरह 1921 का ये झंडा तिरंगे की नींव बना। श्रोतों, 31 मई 1929 को मिकी माउस को पहली बार स्थायी आवाज मिली थी, और ये आवाज खुद वॉल्ट डिज्नी ने दी थी। इससे पहले मिकी माउस की शुरुआती शॉर्ट फिल्मों में कोई स्थायी संवाद या स्पष्ट आवाज शामिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1929 में आई फिल्म द कार्निवल किड में मिकी माउस ने पहली बार बोलना शुरू किया, और उसका पहला संवाद था हॉट डॉग्स। ये मिकी माउस के करियर में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, क्योंकि इससे वो एक मूक कार्टून कैरेक्टर से एक जीवंत और बोलने वाले किरदार में बदल गया। इसने न सिर्फ मिकी को लोकप्रिय बनाया, बल्कि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो को भी नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। और श्रोताओं, आज 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में तंबाकू के उपयोग और इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए की थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना और सरकारों को तंबाकू नियंत्रण की नीतियां लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों और कई अन्य घातक बीमारियों का मुख्य कारण है। ये दिन हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और दूसरों को भी तंबाकू मुक्त रहने के लिए प्रेरित करने का संदेश देता है। श्रोतों, आज 31 मई को विश्व तोता दिवस यानी वर्ल्ड पैरट डे के रूप में भी

मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तोतों की विविधता, सुंदरता और बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही उनके संरक्षण के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करना भी है। तोते अपने रंग बिरंगे पंखों, मानव जैसी बोलने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आज जलवायु परिवर्तन और अन्य कई कारणों से इनकी कई प्रजातियां संकट में हैं। आइए हम सब मिलकर इन अद्भुत पक्षियों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। श्रोतों, मालवा की सुप्रसिद्ध शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर की आज जन्म जयंती है। वो अपने न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और जन कल्याणकारी शासन के लिए जानी जाती रही हैं। 31 मई 1725 में उनका जन्म हुआ था। अहिल्याबाई ने नर्मदा के किनारे बसे इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और वहां से सुशासन चलाया। उन्होंने देश भर में मंदिरों, कुओं, धर्मशालाओं और घाटों का निर्माण करवाया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार प्रमुख है। वो एक आदर्श शासिका और महान समाज सेविका थीं। उनका जीवन सरलता, दया और नारी शक्ति का प्रतीक है। आज भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। 13 अगस्त सन 1795 को उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ली। तो श्रोताओं, आज की बात में बस इतना ही। अंजू पांक्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज की बात अभी आप सुन रहे थे और प्रस्तुत है समूह स्वरों में देश गान।

0: समूह स्वरों में देश गान अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है विविधा।
1: श्रोताओं, आज है रविवार और आज की विविधा के साथ हाजिर हूँ मैं अंजू पांगति। नमस्कार।
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। सच, बीता लम्हा लौट कर कहाँ आता है। रिश्तों को मौन रहकर नहीं बल्कि जज्बातों को बयां करके ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसीलिए जरूरी है जिंदगी में संवाद का होना, जो रिश्तों के बंधन को और भी मजबूत बनाते हैं। भले ही हम इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़े रहते हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में संवाद कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं। आज बातचीत हमारी जिंदगी में घटती जा रही है। अब संवाद इमोजी और मैसेजेस के जरिए ज्यादा हो रहा है। सेल्फ पेमेंट काउंटर, ऑनलाइन बुकिंग, GPS जैसी तमाम तकनीकी सुविधाएं बातचीत के मौके भी कम करते जा रहे हैं। बदलता संवाद कहीं हमारे रिश्तों और मानसिक सुकून को कमजोर तो नहीं कर रहा, ये सोचने वाली बात है। परिवार के सभी लोग साथ बैठे रहते हैं, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। बातें हो रही हैं पर चैट बॉक्स में, मुलाकात है पर नजरें स्क्रीन पर, हम हंसते हैं इमोजी से, बहस करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। एक वैश्विक सर्वे में बताया गया है, साल 2005 से 2019 के बीच लोगों के बोले गए शब्दों में लगभग 28% की कमी आई है। अब सवाल ये है कि क्या सच में सेल्फ चेकआउट, GPS नेविगेशन, टच स्क्रीन ऑर्डरिंग कियोस्क से प्रभावित समाज में हम धीरे धीरे साइलेंट मोड में तो नहीं जा रहे। गौर कीजिए, साल 2005 में हम अगर बातचीत में हर दिन लगभग 16,000 शब्द साझा कर रहे थे, तो आज ये संख्या लगभग 5,000 रह गई है। जाहिर है अब हम बोलने से ज्यादा लिख कर बात करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि इस बदलाव की वजह से हर साल हमारी बातचीत से एक किताब के लगभग 20 पन्नों के बराबर शब्द गायब हो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो साल 2035 तक शायद बातचीत शब्दों से नहीं बल्कि इशारों, स्क्रीन और कीबोर्ड पर चलती उंगलियों से होगी। एक वैश्विक सर्वे में शामिल लगभग 68% लोगों ने माना भी कि मैसेजिंग ने फोन कॉल्स की जगह ले ली है। शायद यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी दुनिया डिजिटल रूप से जितनी कनेक्टेड हो रही है, हमारी मौखिक भाषा उतनी ही कम होती जा रही है। मसरूफियत बढ़ी तो मुलाकातें कम हुई, और रही सही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी। हम अनजाने में एक ऐसे मूक सफर पर चल पड़े हैं जहां चुप्पी बढ़ रही है। वॉक पर निकलें, किसी को गुड मॉर्निंग कहना, बस स्टैंड पर मौसम की चर्चा करना या किसी अजनबी से रास्ता पूछना, ये छोटे पल हमारे सामाजिक ताने बानों को मजबूती प्रदान करते थे। इनका हमारी जिंदगी से चले जाना कुल शब्द संख्या को सीधे प्रभावित करता है। भले ही हम दिन भर व्हाट्सएप, ईमेल या स्लैक पर हजारों शब्द टाइप करते हों, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि टाइपिंग कभी भी बोलने का विकल्प नहीं हो सकता। बोलचाल में आने वाली कमी शायद हमें प्रतिदिन स्पष्ट रूप से महसूस ना हो, लेकिन दशकों के अंतराल में ये हमारी आपसी जुड़ाव के बुनियादी तरीकों को पूरी तरह से बदल देगी। कम बोलने का सीधा अर्थ है लोगों से कम जुड़ना। यदि लोग आपस में संवाद कम कर देंगे तो वो सामाजिक मेलजोल से मिलने वाले तात्कालिक भावनात्मक सुकून से वंचित होंगे। साथ ही आज के दौर में बढ़ते ऑटोमेशन और डिजिटल निर्भरता ने हमारी जिंदगी को सुविधाजनक जरूर बनाया है, लेकिन अकेलापन भी इसी वजह से है। बोलचाल संवाद बढ़ाने के लिए कुछ बातों को हम अपनी जिंदगी में अपनाएं तो परिणाम खुद महसूस कर सकते हैं। सेहत के लिए मौन अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बातचीत को इमोजी, रिएक्शन बटन, जिफ, एनिमेटेड थम्स अप जैसे भावनात्मक संकेत में ही समेट कर रखते हैं। ये कभी भी आमने सामने की बातचीत जैसा असर नहीं छोड़ सकते। संवाद की वापसी के लिए कुछ कदम हम सभी को
1: उठाने होंगे ताकि हम खुशहाल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकें। सप्ताह में एक दिन इंटरनेट और गैजेट से दूरी बनाकर ऑफिस हो या घर खाते समय फोन का इस्तेमाल वर्जित करके भी हम एक अच्छी पहल कर सकते हैं। किसी पर्व त्योहार पर सिर्फ व्हाट्सएप पर बधाई देने के बजाय पड़ोसियों से मिलें, किसी को लंबे मैसेज टाइप करने के बजाय छोटी ही सही पर कॉल जरूर करें। आवाज की गर्माहट रिश्तों को और भी बेहतर बनाती है। सप्ताह में एक बार खुद बाजार जाएं, जरूरत की चीजें मोल भाव कर खरीदें, इससे भी संवाद बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो श्रोताओं, इससे पहले कि जिंदगी में खामोशी को हम ज्यादा जगह दें, उससे ज्यादा जरूरी है आपसी बातचीत को बढ़ावा दें ताकि मुस्कुराहट भरी खुशहाल जिंदगी के मायने हम समझ पाएं और इसे जी सकें। तो आज की विविधा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए अंजु पांक्ति को, नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थी विविधा आज की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह श्री लाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः 5-दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक ISI मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष CP अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्ण स्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्री शुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्ति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन नाउ लाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा में श्री ए वीरैया का कर्नाटक शैली में सैक्सोफोन वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। प्रातः 7:45 पर स्वास्थ्य चर्चा में आज तंबाकू सेवन और उसके दुष्प्रभाव इस विषय पर डॉक्टर अमित आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर और ईएनटी विशेषज्ञ बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। भेंटकर्ता होंगे संजय जोशी। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटी का सुनेंगे सुबह 8:30 पर, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे विश्व दुग्ध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी विविध प्रस्तुतियां सुन सकेंगे। दोपहर 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में आज बहनों की चिट्ठी लेकर आएंगे अंजू पांति और दीपिका पंत। इसी कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा तंबाकू निषेध दिवस पर। दिन में 1:30 पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित रूपक सुनिएगा भारतीय आत्मा का स्वर, प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुनील केशव की। दिन में 2:30 पर खेती की बातें में पर्वतीय क्षेत्रों में पछेती धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर जेपी आदित्य। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। शाम 5:15 पर युववाणी में आज की बात का विषय रहेगा तंबाकू निषेध दिवस, घटनाक्रम और आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज रविवार है और आज के दिन कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुराश उत्तरायण में आप सुनते हैं। इसके अलावा चर्चा सुनिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर और सुनिएगा मिशन लाइफ के तहत स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। शाम 7:15 पर कृषि समृद्धि में सब्जियों में कीट प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रताप दिवेकर, संचालन करेंगी श्रीमती रेणु सनवाल। कृषि समृद्धि ये प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा संध्या 7:15 पर। संगीत के कार्यक्रमों में आज लोकगीत आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर।

लोक मंजरी में, दिन में 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत में, शाम 5 बजे शैल स्वर में और शाम 7 बजे प्रादेशिक लोक संगीत के अंतर्गत। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:05 पर सबरंग में, दिन में 1:15 पर और रात 8 बजे सबरस में। फिल्म संगीत के कार्यक्रम आज आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित होंगे। सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार में आज सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। मध्याह्न 12 बजे मेरी पसंद में, दिन में 2:45 पर एक ही फनकार में, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में, शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। तो श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। कलाकार हैं सुरेश वाटकर, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का, और आज आप सुन रहे हैं भाग 110।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंदमग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

श्रोता भी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। कलाकार थे सुरेश वाटकर, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। चमोली जिले की नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन शुरू और मसूरी स्थित ITBP अकादमी में आज 132 सहायक सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जो भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री धामी ने देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा का महत्व विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है, जिसमें डिजिटल लर्निंग है, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे अनेक पाठ्यक्रमों को हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी बढ़ावा देने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ भी केंद्रित होना चाहिए। सरकार झीलों की नगरी नैनीताल को संवारने और सजाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में भीमताल, नौकुचियाताल तथा कलमताल के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। झील विकास परियोजनाओं पर 46 करोड़ की धनराशि खर्च की जा रही है। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कल झीलों के निरीक्षण के साथ ही अन्य विकास कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सचिव आवास ने बताया कि नौकुचियाताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ से अधिक की धनराशि में बोटिंग स्टैंड, प्रतीक्षालय टिकट काउंटर, पार्किंग सुविधा, फ्लोटिंग जेटी, 2089 मीटर लंबा पैदल मार्ग, गजीबो निर्माण, व्यू पॉइंट, लैंडस्केपिंग और सोलर लाइटिंग जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही भीमताल, कमलताल झीलों को भी सुंदर, आकर्षक बनाया जाएगा।
2: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चमोली जिले के नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन शुरू हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित ये प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में आज आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में 132 सहायक सेनानी और एक महिला उप सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश के मसूरी आगमन को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पास आउट अधिकारियों में देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 31 MBBS डॉक्टर, 31 BTech इंजीनियर, MD, MTech और अन्य उच्चशिक्षित युवा भी शामिल हैं। इस अवसर पर पवन कुमार मीणा को गृह मंत्री सॉर्ड ऑफ ऑनर और बेस्ट ऑलराउंडर ट्रेनी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं सचिन को बेस्ट आउटडोर ट्रेनी और कांते मिश्रा को बेस्ट इंडोर ट्रेनी चुना गया है। देहरादून जिले के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वो आवश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक ना करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न तेल कंपनियों के कुल 167 पेट्रोल डीजल पंप संचालित हैं और सभी पंपों पर पेट्रोल व डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में BA, BSc और BCom सहित स्नातक UG स्तरीय सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण व प्रवेश के लिए ₹50 निर्धारित शुल्क जमा कर 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश संबंधी जानकारियां समर्थ पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। नैनीताल जिले में स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वार्षिक खेल दिवस 2026 का भव्य आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कैडेट्स ने खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय के स्टाफ और अभिभावकों के साथ भी विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में बजेंद्री हाउस ने सर्वश्रेष्ठ ड्रिल प्रतियोगिता का खिताब जीता, जबकि जिम्नास्टिक टीम को सर्वश्रेष्ठ इवेंट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। केसरी हाउस ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। CUET में गड़बड़ी की खबर को सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण लिखता है, अब CUET UG में भी गड़बड़ी। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है, UET UG एक और बाधित परीक्षा, NTA दोबारा नाकाम, विद्यार्थी परेशान। गढ़वाल मंडल में वाहन दुर्घटनाओं के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, गढ़वाल में हादसों में 10 लोगों की मौत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड दौरे की खबरों को भी सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार

0: केसरी हाउस ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सीयूईटी में गड़बड़ी की खबर को सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण लिखता है, अब सीयूईटी यूजी में भी गड़बड़ी। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है, यूईटी यूजी एक और बाधित परीक्षा, एनटीए दोबारा नाकाम, विद्यार्थी परेशान। गढ़वाल मंडल में वाहन दुर्घटनाओं के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, गढ़वाल में हादसों में 10 लोगों की मौत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड दौरे की खबरों को भी सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, धामी के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार, नवीन। मौसम में बदलाव की खबरों को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, एक घंटे की बारिश से शहर पानी से लबालब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। चमोली जिले की नीति घाटी में आज से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन शुरू। और मसूरी स्थित आईटीबीपी अकादमी में आज 132 सहायक सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक मंजरी। शुभारंभ कर रहे हैं जॉनसन गवन के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: लोकमंजरी की अगली प्रस्तुति है नीलम जे सिंह के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में सुनिए तंबाकू सेवन और उसके दुष्प्रभाव विषय पर डॉक्टर अमित आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर और ईएनटी विशेषज्ञ बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं संजय जोशी।
1: श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आम तौर पर जब हम बस में सफ़र करते हैं, आसपास के हमारे लोग हम देखते हैं कि अक्सर मुंह में तंबाकू डाले रखते हैं या फिर वो तंबाकू का सेवन करते हैं और इधर उधर थूकते भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ लोग धूम्रपान करते हुए नज़र आते हैं। तो ये धूम्रपान और तंबाकू की आदतें क्या हैं और ये कैसे पड़ती हैं और इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं मनुष्य को, इन सब विषयों पर हम बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित आर्या जी को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में। साथ ही आप नाक कान गला विशेषज्ञ हैं बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: सर। लोग जो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, किसी न किसी तरह का वो नशा ही हम उसे कहेंगे, तो वो नशा होता क्या है?
2: तंबाकू का एक्चुअली आप कहेंगे कि पहले तो परस्पर लोग साथ में बैठ के एक दूसरे को देख के ही शुरुआत करते हैं
1: जी।
2: धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाती है, फिर लोग ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि दोस्त जो होते हैं उनको देखकर ही आदमी अपनी शुरुआत करता है, चाहे वो खैनी खाना हो, चाहे वो गुटखा खाना हो, चाहे वो सिगरेट पीना हो। शुरू में तो ये शौकिया लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी फिज़िकल डिपेंडेंस होनी शुरू हो जाती है, शरीर इस पर निर्भर होना शुरू हो जाता है। फिर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे नित्य क्रिया वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी इसी पर डिपेंड हो जाती हैं। कई लोगों को जैसे अगर नशा नहीं मिल रहा है तो उनको डे टू डे एक्टिविटी करने में उनको कठिनाई होनी शुरू हो जाती है
1: जी। आपने ये तो बताया कि किस तरह की परेशानियां लोगों को होती है जो तंबाकू का सेवन करते हैं, ये शुरुआत ही होती है हम ये कहेंगे। और वैसे भी इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस की थीम है काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, कैसे इनकी आदतों से हम निजात पाएं। जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें क्या होता है?
2: सिगरेट में बेसिकली निकोटीन ही होता है
1: जी।
2: और सिगरेट में एक्चुअली पहले तो जो सिगरेट्स आती थी वो फिल्टर्ड वाली नहीं आती थी पुराने ज़माने में, तो उस और बीड़ी पीने में एक परसेंटेज ऑफ निकोटीन उनमें ज़्यादा रहता था। लेकिन अब आजकल जो मॉडर्न डे सिगरेट्स हैं उसमें कुछ फिल्टर्स वाली आती हैं, तो और उनमें क्या निकोटीन की मात्रा कम रहती है, लेकिन हालांकि निकोटीन तो रहता ही है, एडिक्शन तो उससे भी उतना ही रहता है जितना पुराने उससे रहता था। धूम्रपान किसी भी तरीके से हो, चाहे ई सिगरेट के माध्यम से करें, चाहे किसी भी माध्यम से करें, लेकिन धूम्रपान तो धूम्रपान ही है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली ही बात होती है
1: जी। बात ये आती है तंबाकू खाने की
2: जी।
1: कहते हैं क्या खा रहे हैं, खैनी मसल रहे होते हैं और आपके सामने सामने वो हाथों को झाड़ते हुए
2: जी जी जी
1: उसका धुआं भी आता है, छींके भी आने लगती है अगल बगल आदमी होता है
2: जी।
1: तो ये जो खैनी है इस पे कौन सा, क्या तंबाकू कौन सा होता है?
2: बेसिकली खैनी जो होता है प्योर फॉर्म होता है उसका निकोटीन का
1: जी। अच्छा,
2: तो खैनी में एक्चुअली क्या है, लोग एडिक्शन करते हैं जिस तरीके से स्मोकिंग से होता है आपका, लेकिन उसको क्या है कि काफी देर तक वो अपने मुंह में रख लेते हैं और हमारे पहाड़ में कहते हैं कि रम जाता है मना मन रम जाता है उसमें, और उसमें फिर वो अपने जितने भी काम होते हैं वो स्पीडली कर लेते हैं
1: जी। ये तो बात है कि नशे की आदत ऐसे पड़ रही है उसको। तो हम देखते हैं लोगों के अक्सर दांत में पीलापन होता है, दांत में कालापन सा लिया होता है, लेकिन इसके साथ साथ मुंह के अंदर भी कई तरह के विकार उत्पन्न अवश्य होते होंगे
2: जी जी।
1: तो कौन कौन से विकार और किस तरह की परेशानियाँ होती हैं
2: जी? हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, उनमें बेसिकली वो लोग अल्सर लेके आते हैं, छाला जिसे कहते हैं
1: जी।
2: तो पहले तो वो उसको नज़रअंदाज करते हैं और वो नॉन हीलिंग अल्सर्स बन जाते हैं, मतलब कि वो किसी भी दवाई से वो ठीक नहीं हो पाते। एक तो होता है कि आदमी खान पान की वजह से मुंह में छाले पड़ गए, गलत खान पान कर लिया, उससे जो छाले होते हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये नॉन हीलिंग अल्सर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको परस्पर बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और फिर इसका हमें बायोप्सी वगैरह लेनी पड़ती है। शुरुआत में पेशेंट हमारे पास बोलता है कि हम मुझे मुंह खोलने में कठिनाई हो रही है और ये सफ़ेद गुलाबी सा दाग हो गया है मेरे मुंह के अंदर, ये देख लीजिए। तो उसको आजकल क्योंकि कैंसर के लिए अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए वो जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। पहले में ये हमारे पास टर्शरी स्टेज में ही आते थे मरीज ज़्यादातर, जब वो कैंसर काफ़ी ज़्यादा फैल जाता था मुँह के अंदर।
1: अब तंबाकू की बात आई तो उसमें एक आजकल अलग अलग प्रकार चल रहे हैं, कोई कहता है गुटखा
2: जी,
1: कोई एक सादा पान मसाला
2: जी।
1: तो मुझे लगता है कि

0: कोई भी चीज जो मुंह में इस तरह जा रही
1: जी,
0: है
1: जी जी
0: तो वो उसमें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य
1: जी
0: के लिए
1: जी
0: हानिकारक
1: जी
0: बनती
1: जी
0: है।
1: जो मुंह में सुपारी भी रखते हैं,
0: जी
1: खाना खाने के बाद सुपारी रख लिया, वो भी हमारे मुंह को इरिटेट करता है। मतलब कहने का मतलब है वो भी हमारी जो मुंह की अंदर की त्वचा होती है वो नाजुक होती है। सुपारी भी के अंदर भी तीखी जो है एजेस होती हैं, वो भी हमारे जो मुंह की जो त्वचा होती है उसको बार बार इरिटेट करके उसको चेंज करना शुरू कर देती है। तो हमारे पास कभी कभार ऐसा पेशेंट आता है जिसके पूरे मुँह में सफ़ेदा हो रखा है, और उसकी हिस्ट्री अगर हम पूछें उससे पूछें कि ये किस वजह से हुआ है, तो उसमें वो ये नहीं बताता है कि उसको तंबाकू से हुआ है या खैनी खाने से हुआ। वो बोलता है बस मैं तो मुंह में वो रखता था सुपारी। और सोचिए सुपारी से भी उसको ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
0: जी सर, निकोटीन में ऐसी क्या चीज़ है कि हमको एक एडिक्शन बढ़ रही है, आदत पड़ती है, मतलब क्यों उसकी क्रेविंग बार बार होती है?
1: निकोटीन बेसिकली हमारे दिमाग में एक यूफोरिया टाइप का क्रिएट करता है, सेंस ऑफ वेलबींग। आदमी ये सोच रहा है कि मैं अलग ही दुनिया में हूँ,
0: अच्छी सी फीलिंग,
1: अच्छी सी फीलिंग आती है, मैं अलग दुनिया में हूँ और मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये सेंस ऑफ यूफोरिया उसके अंदर काफी देर तक अगर रहे तो वो अपना नित्य काम भी अच्छे तरीके से कर लेता है, और वो सोचता है कि इससे बढ़िया चीज़ तो मेरे पास कुछ नहीं है। निकोटीन का यही एक साइड इफेक्ट है कि आपका क्या है कि वो फिजिकल डिपेंडेंस हमारे शरीर में बढ़ा देता है और हमारे दिमाग को एक तरीके से उस पर डिपेंडेंट बना देता है।
0: जी यूँ तो हम कहते हैं कि चाय और कॉफ़ी,
1: जी
0: भी कैफीन होती है,
1: बिल्कुल।
0: थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, कितना सेवन उसका उचित रहेगा?
1: कॉफ़ी है या आपकी चाय है, इनमें टैनिन्स होते हैं बेसिकली।
0: जी
1: टैनिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो जब हम उनका सेवन करते हैं काफ़ी टाइम तक, अगर इनका सेवन करा जाए तो हमारे अंदर आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, जो हम खाद्य पदार्थ से ले सकते हैं आयरन, वो एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तो आयरन डिफिशेंसी एनीमिया का खतरा इनसे ज़्यादा होता है। चाय का भी उसी तरीके का सेवन, मतलब लंबे टाइम तक करने से उस पर भी फिजिकल डिपेंडेंस होनी शुरू हो जाती है।
0: जी बात ये आती है कि जब हमने तंबाकू खाया, आपका ये कहना है कि तंबाकू खाने से मुंह में छाले हो जाते हैं, कई तरह के होते हैं, तो कौन कौन से रोग की तरफ हमारा इंगित करता है?
1: तो भारत इस वक्त सब पहला नंबर का देश है जिसमें कि ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है। तो उसका कारण मेनली यही माना गया है क्योंकि हम यहाँ पर खैनी, गुटखा और तंबाकू इन सब का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि मुंह में छाले अलग अलग तरीके से हमें दिखते हैं। कभी कभार जीभ में छाला दिखता है, कभी कभार पेशेंट के पूरे मुंह में सफ़ेदा हो रखा है और उसका मुंह ही नहीं खुल पा रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन में भी आते हैं। तो और कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि मुंह में किसी तरीके का एक दाग हो गया, जैसे लाल कलर का हो गया या सफ़ेद कलर का हो गया, उसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है। ये सारी प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस हैं। प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस आप समझ लीजिए कि कैंसर से पहले की स्टेज। अगर इस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एडवांस हो जाता है, जहाँ पर छाला भी है और उसके बाद जीभ हिल डुल नहीं पा रही है, मुंह नहीं खुल पा रहा है, साथ में गले में गांठ हो गई है, तो ये एडवांस स्टेज होती है कैंसर की, जिसमें कि कैंसर बन चुका है और फैल चुका है। तो हमें उसमें सिर्फ एक छाला ही दिखेगा, लेकिन साथ के साथ जो हमारी जीभ है या हमारा जो फंक्शन है ओरल कैविटी का, ये ख़त्म होने का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है।
0: तो बीमारी जो होती है मुंह से होती है, मुंह ओरल कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी होता है। अच्छा,
1: बिल्कुल।
0: ये निकोटीन और तंबाकू का सेवन से क्या हमारे हार्ट को भी असर पड़ता है?
1: बिल्कुल, ये सब एडिटिव फैक्टर्स हैं। अब जब हम स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग के साथ क्या होता है कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं, रक्त धमनियाँ होती हैं, ये होती सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। इसमें टार जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने का डर रहता है। तो जिसकी वजह से धमनियां सिकुड़ने का मतलब यह है कि हार्ट पे इनफ ब्लड नहीं जाएगा, और हार्ट की खुद की जो धमनियां होती हैं अगर उसमें भी जमना शुरू हो गया तो उसमें हार्ट अटैक आने का चांसेस सबसे ज्यादा हो सकते हैं।
0: तो क्या डायबिटिक का भी कहीं ऐसा देखा गया?
1: अगर डायबिटीज के साथ वो स्मोकर है
0: जी,
1: तो वो चीज और ज्यादा उसके लिए हानिकारक हो सकती है। वो एक एडिटिव फैक्टर उसमें बन सकता है कि मतलब क्या है कि जो डायबिटीज़ वाला मरीज, शुगर वाला मरीज है, उसका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी कमज़ोर है, तो वो जब हम धुआं ले रहे हैं अंदर तो वो एक तरीके से हमारे फेफड़ों को और दिल को और कमज़ोर कर रहा है, जो कि पहले से ही डायबिटीज़ से ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। धूम्रपान और करेगा तो उससे और उसको जल्दी जल्दी हार्ट अटैक आने का खतरा रहेगा और फेफड़े की बीमारी होने का खतरा रहेगा।
0: तो बचाव के लिए हमें किस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे?
1: अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो जो उसका साथी है वो भी उससे अफेक्ट हो सकता है,
0: जी,
1: जिसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग।
0: जी अच्छा।
1: तो एक्टिव स्मोकिंग तो वो कर रहा है जो कि ले रहा है, और पैसिव स्मोकिंग जो धुएं को ले रहा है अंदर अपने, तो दोनों को बीमारी होने का खतरा है। पहले हम इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाएं कि इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है, टेलीविजन में इसके लिए हो सकता है। आजकल जब फिल्में स्टार्ट होती हैं थिएटर में तो जागरूकता

0: एक छोटा सा एक क्लिप चलाई जाती है, तो इस चीज़ों से हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास पेशेंट अगर आ रहा है जो नहीं छोड़ पा रहे हैं
1: जी
0: धूम्रपान को, उनको हमारे वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर अल्मोड़ा में भी बना हुआ है, वहाँ पर हम भेज सकते हैं, जहाँ पर उनको धीमे धीमे इसकी लत छुड़वाने का कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
1: जी आपने एक सेकंड हैंड स्मोकर या पैसिव स्मोकर की बात करी, एक बात आती है कि थर्ड हैंड स्मोकर जिसमें वो कोई सिगरेट पीता है उसकी राख झाड़ देता है,
0: जी जी
1: इधर पड़ी रहती है,
0: जी जी
1: या उसके कपड़ों में
0: जी जी
1: सिगरेट
0: जी
1: पड़ी रहती है
0: जी जी
1: पूरी, तो वो भी कहीं ना कहीं
0: बिल्कुल
1: दूसरे आदमी
0: बिल्कुल
1: के लिए खतरनाक हो सकती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे भी आपका क्या है कि टोबैको का जो भी है अंश है उसको तो डिस्ट्रॉय हम कर नहीं सकते,
1: जी
0: वो एयर पोल्यूटेंट की तरह भी काम कर ही रहा है। तो जो नहीं भी लेना चाह रहा है, पास में नहीं भी है, वो उसकी उड़ती भी राख उसको भी इनहेल कर सकता है, कि वो तो बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं
1: जी
0: हवा में
1: जी
0: उड़ जाते हैं, तो इसलिए वो जो भी राहगीर आसपास जा रहे हैं वो भी उसको इनहेल कर सकते हैं।
1: अब प्रश्न आता है कि कोई आदमी सिगरेट या छोड़ना चाहता है या तंबाकू छोड़ना चाहता है, तो वो कैसे छोड़े?
0: इसके लिए हम टेपर्ड प्रोग्राम चलाते हैं।
1: जी
0: टेपर्ड प्रोग्राम में ये होता है कि जब आदमी हम पूछते हैं कि कितना टाइम सिगरेट पीता है और कितने दिन में पैकेट्स ख़त्म कर लेता है, अमूमन कई लोग जैसे सपोज़ करिए कि 40 सिगरेट पी जाते हैं या 20 सिगरेट पी जाते हैं, तब हम टेपर करते हैं, हम बोलते हैं कि आप इसकी एकदम से आदत मत छोड़िए, प्रतिदिन 20 पी रहे हैं तो अब आप उसको 15 कर लीजिए,
1: जी
0: फिर उसको 10 कर लीजिए अगले हफ्ते, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब उसकी बॉडी अडेप्ट होना शुरू हो जाती है कि अब वो उस पर रहना शुरू हो रही है, तब वो धीमे धीमे आप खुद ही देखेंगे कि वो एक टाइम पे उस पूरे धूम्रपान को ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके लिए पेशेंट डेडिकेटेड होना चाहिए छोड़ने के लिए,
1: जी
0: और दूसरी बात यह है कि इसके लिए टाइम चाहिए, तो इसीलिए खास तौर पे यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें कि हम ये धूम्रपान छुड़वाते हैं, जो कि नशे के पूरी तरीके से फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है जिन पेशेंट्स में, तो उनको हम यही टेपर्ड प्रोग्राम चलाते हैं।
1: जी आजकल तो आप देख रहे हैं कई तरह की ड्रग्स भी मार्केट में
0: जी
1: आ
0: जी
1: रही
0: जी
1: हैं जो
0: जी
1: कि
0: जी जी
1: हमारे युवाओं को जो है गलत दिशाओं में भटक रहे हैं, उसमें देखा जाए तो स्मोक के माध्यम से वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि ऐसे इस नशे से आप कैसे बचें?
0: बहुत सारे हुक्का क्लब्स वगैरह खुल चुके हैं शहरों में,
1: जी
0: जो कि फ्रैंक वो नशा तो नहीं देते हैं, मतलब निकोटीन का नशा तो नहीं देते हैं, या निकोटीन च्यूएबल टैबलेट्स देते हैं, तो वो भी एक तरीके का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन क्या है कि उस पर भी फिजिकल डिपेंडेंस ना हो, उसका भी जो लोग ले रहे हैं उसको उनको ध्यान रखना चाहिए, और ये बेसिकली क्या है पेशेंट की इनिशिएटिव से ही होगा,
1: जी
0: आप किसी को ज़बरदस्ती बोल नहीं सकते, क्योंकि उसकी माइंड और बॉडी पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुकी है निकोटीन पे। अगर पेशेंट डेडिकेटेड है, हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो वो इस तरीके के नशे को, दूसरे ऑल्टरनेटिव नशे को भी छोड़ सकता है।
1: जी आपने हुक्का क्लब की बात की, तो हुक्के में ऐसा होता है कि नीचे पानी का वो होता है,
0: जी
1: उससे
0: जी जी
1: फिल्टर करके आता है,
0: जी
1: तो मैंने तो जो बड़े बूढ़ों से सुना वो कहते थे हुक्का बहुत सेफ होता है,
0: जी
1: तो एक डॉक्टर होने के नाते आप उसे कैसे?
0: किसी भी तरीके का धुआं जो कि पूरी तरीके से जला नहीं है, तो चूल्हे में क्या है नॉ कम्बस्चन पूरी तरीके से हुआ
1: नहीं
0: नहीं
1: हुआ
0: है,
1: जी
0: पूरा जो है लकड़ी जली नहीं है, और उसका धुआं जो है पार्टिकल्स वो इंसान ले रहा है, तो उसी तरीके का आप प्रोसीजर हुक्के में भी समझिए, उसमें बस वो कोयले को जला रहा है, कोयले को जलाने के बाद उसको अंदर ले रहा है, तो जब वो अंदर ले रहा है तो वो भी एक तरीके से साफ ईंधन नहीं है, एक टाइप
1: जी
0: का आप उसको अंदर ले रहे हो, तो वो नॉन कम्बस्टेबल गैसेस के रूप में ही अंदर उसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा जिस तरीके से चूल्हे में बहुत टाइम तक आदमी काम करता है और अपने फेफड़े और दिल को नुकसान पहुंचाता है।
1: नहीं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे इस एंटी टोबैको डे यानी कि तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर?
0: यंग जनरेशन को इस ये बताना चाहता हूँ कि हमें तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तंबाकू एक ऑल्टरनेटिव की तौर पे भी नहीं लेना चाहिए, कि आप अगर इसके आदि बन चुके हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और किसी तरीके का भी कोई भी आपको लग रहा है कि मुंह में छाला हो गया है किसी तरीके से बहुत, और आपकी हिस्ट्री रही है कि आप लंबे टाइम से ऐसा कोई चीज़ खा रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं खैनी के रूप में या गुटखे के रूप में, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये कैंसर की तरफ इशारा भी कर सकता है, जितनी जल्दी जागरूक होंगे इसके लिए उतना बढ़िया है। और मेरा कहना तो मतलब यही है कि क्यों अपने मुंह को नुकसान पहुंचाना है, जब इतना
1: जी
0: सुंदर मुंह आपको दिया गया है, हम अपने दांतों को, अपनी जीभ को, अपने बोलने वाले कंठ है उसको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे इतनी सुंदर खूबसूरत चीज़ तो भगवान ने हमको दी है, वो हमारा शरीर है, और उसकी रक्षा करना हमारे हाथ में ही है, अगर हम उसको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप एक ईश्वर की बनाई हुई कृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
1: जी तो डॉक्टर अमित आर्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को आपने तंबाकू सेवन और उसके दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी दी। हम समझते हैं आपकी जानकारी से हमारे श्रोता अवश्य लाभान्वित होंगे। आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे तंबाकू सेवन और उसके दुष्प्रभाव। इस विषय पर डॉक्टर अमित आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर और ईएनटी विशेषज्ञ बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा से भेंट करता थे संजय जोशी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी at 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ोन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
6: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
5: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ. डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
7: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
8: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
5: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने

0: तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है।

0: Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका।
2: जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद।
2: आया है फिर एक नया रविवार लेकर बच्चों की विविध प्रस्तुतियों की बहार, जिनसे सजेगी हमारी आज की बाल वाटिका। फिर इस बार
4: ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम बम बम बम बम बम।
2: तो प्यारे बच्चों, आज की बाल वाटिका में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत सत्कार, और कीजिए स्वीकार अपनी दीदी मेघा रावत का स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, अक्सर जब भी हम सुबह उठकर खिड़की खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं? सूरज की गुनगुनी सी धूप, चहचहाती हुई चिड़ियाएं, हरे भरे पेड़ पौधे और ठंडी ठंडी हवा, है ना? और ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये सब से मिलकर ही बनता है हमारा पर्यावरण, है ना? और जो कुछ भी हमारे आसपास है, चाहे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण का बहुमूल्य हिस्सा है, और इन सभी से मिलकर बनता है हमारा स्वच्छ पर्यावरण, है ना प्यारे बच्चों? पर्यावरण हमारे लिए ऐसा घर है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पर्यावरण हमें वो सब कुछ देता है जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं, हमारी संस्कृति में तो पर्यावरण को ईश्वर तुल्य माना गया है। धरती को माँ कहकर पुकारा जाता है, नदियों की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं तुलसी पीपल जैसे अनेक पेड़ों की पूजा भी की जाती है, है ना? तो प्यारे बच्चों, हमें पर्यावरण का संरक्षण तो जरूर करना चाहिए। और क्या आप जानते हैं, इसके लिए तो बच्चों प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ, और प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्यारे बच्चों, 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और आम जनता को प्रेरित करना कि हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है। तभी से बच्चों, हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस हरी भरी धरा वसुंधरा को बचाने का प्रयास हम सभी को मिलजुल कर करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं, तभी तो बच्चों हम ये कहते भी हैं, प्रकृति का मत करो शोषण, चलो रोके मिलकर ये प्रदूषण। पानी की हर एक बूंद है अमृत, इसे बचाकर करो धरती को सुरक्षित। और बच्चों, इस दिन स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में और भी अनेक तरह के कार्यालयों में पर्यावरण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, पौधारोपण किया जाता है और लोगों को पेड़ पौधे लगा

करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। तो बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें विश्व पर्यावरण दिवस पर, है ना। तो चलिए अब बारी है आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियां सुनने की। तो चलिए शुभारंभ करते हैं धरती माँ को समर्पित इस सुमधुर गीत के साथ, जिसे लेकर हमारे साथ हैं नन्नी सखियां।

0: तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नन्ही सखियों से यीशु मधुर गीत सुना है ना। बच्चों, हमें इस हरी भरी धरती को बचाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं शिक्षिका तनुजा मिश्रा से।
1: प्रकृति मानव जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु पक्षी और स्वच्छ हवा, ये सभी हमारी जीवन शैली को संतुलित और सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने प्रकृति को बड़ी हानि पहुँचाई है। इसलिए प्रकृति संरक्षण आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। सबसे पहला तरीका है पेड़ लगाना और वृक्षों की कटाई रोकना। पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि मिट्टी को कटाव से बचाते हैं और मौसम को संतुलित रखते हैं। यदि हर व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पेड़ लगाए तो पर्यावरण में बड़ा सुधार आ सकता है। दूसरा कदम है पानी और ऊर्जा की बचत। नल को अनावश्यक रूप से खुला न छोड़ें, वर्षा जल संचयन को अपनाएं और बिजली का उपयोग तभी करें जब जरूरत हो। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा। तीसरा उपाय है प्लास्टिक का कम उपयोग। प्लास्टिक प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी जगह कपड़े, कागज या बायोडिग्रेडेबल चीजों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा तरीका है जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा। वन हमारे पर्यावरण की रीढ़ हैं और पशु पक्षी जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखते हैं। हमें अवैध शिकार, जंगल की आग और वनों के अंधाधुंध दोहन को रोकना होगा। अंत में हमें अपने आस पास लोगों को जागरूक करना चाहिए। जब समाज मिलकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेता है तभी इसके परिणाम बड़े और सकारात्मक होते हैं। इस तरह छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। प्रकृति को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम आज प्रकृति संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और सुंदर पृथ्वी पर जीवन जी सकेंगी।
0: तो बच्चों, अभी हमने शिक्षिका तनुजा मिश्रा से कितनी सारी बातें जानी है ना। प्यारे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका जरूर निभाएं, और जब आप ऐसा करते हैं तभी तो बच्चों हम ये कहते भी हैं, पानी, हवा और मिट्टी को आओ साफ बनाएं, चलो मिलकर इस धरती को फिर से स्वर्ग तुल्य बनाएं।

0: और बच्चों, बात जहां हमने पर्यावरण की स्वच्छता की करी ही है, तो चलिए नन्ही प्रियांशी का क्या है कहना प्रकृति पर, जानते हैं उनकी इस कविता से।
1: नीला आकाश हरी धरा यही प्रकृति की सच्ची कला, पर धुएं की काली छाया जीवन में क्यों घुलने आया, नदियां पूछे कब मिलेंगे फिर से हमको निर्मल।

0: कमल रंग पेड़ खड़े है सूनी डाली सुन लो उनकी मौन तरंग। आओ हम सब मिलकर सोचे कैसा हो अपना कल भविष्य, जहाँ न हो कचरे का अंबार न हो बीमारी का कोई विष। हर दिन एक नया कदम ले पेड़ लगाए जल बचाए धरती माँ की गोद सवारे फिर से खुशियों के फूल खिलाए। पर्यावरण का यही संदेश स्वच्छ हवा हो निर्मल भू प्रकृति गाय जब मुस्कुरा कर तभी सजेगा जीवन रूप।
1: सच कहा प्रियांशी आपने, प्रकृति पर्यावरण को हमें बचाना होगा और जिसके लिए सबसे जरूरी है अधिक से अधिक पौधारोपण करना, है ना। प्यारे बच्चों, जितना हो सके हमें प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना होगा और जब हम ऐसा करेंगे तभी तो बच्चों हम इस धरती को स्वर्ग तुल्य बना पाएंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, अपने पर्यावरण को हम प्रदूषण मुक्त कैसे बना सकते हैं इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं गौरव से।
2: पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे गंभीर वैश्विक समस्याओं में से एक है। वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मनुष्य, पशु पक्षियों और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और मानव गतिविधियों में बढ़ती लापरवाही के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसे रोकना समय की आवश्यकता है। सबसे पहले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, पौधों और पेड़ों की संख्या बढ़ाना तथा कारखानों में फिल्टर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग महत्वपूर्ण करना। जल प्रदूषण रोकने के लिए घरेलू, कृषि और औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में फेंकने की आदत समाप्त करनी होगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का उपयोग, नदियों और तालाबों की नियमित सफाई, प्लास्टिक के उपयोग में कमी और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग इस दिशा में सार्थक उपाय है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक कचरे का खुला निस्तारण रोकना होगा। इसके अतिरिक्त रासायनिक कीटनाशकों वो खादों की जगह प्राकृतिक विकल्प अपनाकर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। वृक्षारोपण और कृषि में टिकाऊ पद्धतियां अपनाकर भी मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अनावश्यक हॉर्न बजाने पर रोक, पटाखों में कमी, ध्वनि सीमा का पालन और रिहायशी क्षेत्रों में भारी मशीनों का इस्तेमाल नियंत्रित करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक। जब तक लोग स्वयं पर्यावरण की रक्षा को अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तब तक किसी भी नियम या नीति का प्रभाव सीमित रहेगा। स्कूलों, समाज और मीडिया के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। अंततः पर्यावरण प्रदूषण को रोकना सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक की संयुक्त जिम्मेदारी। यदि हम अभी से सचेत होकर छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे पेड़ लगाना, कचरा अलग अलग करना और ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग, तो हम पृथ्वी को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित स्थान बना सकते हैं।
1: तो प्यारे बच्चों, अभी हमने गौरव से प्रदूषण को रोकने के उपायों के बारे में कितना कुछ जाना, है ना।

0: तो प्यारे बच्चों, आप भी इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखें और केवल पर्यावरण दिवस पर ही नहीं बल्कि हर दिन अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास जरूर करें। प्लास्टिक, कूड़ा, करकट यहाँ वहाँ ना फेंकें और जितना हो सके प्लास्टिक बैग का प्रयोग कम से कम करें और सूती बैग, जूट से बने बैग का प्रयोग करें और अपने आसपास, अपने घर पर भी अन्य लोगों को जागरूक करने का प्रयास जरूर करें। और बच्चों, जल की बर्बादी तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चों जल है तो आने वाला सुरक्षित कल है, है ना। तो चलिए अब नन्ही सोनल का क्या है कहना जल पर, जान लेते हैं उनकी इस कविता से।
1: जल है।

0: सच है बच्चों, पर्यावरण संरक्षण में जल की विशेष भूमिका रहती है और जल का संरक्षण तो हमें जरूर करना चाहिए, है ना। और बच्चों, जब हम जल का संरक्षण करते हैं तभी तो हम ये कहते भी हैं, जल ही जीवन है, जल बिना असंभव आने वाला कल है।
1: खुशियों का वो पल आएगा।

0: प्यारे बच्चों, बात जहां हमने पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण की करी ही है, तो वहीं बच्चों प्रकृति के संरक्षण में आप नन्हे मुन्ने बच्चे तभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है संतुलित आहार, और संतुलित आहार के साथ साथ जरूरी है दूध, है ना, जो कि अक्सर हम बच्चे नहीं पीते हैं। और क्या आपको पता है, दूध खुद ही अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। और वो कैसे माना जाता है, ये तो आप जरूर जानना चाहेंगे, है ना। तो चलिए आपको बताते हैं नेहा से।
1: दूध एकमात्र ऐसा आहार है जो आजीवन हमारा साथ नहीं छोड़ता। यह हमारे शरीर को पोषित कर उसे मजबूत बनाता है, उसके विकास को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ता है, वो उन्हें दूर भी करता है। और यही गुण इसे सभी आहारों में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। दूध पोषक तत्वों का एक अद्वितीय संतुलन प्रदान करता है और इसे प्रकृति का कल्याण पेय भी माना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी परिषद के अनुसार इसमें 9 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ए, डी और B12। दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों के निर्माण में भी योगदान देता है। दूध विभिन्न प्रकार के जानवरों से प्राप्त हो सकता है, जिनमें से सभी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, याक, ऊंट का दूध हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि दुनिया भर के घरों में अधिकतर गाय का दूध ही सबसे लोकप्रिय होता है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है या जो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, वो लोग यदि रात को सोने से पहले एक गिलास दूध का सेवन करते हैं तो इससे उन्हें फायदा पहुंच सकता है। रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पीने से ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। ऐसे में जिन लोगों को ब्लड शुगर ज्यादा है, वे अपनी डाइट में एक गिलास दूध को जोड़ सकते हैं। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए दूध बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी आपके बेहद काम आ सकता है।
0: तो प्यारे बच्चों, जाना ना आपने कि दूध पीना हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। तो बच्चों, इसके महत्व को देखते हुए ही प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जन जन को दूध के पोषण संबंधी महत्व को बताना। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा साल 2001 में की गई थी। तब से बच्चों, हर साल 1 जून को पूरी दुनिया में डेयरी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के जरिए जागरूकता फैलाई जाती है। और बच्चों, भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश माना जाता है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24% से अधिक मानी जाती है। और इस दिन दुनिया भर में स्कूल, कॉलेज और डिग्री संगठन कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य होता है विश्व भर में बच्चों को दूध की पौष्टिकता का महत्व बताना। और बच्चों, जब आप दूध पीते हैं तभी तो हम ये कहते भी हैं, चेहरे पर मासूमियत, हाथों में दूध का ग्लास, बच्चों की सेहत का यही तो है असली राज।

0: प्यारे बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें विश्व दुग्ध दिवस पर। और बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे परिवार का साथ हमेशा जरूरी होता है, है ना। और हमारा परिवार माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, इन सभी से मिलकर पूर्ण होता है ना। और बच्चों, माता पिता के सम्मान में, परिवार के सभी सदस्यों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। ये दिन दुनिया भर के सभी माता पिताओं के प्रति सम्मान और उनके निस्वार्थ प्रेम को सराहने के लिए मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में एक माता पिता का प्रेम ही ऐसा होता है जो निस्वार्थ होता है। उन्हें सदा हमारी चिंता सताई रहती है ना। माता पिता तो हमारे जीवन का स्तंभ होते हैं। ये वही हैं जो हमारे जीवन की नींव निर्धारित करते हैं। सदा हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं, है ना। तो बच्चों, हमें अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए और उन्हें कभी भी किसी भी तरह का दुख पहुंचाने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें वैश्विक अभिभावक दिवस के बारे में। और अब बच्चों, माता पिता के प्रेम को बयां करती एक कविता लेकर हमारे साथ हैं नन्ही नंदनी।
1: बाकी ममता छाओ सी ता हौसलों की दीवार, दोनों के आशीष से ही महक उठे जीवन का हार। माँ आंचल में सुख भर देती ता सपनों को पंख लगाते, उनके प्रेम की गहराई को शब्द कहाँ पूरा बतलाते। जब भी मुश्किल राह में आए माँ दुआ बन साथ निभाती, पिता बनकर मजबूत सहारा हर डर को दूर भगाते। धरती पर भगवान का रूप है, इनके चरणों में ही मिलता जीवन का सच्चा उपहार।
0: सच कहा नंदिनी आपने, जीवन का सबसे बड़ा उपहार है हमारे माता पिता, और अपने माता पिता का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए।

0: और अब बच्चों, हमारे जीवन में हम चाहे घर बैठे समाचार पत्र पढ़ते हो या टीवी देखते हो या कोई भी और सुविधा का लाभ ले रहे हो, तो बच्चों ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है विज्ञान के आविष्कारों से, है ना। और विज्ञान के आविष्कारों पर ही क्या है कहना नन्नी प्रियांशी का, जानते हैं इस कविता से।
1: विज्ञान है हमारे जीवन का आधार, विज्ञान ने की है हर कल्पना साकार, विज्ञान ने की है हर मुश्किल आसान, विज्ञान ने संसार को दिया एक नया अवतार, विज्ञान ने रची एक ऐसी माया जिसमें है सारा संसार समाया, विज्ञान से संसार में फैला उजियारा, इसके बिना होगा चारों ओर अंधियारा, विज्ञान का सदुपयोग है वरदान और दुरुपयोग है अभिशाप।
0: सच है बच्चों, विज्ञान के आविष्कारों से हमारा जीवन और भी अधिक सरल सुगम हो गया है। तभी तो बच्चों बालवाटिका भी आप नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए लेकर आता है विज्ञान की दुनिया से क्रम, जिसमें कि आप नए नए आविष्कारों को जान पाते हैं, है ना। तो चलिए आज विज्ञान की दुनिया से क्रम में जानते हैं चंद्रयान के बारे में जतिन से।
2: चांद हमेशा से ही इंसान के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है। चांद को लेकर हमेशा से ही वैज्ञानिकों और पूरी मानव जाति जिज्ञासु रही है। पृथ्वी के सबसे करीब इस ग्रह को पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए काफी उपयुक्त माना जाता रहा है। यही वजह है कि अनेक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां समय समय पर चांद पर अपने यान

0: भेजती रही है। भारत भी इस कार्य में पीछे नहीं है। भारत ने अंतरिक्ष में लगातार नई उपलब्धियां हासिल की है। पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1, उसके बाद चंद्र मिशन चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। तमाम चुनौतियों को पार करता हुआ भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में काफी ऊंची छलांग लगाने के साथ ही वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। चंद्रयान 1 ये भारत का पहला चंद्र मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटोभूमिगृह मानचित्रण करना था। इसमें 11 वैज्ञानिक उपकरण शामिल थे जो भारत और अन्य देशों में बनाए गए थे। यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करता था। यह 3400 से अधिक परिक्रमाएं करने के बाद 29 अगस्त 2009 को मिशन समाप्त हो गया। चंद्रयान 2 यह चंद्रयान 1 का अनुवर्ती मिशन था जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोबोट चंद्र रोवर शामिल थे। ऑर्बिटर अभी भी सक्रिय है और चंद्रमा के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, लेकिन लैंडर और रोवर के साथ संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में योगदान दिया। चंद्रयान 3 यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसमें लैंडर और रोवर शामिल है जिनका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ।
1: तो बच्चों, जाना ना आपने विज्ञान की दुनिया से क्रम में चंद्रयान के बारे में जतिन से। बच्चों, आप भी इसी तरह विज्ञान के आविष्कारों के बारे में पढ़ते रहें और अपने ज्ञान का विस्तार करते चलें।
2: छोटे छोटे पहियों पे सपनों की साइकिल उड़ते चलेंगे आज पैडलों को मारकर।
1: और बच्चों, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हुए हम सिर्फ बच्चों की सुरक्षा का उत्सव ही नहीं मनाते हैं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का भी उत्सव मनाते हैं। बच्चे सिर्फ मासूम हंसी या खेल में डूबे चेहरे ही नहीं होते, ये हमारे आने वाले भविष्य के कर्ता, निर्माता और संवाहक भी होते हैं। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस बच्चों के कल्याण, अधिकारों और संरक्षण को समर्पित एक उत्सव है और इस दिवस को बच्चों मनाने का एकमात्र कारण है कि बच्चों के अधिकारों के प्रति जन जन को जागरूक करना और सभी बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना, साथ ही बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना। प्यारे बच्चों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1949 में मॉस्को में विमेंस इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन की एक विशेष बैठक के बाद हुई थी, जिसके बाद 1 जून 1950 को पहली बार ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। और बच्चों, कई देशों में 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों का संरक्षण और उनका खुशहाल जीवन बनाना है ना। और बच्चों, हम भी यही कामना करते हैं कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिले, सभी अपने जीवन में सफल रहें और अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। और तभी तो बच्चों कहते भी हैं, मासूमियत से महकता हर एक का बचपन हो, डर का साया न हो, बस खुशियों का आंगन हो।

और अब बच्चों वक्त हो चला है बालवाटी का कार्यक्रम से विदा लेने का। और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो बालवाटी का कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, अपनी रचनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी balwatika1986@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9411011।

0: 2222। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड संख्या है 263601। और अब बच्चों, मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे विदा। अब बच्चों, मिलेंगे अगले रविवार एक नए अंक में आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
1: जय हिंद।
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
3: के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम जाएंगे। वे कोटायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील।

0: का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उड़ीसा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड विदर्भ के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत निर्झर।

गीत निर्झर के निर्झर सुरमई सुर सरिता में श्रोताओं के फरमाइशी सतरंगी तरानों संग आपके खूबसूरत खतों के संग नगमों के सुरीले सफर में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत सत्कार और कीजिए स्वीकार अपने रेडियो दोस्त अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार। आज के गीत निर्झर का आगाज बशीर बद्र साहब के खूबसूरत शेर के साथ, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो, कहीं और हो ना ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो।

0: जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का साथ भी हमें हमेशा यूं ही मिलता रहे। ये पहला गाना सुनना चाहा था नरहन स्टेट से नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या, विनीता मिश्रा ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत था तशन फिल्म से, उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें थी, बोल कौसर मुनीर के थे और तर्ज बनाई थी विशाल शेखर ने।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
1: और ये मेरी गुड़िया के ना।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहू

श्रोतो, आज बॉलीवुड के जानी मानी सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास की पुण्यतिथि है। हिंदी फिल्मों के गीत संगीत के स्वर्ण युग के सारथी अनिल विश्वास रहे। उन्होंने ना केवल अपने संगीत से फिल्म संगीत को शास्त्रीय, कलात्मक और मधुर बनाया, बल्कि अनेक गायक गायिकाओं को तराश कर बहुमूल्य रत्नों की तरह प्रस्तुत किया। इनमें तलत महमूद, मुकेश, लता मंगेशकर, सुरैया जैसे नाम शामिल किए जाते हैं। अनिल विश्वास शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान तो थे ही, साथ ही लोक संगीत के भी वो बहुत अच्छे जानकार थे। उनकी धुनों में जो संगीत सजा है, वो आज भी और हमेशा हमारी विरासत बना रहेगा। अनिल विश्वास का जन्म बारिसाल पूर्वी बंगाल में 7 जुलाई 1914 को हुआ, जो कि अब बांग्लादेश में है। वो स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए और बंगाल के महान कवि, संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम के संपर्क में भी रहे। अनिल विश्वास के दौर में एक से बढ़कर एक संगीतकार रहे। इसका ये फायदा हुआ कि संगीतकारों की स्वस्थ स्पर्धा के चलते श्रोताओं को मधुर से मधुरतम गीत सुनने को मिले। उस दौर में नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, गोपाल सिंह नेपाली, इंदिवर, डी एन मधोक जैसे गीतकार भी हुए, जिनके गीत कविता की तरह भावपूर्ण और सार्थक होते थे। नौशाद, रोशन, मदन मोहन, सचिन देव बर्मन, सज्जाद, गुलाम हैदर, वसंत देसाई, हेमंत कुमार, शंकर जयकिशन और खयाम जैसे संगीतकारों में अनिल दा सदैव अपना एक खास स्थान बनाए रखे हुए थे और मार्गदर्शन भी इन सभी का वो करते रहे। सी रामचंद्र अपने को अनिल दा का शिष्य मानते थे। ये तमाम संगीतकार एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे और फिल्म संगीत के खजाने में जो इन सभी का अनुपम योगदान रहा है, वो बहुत ही खास रहा है। अनिल विश्वास का 31 मई 2003 को निधन हुआ। रोटी, किस्मत, अनोखा प्यार, तराना, वारिस, परदेसी, चार दिल चार राहें जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उनके मधुर संगीत को हमने सुना है। तो उन्हीं के संगीत से सजा एक गाना तराना फिल्म से हमने लिया है। इसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। प्रेम धवन के बोल हैं और संगीत, जैसा मैंने बताया, अनिल विश्वास जी का है। सुनना चाहा है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी काव्या, भाई सुच्चा पाठक, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर, मुस्कान मालाकर, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकर, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी, इनकी प्यारी बिटिया सोनम, सारिमपुर बक्सर से हमारे श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, बेबी अंसारी, छटिया ओखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या।

श्रोतों की फरमाइश का अगला नगमा हमने लिया है यस बॉस फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक अभिजीत भट्टाचार्य की, जावेद अख्तर के बोल हैं और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली मास्टर, अल कबीर, बेबी पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया, किकीर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा, रुक्मिणी शर्मा जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, ग्राम बन भगेरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता हैं दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा, अमिन देवान और आदेश कुमार काले। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है यस बॉस फिल्म का ये दो गाना।

श्रोताओं, ये सुरीले गाने इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर, और गीत संगीत किसी भी दौर का हो, बेहद दिल को छूता है, अच्छा लगता है, सुकून भरा होता है ना। जैसे इस समय हमारे श्रोताओं ने भी हर दौर के गानों की पसंद हमें भेजी है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं 80 के दौर में, और आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म का खूबसूरत तराना। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी के स्वर हैं, शब्दकार हैं आनंद बख्शी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा है जसपुर उत्तराखंड से हमारे श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता है ताजमहल।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत उनकी लिखावट है और उतने ही खूबसूरत चित्रकारी रंग बिरंगा पत्र हमें मिला है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, गणेशपुर से। हमारे श्रोता हैं एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्ज़ा नसरीन बेगम। बहुत ही खूबसूरत पत्र आप हमेशा भेजते हैं। इसके अलावा ऐसा ही रंग बिरंगा खूबसूरत एक और पत्र आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज, दौलतबाग, मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, छोटी बलिया करजत से हमारे श्रोता है अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरेशा बेगम फूलवाले, कॉप सहेड़ा नई दिल्ली से आमना नशरीन, लखमिनिया बेगूसराय से अखलाक अहमद फूलवाले, और बीड शहर से हमारे श्रोता हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल, राम निवास अग्रवाल। आप सभी ने सुनना चाहा है नीला आकाश फिल्म का खूबसूरत सा गाना। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने इसे स्वर दिए हैं। लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

श्रुतों, कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें हम के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय फिल्म संगीत के एक जाने माने पार्श्व गायक रहे हैं, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू चलाया। के ने अपने दोस्तों के साथ एक रॉक बैंड का भी गठन किया। सुविख्यात फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने के को बॉलीवुड में गाने का पहला अवसर प्रदान किया और वो गाना था माचिस फिल्म का, छोड़ आए हम वो गलियां। यहीं से शुरू हुआ के का फिल्मी सफ़र। 23 अगस्त 1968 को केरल में उनका जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा में एंट्री लेने से पहले उन्होंने लगभग 3,500 एड जिंगल्स में वो अपना गायन कर चुके थे और साल 1999 में क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन के लिए जोश ऑफ इंडिया गाना उन्होंने गाया। इसके बाद उन्होंने पल नामक एल्बम निकाला, जिसे सर्वश्रेष्ठ सोलो एल्बम के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार मिला। इस एल्बम के दो गाने पल यारों बेहद लोकप्रिय हुए। श्रोताओं, माचिस के बाद उन्हें एक और गाना मिला, हम दिल दे चुके सनम। ये गाना था तड़प तड़प के। इस भावपूर्ण गायन ने हर श्रोता का, हर दर्शक का दिल जीत लिया। पल तड़प तड़प के इस दिल से सच कह रहा है दीवाना, आवारापन बंजारापन आशाएं, तू ही मेरी शब है क्या मुझे प्यार है, लबों को जरा सा खुदा जाने, दिल इबादत है जुनून है जुनून, जिंदगी दो पल की मैं क्या हूँ, हाँ तू है अभी अभी तुझे सोचता हूँ, इंडिया वाले जैसे कई बेशुमार खूबसूरत गाने हैं जो उनकी आवाज़ में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए, सुने जाते हैं। 31 मई 2022 को वो इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी ये जो बेशकीमती आवाज़ है उसके ज़रिए वो हर दर्शक के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो उन्हीं की आवाज़ में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गाना श्रोताओं ने सुनना चाहा है। महबूब ने इसे लिखा है, इस्माइल दरबार का संगीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, ऐशबाग पीली।

कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम पलक पंखुड़ी, राजनगर गांधी चौक, कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इंद्रजीत सिंह छाबड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य।

किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। सच में जिंदगी में मुस्कुराहट हम बांट सकें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए तो आज 31 मई को राष्ट्रीय मुस्कान दिवस यानी नेशनल स्माइल डे मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिन का उद्देश्य लोगों को मुस्कान की शक्ति और उसके सकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। मुस्कान न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाती है बल्कि तनाव को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में भी सहायक होती है। अध्ययनों से ये पता चला है कि मुस्कान से एंडोर्फिन नाम की हैप्पी हार्मोन का श्राव होता है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो श्रोताओं, नेशनल स्माइल डे यानी राष्ट्रीय मुस्कान दिवस की शुरुआत 1999 से हुई ताकि लोगों को एक दूसरे के प्रति दयालुता और सकारात्मकता फैलाने के लिए प्रेरित किया जा सके और मुस्कान हर किसी को बांट सके। तो एक मुस्कान बांटता ही प्यारा सा नगमा श्रोताओं के नाम, जिसे सुनना चाहा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाला फलनाझा से, नया नगर सुपौल से हमारे श्रोता हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। बहुत पास पास लिखते हैं आप, ज़रा दूर दूर लिखें जिससे पता चले कि श्रोता कहाँ से लिख रहे हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार है, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना, ललिता, नारायण खर्चे। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम, सदानंद बोरगांवकर, सुभाष, अंशुमन, ओपी, अल्मोड़ा।

हमारे श्रोता हैं नंदिनी, लावण्या, फरहद, मदन, गौरी, मायरा और शौर्य। मोरटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे किसान श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देव, किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल। तो आप सभी की फरमाइश पर ये है आखिरी नगमा।

जी हाँ श्रोताओं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। और आज मुस्कुराहट बांटते रहिए, खुश रहिए, इसी कामना के साथ गीत निर्झर प्रोग्राम संपन्न करने की अंजू पंक्ति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का प्रोग्राम सबरंग। आगाज कर रहे हैं के गाए महबूब के नगमे के साथ।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी हाँ आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी।

0: मना है?
1: कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
6: ऑली जब सुनिए यारो एल्बम से शंकर महादेवन को।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सबरन कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 10:30 होने को हैं समाचार। देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

की है। अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में आज आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में 132 सहायक सेनानी और एक महिला उप सेनानी राष्ट्र सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ लेंगे। समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश के मसूरी आगमन को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पास आउट अधिकारियों में देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 31 MBBS डॉक्टर, 31 BTech इंजीनियर, MD MTech और अन्य उच्च शिक्षित युवा भी शामिल हैं। इस अवसर पर पवन कुमार मीणा को गृह मंत्री सॉर्ड ऑफ ऑनर और बेस्ट ऑलराउंडर ट्रेनी सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं सचिन को बेस्ट आउटडोर ट्रेनी और कौंते मिश्रा को बेस्ट इनडोर ट्रेनी चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षा विभाग ने दो महत्वपूर्ण समझौता अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड काशीपुर व प्राविधिक शिक्षा विभाग के साथ हुए समझौते के तहत सरकार प्रदेश के नौनिहालों को तकनीकी व रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ विद्यालयों में शैक्षिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में जुटी है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उसे कौशल, तकनीक और रोजगार से जोड़ना है, ताकि विद्यार्थी स्कूली स्तर से ही अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकें। भारतीय प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान रुड़की 1 जून यानी कल JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र परिणाम घोषित होने के बाद संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर कोड और ऑल इंडिया रैंक देख सकेंगे। इससे पहले इंस्टीट्यूट ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर छात्रों से आपत्तियां मांगी थी। प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पेंचक सिलाट खेल अब पूरे राज्य से खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं और पिछले एक साल में प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने पेंचक सिलाट खेल में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतकर प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देहरादून आमवाला में स्थित मल्टीपर्पज हॉल में 7वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण समारोह में रेखा आर्या ने कहा कि पेंचक सिलाट जैसा खेल अनुशासन, परिश्रम और आत्मरक्षा का आत्मविश्वास देता है। अब युवा न सिर्फ इस खेल में करियर बना सकते हैं, साथ ही ये उनके लिए अपने आप को फिट रखने का भी शानदार जरिया है। राजधानी देहरादून में आज से ही झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी 2 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलने, ओलावृष्टि और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा।

सुरबहा के सभी श्रोताओं को अंजु पंक्ति का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज रविवार है और आज शास्त्रीयता से रंगा रहता है हमारा सुरबहार। गायन, वादन, नृत्य की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों विधाओं का जब समावेश होता है तो बनता है मधुर संगीत, और इन तीनों के समावेश से ही संगीत को पूर्णता मिलती है। हमारे देश में शास्त्रीय संगीत के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग घरानों से कई जाने माने कलाकार हुए हैं जिन्होंने संगीत की इस त्रिवेणी में महारत हासिल की है। और फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में भी उनकी प्रतिभाओं से हम समय समय पर आनंदित होते रहे हैं। तो चलिए आज सुर बहार में पहला सुर नृत्य का छेड़ते हैं। कथक के पितामह कहे जाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने कई दौर में फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया है। शास्त्रीय नृत्य के कई समृद्ध परंपरा हमने उनके जरिए देखे हैं। जैसा कि हम बात करें देवदास फिल्म की, तो इस फिल्म में पंडित बिरजू महाराज ने जहां नृत्य निर्देशन किया, वहीं उन्होंने इस फिल्म में गायकी भी की है। तो देवदास फिल्म से ही हमने लिया है सबसे पहला गाना, पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्णमूर्ति, माधुरी दीक्षित की स्वर सजे हैं, नुसरत बद्र ने इसे लिखा है और इस्माइल दरबार का संगीत है। तो आइए नृत्य की थिरकन को महसूस करते हैं पंडित बिरजू महाराज के निर्देशन में।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। पेश है सुरबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

तो श्रोताओं, ये तरंगित कर देने वाला गीत सुनकर ज़रूर थिरकन तो पैदा हुई होगी श्रोताओं आपकी भी। और अब सुरबहार में वादन प्रतिभा से रूबरू होते हैं। वादन के क्षेत्र में ना जाने कितने सारे वाद्य यंत्र हमारी भारतीय शास्त्रीय परंपरा में हैं, जिन्हें सुनकर हम आनंदित होते हैं, तरंगित होते हैं। उन्हें एकल सुने या फिर संगत रूप में, हर तरह से ये बेमिसाल होते हैं, शानदार हैं। बहरहाल बांसुरी के पर्याय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और संतूर के तारों को छेड़ने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे महान कलाकारों को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने भी फिल्मी दुनिया में अपनी प्रतिभाओं का जौहर दिखाया है। बहरहाल एक गाना जो मैंने शामिल किया है इस समय सुरबहार में, इस गाने में इन दोनों कलाकारों की प्रतिभा जीवंत हो उठती है। फिल्म है आखिरी खत, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल और खयाम का संगीत है।

तो श्रोताओं, नृत्य का और वादन का जलवा आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और अब गायन के रंग बिरंगे ना जाने कितने कलाकार शास्त्रीय संगीत के स्तंभ हैं और जिनकी गायकी की समृद्ध परंपरा विरासत को हर भारतीय ने देखा है और हर भारतीय इसका साक्षी है। बहरहाल, इस समय गायन की हम बात कर रहे हैं, संगीत की त्रिवेणी में समाहित ये जो परंपरा है, ये भी एक समृद्ध परंपरा है, क्योंकि गायकी के ज़रिए ना जाने कितने कलाकारों से हम अक्सर रूबरू होते हैं। इस समय हम एक बेहतरीन कलाकार, बेमिसाल गायकी से आपको परिचित करवा रहे हैं, और वो कलाकार हैं उस्ताद राशिद खान साहब, और फिल्म है जब वे मेट। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, प्रीतम का मधुर संगीत है, आइए सुनते हैं।

0: अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए

0: गया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान

0: अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे,

0: जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है अभी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना, और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं, तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही, कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी, अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहाँ पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी।

0: बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी

कला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल

आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही

यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने
मन की बात।

0: में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो

0: महोदयः स्वस्य 50वार्षिकीं पूर्णताम् अगच्छत्। देशस्य शिक्षाक्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीयास्ति। अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि, तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीर सैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः, भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामी मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये सफर बेहद खास है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कसक भी है। आज से ठीक 4 साल पहले यानी 31 मई 2022 को संगीत की दुनिया की एक ऐसी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई थी जिसने हर धड़कन को अपनी धुन पर नचाया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हम सब के चहेते जादुई आवाज़ के मालिक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। दोस्तों, के केवल एक पार्श्व गायक ही नहीं थे, वे हमारी कॉलेज लाइफ की कैंटीन की यादें थे। वो पहला पहला प्यार थे और वे ही दिल टूटने का सहारा थे और वे यारी दोस्ती की जान थे। तो चलिए आज मेरी पसंद नए यादों की इसी पिटारे को खोलते हैं और सफर की शुरुआत करते हैं इस गीत से, जिसे हमने लिया है गैंगस्टर फिल्म से। आवाज है के की।

दोस्तों 23 अगस्त 1968 को दिल्ली के एक मलयाली परिवार में जन्मे के का रिश्ता संगीत से बचपन से ही था। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक और क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, वे बस दिल से गाते थे। दिल्ली की गलियों से निकलकर जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया तो शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू ऐसा था कि फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले ही उन्होंने लगभग 11 भाषाओं में 3,500 से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स गाए। वो जोश और जुनून उनकी आवाज़ में साफ झलकता था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। साल 1999 भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ जब केके की पहली सोलो एल्बम पल रिलीज हुई, जिसने रातों रात उन्हें हर युवा दिल की धड़कन बना दिया। इस दौरान फिल्म हम दिल दे चुके सनम में उनका गाया गीत तड़प तड़प के इस दिल से भी रिलीज हुआ। इस एक गीत ने सभी श्रोताओं को के दिल को झकझोर कर रख दिया। दर्द को आवाज़ में कैसे पिरोया जाता है, ये केके ने उस गीत में बखूबी दिखाया और इसके बाद बॉलीवुड के हर बड़े कंपोजर्स की पहली पसंद केके बन गए। तो आइए सुनते हैं केके का गाया जन्नत फिल्म का ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक केके पर। दोस्तों, केके की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनके पास जिंदगी के हर जज्बात के लिए एक सुर था, चाहे बात दोस्ती की हो, प्यार की हो या फिर दिल टूटने की। उन्होंने हर उस भावना को अपनी आवाज़ में पिरोया जिसे हम और आप लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाते। वे भारतीय संगीत के इतिहास में अपनी सुंदर और मीठी आवाज़ के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। केके ने लगभग अपने पूरे करियर में 700 से अधिक गीत गाए, जिनमें से लगभग सारे गीत अपने समय में हिट साबित हुए। जिन फिल्मों

गीतों को केके ने अपनी मधुर आवाज से पिरोया। उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं हम दिल दे चुके सनम, दिल चाहता है, साथिया, देवदास, वो लम्हे, ओम शांति ओम, गैंगस्टर, जन्नत आशिकी टू, खट्टा मीठा और बचना ए हसीनो जैसी कई फिल्मों के गीत। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में बचना ए हसीनो फिल्म का एक गीत।

दोस्तों, हिंदी के अलावा केके ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी गीत गाए हैं। उन्हें 2 स्क्रीन पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे और साथ ही 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए। दोस्तों, केके की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उनकी आवाज़ में एक सूफीपन और एक गहरा एहसास था। वे हमेशा कहते थे कि मेरा चेहरा दिखे ना दिखे, मेरी आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंचनी चाहिए। 31 मई 2022 को कोलकाता के एक लाइव कॉन्सर्ट में गाते गाते ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, मानो एक सच्चा फनकार अपनी कर्म भूमि पर ही विलीन हो गया। आज भले ही वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे अपने गीतों के जरिए हमेशा अमर रहेंगे। जब तक इस दुनिया में मोहब्बत जिंदा है, दोस्ती है और टूटे दिलों का दर्द जिंदा है, तब तक केके की आवाज़ हमारे आसपास गूंजती ही रहेगी। तो चलिए यादों के सफर में लीजिए, सुनते हैं केके का गाया तुम मिले फिल्म का गीत।

इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी बहन गीता कनवाल का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों आप? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और इंतजार कर रही होंगी हमारे आज के विशेष पत्रोत्तर कार्यक्रम बहनों की चिट्ठी का। तो बहनों आज हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को और देंगे आपके पत्रों का जवाब बहनों की चिट्ठी कार्यक्रम के तहत। साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो बहनों

0: बहनों की चिट्ठी के मई माह के अंक के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। सभी बहनों को अंजू पांगति
1: और दीपिका पंत का
0: प्यार भरा नमस्कार। तो दीपिका जी, आप देख रही हैं बहुत सारे पत्र आए हुए हैं, इसके अलावा मैसेजेस भी आए हुए हैं। आज जो पहले मैं शामिल करने जा रही हूँ वो है व्हाट्सएप से भेजा गया मैसेज और

0: अंजू पांगती
1: और दीपिका पंत का
0: प्यार भरा नमस्कार। तो दीपिका जी, आप देख रहे हैं बहुत सारे पत्र आए हुए हैं, इसके अलावा मैसेजेस भी आए हुए हैं। आज जो पहले मैं शामिल करने जा रही हूं वो है व्हाट्सएप से भेजा गया मैसेज, और ये हमें भेजा है श्रीमती पूनम बिष्ट ने कोसी अल्मोड़ा से। आप लिखती हैं कि आकाशवाणी अल्मोड़ा से प्रसारित कार्यक्रम घर संसार इन्हें बहुत अच्छा लगता है और मैं इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करती हूं और इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियां दी जाती हैं जो महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। 17 मई को घर संसार कार्यक्रम में महिलाओं में उच्च रक्तचाप की समस्या पर डॉक्टर श्वेता चौहान से जो बातचीत की गई थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी है। और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा, जितनी भी उन्होंने बातें बताई उच्च रक्तचाप से संबंधित वो हमारे बहनों के लिए खासकर बहुत लाभदायक थी, और ये उम्मीद करती हैं कि आगे भी घर संसार कार्यक्रम में ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। और खासकर इन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित बात की है, तो आगे बताएं दीपिका जी, आपका क्या है कहना?
1: सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं पूनम जी का कि इन्होंने न सिर्फ हमारा कार्यक्रम सुना है बल्कि उसके प्रति इनकी जो प्रतिक्रिया रही वो भी हमसे इन्होंने साझा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रमों को आप यूं ही ऐसे लगातार सुनते रहें। और जहां तक इन्होंने बात की है उच्च रक्तचाप के बारे में, तो हम अपनी बहनों से ये कहना चाहेंगे कि बहनें कभी कभार अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहती हैं, तो हम अपनी ये जिम्मेदारी समझ हैं कि ऐसी बातचीत से हम उन्हें थोड़ा सा जागरूक कर पाएं कि वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तभी परिवार को भी अच्छे से संभाल पाएंगी और अन्य कार्य भी कर पाएंगी। और ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और जो हम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं उसका आप लाभ उठाएं, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी।
0: दीपिका जी, ये अगला पत्र हमें भेजा है श्रीमती रीता नेगी ने, अल्मोड़ा से ये लिखती हैं। आपने लिखा है जैसा कि आजकल हमारे केंद्र से भी प्रसारित हो रहे हैं और लगभग हर केंद्र से भी अगर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि आकाशवाणी जो है अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो इससे संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो हमारे बहनों के कार्यक्रम में भी आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पर आधारित जो बातचीत थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। उसमें बहुत से बहनों ने अपने संस्मरण साझा किए थे जो कि कुमाऊनी में थे, खास तौर पर इन्हें ये ज्यादा अच्छा लगा है। और इस कार्यक्रम में गौरवशाली 90 वर्षों की बात सुनी तो इन्हें भी जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो गई, क्योंकि एक दौर रहा है जब रेडियो ही हमारा सबसे खास सच्चा और अच्छा मित्र हुआ करता था। आज भी है, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब उन्होंने साझा की थी बहुत सी बातें, तो कई लोगों ने अपने पुराने वक्त की बात भी की थी। आज भी जो लोग सुनते हैं उसका भी जिक्र था। तो यही इन्होंने लिखा है कि ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, और खासकर सबसे अच्छी बात जैसा कि मैंने बताया दीपिका जी कि इन्हें कुमाऊनी में ये प्रसारित हुआ था वो ज्यादा अच्छा लगा।
1: जी अंजू जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं इस वर्ष 8 जून को आकाशवाणी अपना 90वां स्थापना दिवस मनाएगा, यानी कि 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे आकाशवाणी को। आकाशवाणी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हमें बहुत खुशी होती है कि हम इसका एक अंग हैं। और जहां तक बात की रीता जी ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पर आधारित कार्यक्रम सुनाया था वो इन्हें अच्छा लगा, और ये सुनकर और भी अच्छा लगा कि कुमाऊनी में कार्यक्रम प्रसारित होने के कारण इन्हें ज्यादा पसंद आया। हमारी कोशिश रहती है कि हम कुमाऊनी भाषा को लेकर आगे चलें और कुमाऊनी में भी अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों का प्रसारण करें। एक बार फिर से इनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ये कार्यक्रम सुना और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा की। धन्यवाद रीता जी।
0: और दीपिका जी, इनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर इनकी भी कोई याद ताज़ा होती है 90 वर्षों से संबंधित तो अपने यादों को हमसे साझा कर सकते हैं, रेडियो से जुड़ी खासकर।
1: जी, रेडियो में प्रस्तुति देने वाले प्रस्तुतकर्ता और साथ ही सुनने वाले श्रोता आप भी आकाशवाणी का ही अंग हैं। आपकी जो भी आकाशवाणी से जुड़ी यादें हैं अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें संदेश से साझा कर सकते हैं या खत भी लिख सकते हैं, आपका हमेशा ही स्वागत है।
0: अब एक और पत्र मैं ले रही हूं जो कि श्रीमती दीप्ति भट्ट ने हल्द्वानी जेकेपुरम सी ब्लॉक मुखानी से भेजा है, और पूरा ही पता इन्होंने दिया है, अच्छी बात है। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी अल्मोड़ा से डॉक्टर डीसी पुनेरा से जो बातचीत की गई थी, अस्थमा कारण लक्षण और उपचार इस विषय पर जो बातचीत प्रसारित हुई थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी है, और डॉक्टर साहब ने भी बहुत विस्तार से जानकारी दी। स्वास्थ्य से संबंधित जब बात होती है और उसमें जानकारी महत्वपूर्ण होती है और अच्छी जानकारी साझा हुई है। और सबसे अच्छी बात दीप्ति जी ने लिखी है कि डॉक्टर साहब ने भी कुमाऊनी में बोला तो इन्हें ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कुमाऊनी देखिए मीठी हमारी बोली है।

0: स्वास्थ्य से संबंधित बात है और वो भी कुमाऊनी में है, तो आपका क्या है कहना?
1: जी अंजू जी, सबसे पहले तो जो हमारी श्रोता हैं दीप्ति भट्ट जी, आपका धन्यवाद, आपने अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा की। जब आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते हैं, अपने खत हमें भेजते हैं, मैसेजेस हमें भेजते हैं, उसी से हम आंकलन कर पाते हैं कि हम शायद एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ भी हमें आपके खतों से और आपके मैसेजेस के माध्यम से ही इसका हमें पता चलता है। साथ ही जैसे कि आपने कहा अंजू जी कि कुमाऊनी भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की बात ही अलग है और हमारे जो श्रोता हैं वो खासकर कुमाऊनी में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ज्यादा तारीफ करते हैं या उन्हें एक अच्छा लगता है, तो मैं मानती हूँ कि शायद अपनी भाषा सुनकर उन्हें एक अपनापन महसूस होता होगा और अपनी भाषा में अपनापन तो होता ही है, मिठास तो होती ही है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बोली को आगे बढ़ाने के लिए हम उसे बोलें, समझें और अपने बच्चों को भी ये बोली बोलने के लिए प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं। और धन्यवाद एक बार फिर से कि आपने अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा की।
0: और इसी क्रम में अब एक पत्र और भी मैं उठाने जा रही हूँ। देखिए, आकाशवाणी के 90 वर्षों का जब जिक्र होता है तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है दीपिका जी, वो ये कि आज भी हमारे श्रोता अपने हाथों से लिखकर जब हमें पत्र भेजते हैं तो वो दिल को छू जाते हैं। आज के दौर में बच्चों से अगर हम बात करें तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि पत्र भी लिखे जाते थे, लेकिन आकाशवाणी के पास ये समृद्ध परंपरा आज भी जीवित है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बहनों की चिट्ठियां हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फरमाइशी पत्र आते हैं और वो इतनी दूर दूर से हमें पत्र भेजते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी इन सखियों ने ये पत्र हमें लिखकर भेजा है। और सबसे अच्छी बात दीपिका जी, आप खुद देख रहे हैं कि कितनी सुंदर इनकी लिखावट है और इन्होंने बहुत सुंदर इसमें देखिए रंग बिरंगे कलर्स का भी इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी चित्रकारी भी कोशिश की है और इन्होंने भी आकाशवाणी के 90 वर्ष की हमें शुभकामना भेजी।
1: जी, ऐसे पत्र देखकर वाकई बहुत दिल खुश हो जाता है।
0: जी,
1: वाकई लिखावट तो बहुत ही सुंदर है, साथ ही जो इन्होंने कारीगरी इसमें अपनी दिखाई है
0: वो भी कमाल की,
1: बिल्कुल प्रफुल्लित।
0: जी हाँ, और सबसे अच्छी बात कि गौरवशाली 90 वर्षों का जिक्र हम कर रहे हैं और देखिए हमारी बहनें इतनी सजग हैं कि उन्होंने भी हमें शुभकामनाएं भेजी हैं, तो भाई हमारी ओर से भी बहुत सारे शुभकामनाएं आप सभी बहनों को। और ये पत्र जो हमें भेजा है दीपिका जी, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये तारा जोशी और आशा कोरंगा ने हल्द्वानी से हमें भेजा है और ये लिखती हैं कि महिला कार्यक्रम, चाहे वो ऐपण हो, घर संसार कार्यक्रम हो, ये दोनों ही कार्यक्रम हम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, नियमित श्रोता हैं और आज पहली बार आपसे पत्र साझा कर रहे हैं। और इसके अलावा ये लिखते हैं कि इस कार्यक्रम में कुमाऊनी में चाहे वो हिंदी में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी जो बातचीत रोज किसी न किसी विषय पर कोई भी कार्यक्रम आते हैं तो वो हमें बहुत भाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने इसी कार्यक्रम में ये भी अपने पत्र में लिखा है कि 27 मई को दोहरी भूमिका निभाती आज की महिला इस विषय पर श्रीमती पूर्णा पंत की जो वार्ता थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी और सच में उन्होंने जितनी भी बातें बताई हम महिलाओं से संबंधित दोहरी भूमिका की जो बातें थी वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक थी जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला। और ये लिखती हैं कि आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम हमें सुनाते रहिएगा और हम जो है आगे भी यूं ही पत्र भेजते रहेंगे। आज इनका पहला पत्र है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी और आशा जी, आपका हल्द्वानी से आपने हमें पत्र लिखा, आपका पहला ही पत्र है, हमें बहुत खुशी हुई आपका पत्र पढ़कर और पाकर। आपने लिखा है कि आपको वार्ता पसंद आई जिसका विषय था दोहरी भूमिका निभाती आज की महिला और वार्ताकार थी पूर्णापन। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरह की भूमिकाएं निभाती हैं। आजकल अधिकतर महिलाएं कामकाजी भी हैं, साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की एक बात है कि महिलाएं दोनों ही मोर्चों पर अपना परचम लहरा रहे हैं। और एक बात मैं अंजू जी आपसे कहना चाहूंगी, महिलाएं ही महिलाओं को सशक्त बनाने में भूमिका निभाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की है जो एक दूसरे को सशक्त कर सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: और हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं, यही संदेश हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी श्रोता बहनों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप महिला हैं तो दूसरी महिला को सशक्त बनाने में आप अपनी भूमिका निभाएं। ये हमारा कार्यक्रम आप तक पहुंच पाता है हमारे प्रस्तुतकर्ताओं की वजह से, चाहे वो ऐपण के प्रस्तुतकर्ता हों या फिर घर संसार के, वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप तक एक अच्छा कार्यक्रम, अच्छी जानकारियां ला सकें। तो इस कार्यक्रम को बनाने में उनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: और जैसा कि इन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों की, तो दीपिका जी अगर हम अपने कार्यक्रमों का पूरा इतिहास देखें, उसमें झांकें, तो पाते हैं कि महिलाओं ने इस आकाशवाणी की इस गौरवशाली

0: परंपरा को कायम रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और देखिए बहुत सारी बहनें जो हैं कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, इसके अलावा विशेष रूप से महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं, तो एक सशक्त भूमिका की जहां आपने बात की, और घर परिवार की तो है ही, लेकिन रेडियो की दुनिया में भी उनकी खास भूमिका
1: है। बहुत खास भूमिका है
0: जी।
1: जी जैसा कि अंजू जी ने बताया कि रेडियो में भी हम देखते हैं कि प्रस्तुतकर्ता हमारी जो महिलाएं हैं ये भी दोहरी भूमिका निभाती हैं, घर भी संभालती हैं, रेडियो से कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं, साथ ही कोशिश करती हैं कि आजकल की जो समस्याएं हैं या जो जानकारियां हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड से हों, चाहे वो स्वास्थ्य के फील्ड से हों, या फिर हमारी परंपराओं को सहेजने की बात हो, हर क्षेत्र से आपके लिए कुछ न कुछ चुनकर लाती हैं। और इसी क्रम में मैं एक बात और फिर अपनी श्रोता बहनों और भाइयों से भी साझा करना चाहती हूँ। हालांकि हम प्रत्येक कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि हम सशक्त महिलाओं से आपको रूबरू करवाएं, लेकिन एक खास हमारा सेगमेंट जो हर माह के दूसरे सोमवार को प्रसारित किया जाता है शक्ति, उसमें तो हम एक सशक्त महिला से अपनी बहनों को रूबरू करवाते ही हैं, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले कि वो भी समाज में जो भी भूमिका अपनी निभा रही हैं, भले ही घर में रहकर घर को समृद्ध कर रही हों या बाहर जाकर बाहर किसी फील्ड में काम कर रही हों, आप जो भी भूमिका निभा रही हैं आप सशक्त हैं और जो भी करना चाहें उसको आप कर सकती हैं।
0: अब दीपिका जी देखिए घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अब ज्यादा बातचीत ना हो, क्योंकि अगले कार्यक्रम भी हमारे इंतजार में है। तो आज का जो है ये आखिरी खत मैंने लिया है, ये है श्रीमती माया रावत का, जो कि अल्मोड़ा से ही इन्होंने हमें पत्र लिखा है। लिखते हैं कि घर संसार कार्यक्रम से प्रसारित 3 मई को सुश्री हेमलता भट्ट की वार्ता इन्हें बहुत पसंद आई। विषय था गुड टच बैड टच पर आधारित ये वार्ता थी। इस वार्ता के माध्यम से बहुत सी ऐसी बातें बताई गई जो आज चाहे वो शिक्षकों की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो या माता पिता की बात हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये भी आग्रह कर रही हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण विषयों पर और भी कार्यक्रम प्रसारित करते रहिएगा।
1: जी माया रावत जी, बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धक वार्ताएं और जानकारियां, भेंट वार्ताएं, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आप तक हम लेकर आएं। जैसा कि आपने कहा, जिस विषय की आपने बात की, गुड टच और बैड टच को कैसे समझाएं, हम सभी जानते हैं कि आजकल के समय में ये एक बहुत ज़रूरी विषय है और इस पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। अपने बच्चों से अभिभावकों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए और शिक्षकों को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें खुशी हुई कि ये वार्ता आपको अच्छी लगी, लेकिन अच्छी लगने के ही साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों को इस बारे में ज़रूर सजग करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें पत्र भेजा। और साथ ही अंजू जी, मैं अपनी श्रोता बहनों से एक चीज़ कहना चाहूंगी,
0: जी जी।
1: आप भी इससे अग्री करेंगी,
0: बिल्कुल,
1: आप जो भी मैसेज हमें करते हैं वो भी हमें बहुत प्यारे हैं, लेकिन खासकर जब आप अपने हाथों से लिखकर हमें खत भेजती हैं तो हमें लगता है कि शायद आप हमारे सामने ही हैं, बिल्कुल रूबरू आपके हम बैठे हैं, और हमें बहुत खुशी होती है। और आप यकीन माने कि इन खतों को हम संभाल के रखते हैं,
0: बिल्कुल। और इन खतों में जब देखिए हम हाथ फिराते हैं तो हमें महसूस होता है कि आप बिल्कुल हमारे सामने। और अब जैसे कि दीपिका जी मैंने कहा, समय अब समापन की ओर है, तो बहनों को जैसा कि पता ही है कि हर माह के समापन के घर संसार कार्यक्रम में हम बहनों की चिट्ठी लेकर आते हैं, तो और भी बहनें हमसे जुड़ें, हमें पत्र लिखें, मैसेजेस करें, जो भी आप चाहें। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम घर संसार बहनों की चिट्ठी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड संख्या 263601।
1: और अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहती हैं या मैसेजेस भेजना चाहती हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 9411100112।
0: तो दीपिका जी, आज मई माह के अंक से बहनों की चिट्ठी से लेते हैं विदा। मैं अंजू पांगती,
1: मैं दीपिका पंत,
0: सभी बहनों को नमस्कार।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी पत्रोत्तर कार्यक्रम बहनों की चिट्ठी, प्रस्तुतकर्ता थी अंजू पांगती और दीपिका पंत। बहनों, आशा करते हैं कि आपको आज का पत्रोत्तर कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। बहनों, पत्र ही तो हैं जो आपको और हमको साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: स्वागत है बहनों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, तंबाकू का सेवन आज के समय में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गया है। चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या पान मसाला के रूप में हो, तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू का सेवन कई गंभीर बीमारियों में जैसे मुंह का कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और स्ट्रोक का प्रमुख कारण भी बन सकता है। इसलिए बहनों, तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने और तंबाकू के सेवन से दूर रहने के लिए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहनों, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से दूर रहने तथा इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करता है। बहनों, तंबाकू में निकोटीन नाम का जहरीला पदार्थ पाया जाता है जो धीरे धीरे मनुष्य को इसकी लत लगा देता है, इसलिए तंबाकू के सेवन से बचाव करें। इस दिन का महत्व है लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना तथा युवाओं को इसकी लत से बचाना। स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में भी इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। बहनों, देखें तो आजकल कई युवा फैशन या मित्रों के दबाव में आकर तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये आदत नशे में बदल जाती है और उनका भविष्य खराब होने लगता है। इसलिए परिवार और समाज का भी कर्तव्य है कि वे युवाओं को सही मार्गदर्शन दें और उनका भविष्य सुधारें। बहनों, तंबाकू मानव जीवन के लिए एक धीमा जहर है। इससे दूर रहकर ही स्वस्थ और सुखी जीवन जिया जा सकता है। इसलिए स्वयं भी तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए। बहनों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें स्वस्थ जीवन अपनाने और समाज को नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा देता है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने की सार्थकता भी इसी में है कि हम सभी स्वयं भी नशे से दूर रहें, साथ ही तंबाकू के सेवन से बचें और बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाएं। तो बहनों, ये तो थी कुछ बातें विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। साथ ही बहनों, 31 मई यानी आज के दिन को राष्ट्रीय मुस्कान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बहनों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को मुस्कान की शक्ति और इसके सकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इसलिए बहनों, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करिए। तो बहनों, ये तो थी कुछ बातें राष्ट्रीय मुस्कान दिवस के विषय में और अब आइए कार्यक्रम में आगे करते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

तो बहनों, इसी गीत के साथ अपनी बहन गीता कनवाल को दीजिए आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। अगले अंक में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। केदारनाथ धाम यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रचा। मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यटकों की सुविधाओं की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों सहित कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। श्री मोदी ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी,

0: सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं और इनमें पीढ़ियों का अनुभव समाहित है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका ही बाहर रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा।
0: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। केदारनाथ धाम यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रच दिया है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 30 मई तक मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 10,497 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण इस वर्ष यात्रा ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। यह उपलब्धि यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को भी दर्शाती है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुगम दर्शन के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पार्किंग, यातायात प्रबंधन, पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम परिसर में व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।
2: श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे और अभी एक माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। करीब 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में उत्साह पूर्वक यहाँ पर आकर सुगम दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस दोनों के ही द्वारा यहाँ पर लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो पार्किंग व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, पैदल मार्ग हो या फिर केदारनाथ धाम की व्यवस्था। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी श्रद्धालुओं का सुरक्षित यहाँ पर यात्रा रहे और सुगम उनको दर्शन कराए जाएं। जो हमारी प्रशासन की टीम है वो और पुलिस की टीम है, जो अतिरिक्त हमारे यूनिट्स हैं, चाहे SDRF के हों, चाहे आपदा की DDRF की टीम्स हो, NDRF की टीम्स हो, CAPF की टीम हो, वो यहाँ पर पूरे यातायात के रूट पर, पैदल मार्ग पर और श्री केदारनाथ धाम में भी लगी हुई हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित बनाई जा सके।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: अल्मोड़ा के जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने कल जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने पनुआनौला में बिखरे पड़े कूड़े पर नाराजगी जाहिर की तथा कूड़े के समुचित प्रबंधन के लिए संबंधितों को दिशा निर्देश दिए। यहां उन्होंने पार्किंग की आवश्यकता पर बल देते हुए संबंधितों को कहा कि पार्किंग के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने अर्तोला पार्किंग में यातायात व्यवस्था तथा साफ सफाई आदि की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा कहा कि जागेश्वर धाम में बढ़ती पर्यटकों की संख्या के दृष्टिगत पार्किंग व्यवस्थाओं को विस्तृत किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि अर्तोला पार्किंग को मल्टी स्टोरी पार्किंग के रूप में विस्तारित करने के लिए आगणन बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने यहाँ कूड़ा प्रबंधन और शौचालयों की नियमित साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों सहित कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई।

0: गई है। देहरादून समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। कल रात से शुरू हुई बारिश आज सुबह तक रुक रुक कर जारी है। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में भारी वर्षा, आंधी तूफान एवं अन्य प्रतिकूल मौसम गतिविधियों की प्रबल संभावना व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभावित आपदा परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एहतियाती एवं सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने आज कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि सशस्त्र बलों ने लगातार अपनी पेशेवर दक्षता और अभियानों को निष्कर्ष तक पहुंचाने में अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है और वे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों चरम पर है। दोनों पवित्र धामों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन लगभग 30,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। यात्रा के बढ़ते दबाव के बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी के बीच क्षतिग्रस्त सड़क और मरम्मत कार्य के चलते यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सड़क के कुछ हिस्सों में ऊंचे नीचे स्तर और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण बीच बीच में वाहनों के खराब होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में चमोली पुलिस ने प्रभावी गेट सिस्टम लागू किया है। चमोली जिले के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ तस्वीरों को जाम की स्थिति बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तव में वे गेट सिस्टम के तहत व्यवस्थित रूप से खड़े वाहन हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मार्ग पर यातायात नियंत्रित, सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सोलर पैनल लगाए गए। यह पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए हैं और महाराष्ट्र गुजरात के बाद देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां अब तक 6,00,000 से अधिक छतों पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। केदारनाथ धाम यात्रा ने इस वर्ष नया इतिहास रचा। मात्र 39 दिनों में 10,00,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जागेश्वर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यटकों की सुविधाओं की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों सहित कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रूना लैला के गाए इस नगमे के साथ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान। महिला

0: सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए अली हैदर का गाया ये गीत।

0: ए हरिहरन के गाए इसी नगमे के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व पर आधारित रूपक भारतीय आत्मा का स्वर। प्रस्तुत करता है डॉक्टर सुनील केशव।
1: की परम सुकोमलता और आकर्षणशीलता से जब मेरी आस्थाएं गुदगुदा उठती हैं, तब मैं उन्हें कभी देश पर और कभी देव पर, कभी मानव पर और कभी प्रभु पर चढ़ाने का मोह संवरण नहीं कर सकता। ये शब्द हैं भारतीय अस्मिता और सांस्कृतिक समन्वयशीलता को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व द्वारा रूपायित करने वाले राष्ट्र भारती के अमर गायक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के। उनके जीवन और काव्य को रेखांकित करता है ये रूपक भारतीय आत्मा का स्वर। लेखक प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिन्हा अंजलि, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुनील केशव देवधर, संगीत संयोजन रमेश इंदुबासु। तो सुनिए रूपक भारतीय आत्मा का स्वर।

0: भारतीय आत्मा के स्वनाम धन्य गौरव से मंडित, राष्ट्र के सांस्कृतिक चेतना के कला तीर्थ, मानवीय अस्मिता के कीर्ति केतन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का समग्र कृतित्व उनके संकल्पित अजेय व्यक्तित्व का कर्म संकुल पुरस्चरण है।
1: भारतीय आत्मा की साहित्य सृष्टि व्यष्टि बोध के समष्टि बोध में भावनात्मक रूपांतरण की रचनात्मक परिणति है। वो अहम तत्व का इदम तत्व की समन्वित चेतना में निश्चल प्राण समर्पण है। पुष्प की अभिलाषा निवेदन के माध्यम से माखनलाल जी ने वस्तुतः राष्ट्र वीरों के

सृष्टि व्यष्टि बोध के समष्टि बोध में भावनात्मक रूपांतरण की रचनात्मक परिणति है। वो अहम तत्व का इदम तत्व की समन्वित चेतना में निश्चल प्राण समर्पण है। पुष्प की अभिलाषा निवेदन के माध्यम से माखनलाल जी ने वसुतः राष्ट्र वीरों के कर्तव्य पथ का ही अनुगमन किया है।

0: माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य की मूल चेतना राष्ट्रीय है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को सांस्कृतिक राष्ट्रीय गरिमा को वहन करने वाली जन चेतना के अभिनव विकास का काल कहा गया है।
1: राष्ट्रीय शक्ति को इष्ट शक्ति के प्रेरक केंद्रक के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भारतीय आत्मा की प्रखर ओजस्वी स्वाधीन चेता शक्ति धारणी भाववर्धनीय राष्ट्रीय बोध परक रचनाओं को ही है। राष्ट्र ही कवि का परम उपास्य सर्वोच्च देवता है, जिसके चरणों में निश्चल भाव से उसने भाव पुष्प समर्पित किए हैं।

0: भारतीय आत्मा का भौतिक अवतरण होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी संवत 1946 विक्रम तदनुसार 4 अप्रैल 1889 को माता सुंदरबाई की पुण्य प्रसूता कोख से हुआ। पिता श्री नंदलाल चतुर्वेदी वैष्णवी आस्था भक्ति मर्यादा के शीलपुंज कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक थे। वात्सल्य भाव की कोमल सुखद स्मृति को पुत्र में साकार पाने की अभिलाषा में उनका नाम माखनलाल रखा गया।
1: बालक के कोमल मन पर माता और बुआ के संस्कार के बीच पड़े, पिता के स्वाभिमान का सुरस जल मिला, परिवार का आत्मानुशासित तेज प्रकाश माखनलाल के व्यक्तित्व को प्रस्फुटित करने में सहायक हुआ
0: और वो अपने युग के राष्ट्र उद्यान का शौर्य पुष्प बनकर त्याग की मस्ती में हंसा, इचलाया, झूमा और फिर राष्ट्र भारती के चरणों में अपने अस्तित्व की विभूति को अर्पित निवेदित कर कालजयी कीर्ति का गौरव स्मारक बन गया।
1: भारतीय आत्मा के स्वर में जहाँ पुष्प की समर्पण अभिलाषा की को

0: माखनलाल जी की साहित्य रचना की अवधि 1904 ईस्वी से 30 जनवरी 1968 तक विस्तृत है। उनकी समर्थ लेखनी का प्रवाह मृत्यु पर्यंत मानसी चेतना की तरलता में रस सिक्त रहा।
1: विंध्यांचल की हरित श्याम वनश्री, मैकल पर्वत की सप्त शैल मालाओं की रहस्यात्मक उठान, शीतल जलधारा के मोहक प्रपात, पलाश पुष्पों से अलंकृत वृक्ष पंक्तियां और वन्य जीवों की उपस्थिति से विभूषित प्रकृति की मुक्त रंगशाला ने भारतीय आत्मा के व्यक्तित्व को निर्भयता, स्वच्छंदता, कर्मठता और समर्पण की सहज मानवीय गुणधर्मिता प्रदान की।
0: हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, युग चरण, वेणुलो गूंजे धरा, बिजुरी काजर आंज रही माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य कृति है। मरण ज्वार का प्रकाशन कवि की मृत्यु के उपरांत हुआ।
1: भारतीय आत्मा की गद्य रचनाओं में काव्यात्मक शैली का निरूपण होने से उन्हें गद्य काव्य अथवा प्रगीतात्मक गद्य कहा गया है। साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पांव पांव, रंगों की बोली विविध निबंधों के ललित संग्रह हैं।
0: समय के पांव उनकी संस्मरण प्रधान गद्य रचना है। उनकी कहानियों का एकमात्र प्रकाशित संग्रह कला का अनुवाद है। इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन युद्ध उनकी एकमात्र नाट्य कृति है, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ। पहली बार इसका मंचन खंडवा के कलाकारों द्वारा अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के जबलपुर में आयोजित सप्तम अधिवेशन के समापन अवसर पर हुआ।
1: कृष्णार्जुन युद्ध हिंदी के आधुनिक नाटकों के विकास में मील का पत्थर है। यह अकेली रचना ही भारतीय आत्मा की साहित्य कीर्ति की यश पताका है। प्रकाशन के कुछ समय के अंदर ही इसकी 60,000 से अधिक प्रति हाथों हाथ बिक गई थी।
0: माखनलाल जी के सामायिक लेख प्रभा, प्रताप, कर्मवीर आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। उन्होंने 1913 में खंडवा से प्रकाशित प्रभा का संपादन किया। माधवराव सप्रे तथा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी उनके कर्म पथ में अनन्य सहचर रहे।
1: भाषण कला में उनके समान वाक्पटु वक्ता उनके युग में बहुत कम थे। वैचारिक क्षेत्र में माखनलाल जी बाल गंगाधर तिलक और व्यवहार क्षेत्र में महात्मा गांधी से प्रभावित प्रेरित थे। उनके शब्दों का जादू अद्भुत था। वे सच्चे भारतीय पुत्र और अभिव्यक्ति कौशल के अप्रतिम जादूगर थे। उनकी भाषा बिंबात्मक और चित्र प्रधान थी।
2: उनके स्वर अपना युगानुरूप संस्कार करते चले हैं। वे जितना पिछले युग की राष्ट्रीय धारा से जुड़े हैं, उतने ही नए युग की बौद्धिक चेतना से भी। वस्तुतः वे मनुष्य की भावनात्मक और वैचारिक स्वतंत्रता के समर्थ जनवादी प्रवक्ता हैं।
3: मैं कहूँगा भूमि से आकाश तक मेरी परिधि है। मैं कहूँगा मातृभू केवल हमारी पूर्ण निधि है। मैं कहूँगा मारना मरना तरुण की जिंदगी है। मैं कहूँगा मृत्यु पर अमृत्व की बाजी लगी है।
0: भारतीय आत्मा के साहित्य का प्राण राष्ट्र प्रेम है। प्रखर स्वाभिमान की ओजस्विता से उनका समस्त पौरुष काव्य ऊर्जस्वित है। वे अपने युग के राष्ट्रीय उद्घोषक और वैतालिक हैं। साहित्यकार के रचना कर्तव्य बोध को उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है।
4: साहित्य विचार और जनजीवन के बीच की सुनहली कड़ी है। वह निर्माण की मधुर भाषा है। अंतःकरण की मनमोहनी उथल पुथल वह कष्ट में पड़े हुओं, आवश्यकता से प्रताड़ितों और मन के जहर से जहरीले होने से घबराए हुए लोगों के दौड़कर सहायक होने की वह कला है।

0: किस तरह प्यार और आनंद के कोई बाहरी साज सामान नहीं हुआ करते, उसी तरह कविता के चढ़ने उतरने की भी कोई सीढ़ियां नहीं बनी होती। भारतीय संस्कृति में यह पग पग पर गूंथा गया है कि मनुष्य अपने विषय में कुछ नहीं बोल पाता। संगीत की अनेक रागिनियों का निर्माता कौन? अधिकांशतः कहीं भी आपने लिखा हुआ नहीं, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कला का वह श्रम जहां जीवन के माधुर्य को उकसाता है, वहां उस परिश्रम की कीर्ति को दफनाता भी जाता है। इसीलिए कविता न मेरा उद्रेक है न उत्साह, वह तो मेरे जीवन की लाचारी रही।
1: राष्ट्रीय उद्बोधन और समर्पण का स्वर उनके साहित्य की सर्व प्रमुख भावधारा है। संघर्ष उसकी शक्ति और स्वतंत्रता ही सिद्धि है। बलिपथ पर उत्सर्ग होना जीवन का आदर्श है।
2: कोटि कोटि के महाप्राण, सृजन प्रलय पर तांडव लय पर करकूजित नव वेद गान। कोटि कोटि के महाप्राण, असिके सपनों के आर पार, बह रहे सतत स्वातंत्र धार। शिरहु चिंतन का सामगान, उरहो बलिदानों का प्रमाण। उठ कोटि कोटि के महाप्राण, उठ कोटि कोटि के महाप्राण।
3: भारतीय आत्मा के व्यक्तित्व में भावुकता और वैचारिकता का समावेश है। उनकी रचना धर्मिता में काव्य का उद्देश्य है मस्तिष्क का लोक हृदय से संवाद संबंध स्थापित करना।
4: साहित्यकार के लिए यदि अंतर्मुखी होना लाजमी है तो लोक व्यवहार के सामयिक संदर्भों में लोकोन्मुखी होना भी उसकी अपरिहार्य वास्तविकता है। सम्यक कला सृष्टि में भीतर बाहर अथवा भाव और विचार का टकराव नहीं, कल्याण युक्त सम्मेल होता है। अंततः हृदय और मस्तिष्क चैतन्य अंतःकरण के द्वार हैं, जिन्हें सदैव सबके लिए निष्कपट रूप में खुला रखना चाहिए। कलाकार में अहम और इदम का समन्वय ही उसकी कला सिद्धि है और यही साहित्य की सामाजिक उपयोगिता का शाश्वत मूल्य भी है।
3: कलाकार की सामाजिक और कलागत चिंतन दृष्टि के संबंध में भारतीय आत्मा की आत्मस्वीकृति अत्यंत सहज और मानवीय है।
4: दृष्टि जब बाहर को देखती है तब रचनाओं पर समय के पैरों के निशान पड़े बिना नहीं रहते, और जब वो भीतर को देखती है तब मनोभावनाओं के ऐसे चित्रण कलम पर आ जाते हैं जिन्हें समय द्वारा शीघ्र पोछा नहीं जा सकता।
3: माखनलाल जी ने अपने रचना कर्म के औचित्य को इस प्रकार प्रतिपादित किया है।
0: मनुष्य अपनी ही जिंदगी नहीं जीता, उसे अपने जमाने की जिंदगी भी जीनी होती, चाहे वह हंसकर जिए या रोकर जिए। यात्रा चाहे गंगा की जाए, किंतु मूर्तियां तो पत्थर की ही बनी। गंगा और जमुना की न चुकने वाली अथक और अनिवार्य दौड़ के बावजूद यह हम कैसे भूल जाएं कि टेम्स, मिसिसिपी, वोल्गा, यांगटिसिक्यांग और देश देश की भिन्न भिन्न जलधाराओं में मस्ती है, रवानी है, दौड़ है, बेकाबू गति है और उनका किसी महान जलकोष में विलीनकरण। किंतु जलधाराओं की अस्थिरता के पास देव मंदिरों की मूर्तियों की स्थिरता मानो एक दूसरे को कभी कोस रहे हैं और कभी सराह रहे हैं। कभी हमारा जागरण होता है, कभी जब हम अपनी सूझों समेत सो जाते हैं तो सपने जाग उठते हैं। उस समय मानो प्रेरणा और पुरुषार्थ मशवरा से करते नजर आते हैं। लगता है जागरण मन का काम है तो सोना मन का निर्माण। इसीलिए प्रातःकाल जब आंखें खुलती हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारे विचारों की, हमारे आनंदों की, हमारे निर्माणों की, हमारे हृदय की कसमसाहट की, हमारी प्रज्ञा और उपयोगिता की भी आंखें खुल उठती हैं। मनस्वी राधा कृष्णन का यह कहना बिल्कुल ठीक लगता है कि इस समय नैतिक दुर्भिक्ष संकट विश्व पर छाया हुआ है। लगता है काल के घर अकाल पड़ गया। यही समय है जब बड़प्पन पक्का बोझ उतार कर फेंकने की तबीयत है।
1: माखनलाल जी की रचनाओं में निजी अनुभूतियों की सघनता और दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। उनका युग राजनैतिक और बौद्धिक चेतना प्रसार की दृष्टि में अत्यधिक संवेदनशील और क्रियात्मक था। विदेशी हुकूमत के दमनकारी शासन तंत्र के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर खुला विद्रोह अपने चरम उत्कर्ष पर छिड़ा हुआ था। पूर्ण स्वराज के जयघोष में भारतीय आत्मा का स्वर अन्य राष्ट्रीय स्वरों में मिलकर अमर बलिदानी यश का वाहक बना है।
3: उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ओज, पुरुषार्थ और समर्पण की त्रिधाराओं का परम पुनीत कर्म तीर्थ है। उनकी

0: वाणी वस्तुतः उनके हृदय का स्पंदन है, जिसके आरोह अवरोह में स्वाधीनता की सांसें बज रही हैं।
1: यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली, अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र मेरी बोली।
2: पुष्प की अभिलाषा जहाँ भारतीय आत्मा की उत्सर्ग भावना और राष्ट्र प्रेम की निष्ठा को संकेतित करती है, वहीं कवि ने इसके माध्यम से साहित्य की रचनात्मक जीवन मूल्यवत्ता भी प्रतिष्ठित की है।
0: माखनलाल चतुर्वेदी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय कर्म का संवाहक है। वे जन चेतना के अविस्मरणीय प्रेरणा स्तंभ हैं।
2: माखनलाल जी यथार्थतः मानवतावादी प्रकृत मर्यादावादी साहित्यकार हैं। विद्रोह और समर्पण की गंगा यमुना में मानवीय करुणा की सरस्वती की त्रिधाराओं का पवित्र संगम है उनका व्यक्तित्व और महान कृतित्व।
0: श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है,
3: वे कर्म से योद्धा, हृदय से कवि, मन से चिंतक और स्वभाव से संत थे। वे रस सिद्ध ओजस्वी वक्ता थे, ओज उनकी वाणी का अभिनव श्रृंगार था।
2: एक अन्य विचार के अनुसार,
4: वे राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं की ऐसी कड़ी हैं जो अतीत से आदर्श प्रेरणा ग्रहण कर वर्तमान को समर्थ नेतृत्व देकर भविष्य के अनुकरणीय श्रद्धा पुरुष के रूप में समादरित हैं।
2: माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रारंभिक दिनों के ऐसे अग्रणी सेनानी थे जिन्होंने अपने शब्दों के अस्त्रों और भावों की पूंजी से स्वाधीनता की प्रखर स्वाभिमान पूर्ण चेतना को राष्ट्रव्यापी विस्तार दिया।
0: 20वीं शती के प्रारंभिक दशकों में जब हिंदी के कवि अपनी अभिव्यक्ति के लिए नए प्रतीक खोज रहे थे, तब भारतीय आत्मा ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का ऐसा मानवीकरण किया कि वे छायावाद की पहली रचनाओं के रूप में स्वीकार की गईं।
2: इन्हीं रचनाओं ने पुष्प की अभिलाषा को राष्ट्र का बलिपंथी बना दिया। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा को आरंभ और प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी भारतीय आत्मा को ही है।
0: समर्थ कवि की भाषा भावानुवर्तिनी होती है। माखनलाल जी शब्दों के अप्रतिम शिल्पी हैं।
2: प्राकृतिक बिंबों के चित्रकार हैं। उनकी रचनाएं व्यंजना वृत्ति की शक्तिकारिका हैं। उन्होंने आग के छंदों का प्रलयन किया है जिसमें युग की चेतना प्रवाहित है।
0: माखनलाल चतुर्वेदी कला और साहित्य की सार्वजनिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। उनका चिंतन विकासवादी विचारधारा से समन्वित है, इसीलिए राष्ट्रीय चेतना की संश्लिष्ट भावधारा उनके रचनात्मक साहित्य का प्रेरणा स्रोत है।
2: भारतीय आत्मा का निर्बंध काव्य मुक्तक प्रगीत शैली में प्रस्तुत हुआ है। लोक तत्व की उपस्थिति में उनकी रचनाएं गीति संगीत की मधुर सरसता के प्राकृतिक गुण से समन्वित होकर रस की अनमोल गागर है। कथन शैली की नवीनता उनके गीत काव्य को नया उत्कर्ष देती है। शब्द ध्वनि उसका चमत्कार है।

0: न केवल पद्य रचनाओं में उन्होंने नई रसमयी लाक्षणिक शैली का मुक्त प्रयोग किया है, अपितु उनकी गद्य कृतियों में भी भाषा की नई अर्थवत्ता, भाव और रस को अभिनव उत्कर्ष प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम और प्रभावपूर्ण है। दृष्टि भविष्योन्मुखी है।
1: भारतीय आत्मा का मूल स्वर सामाजिक चेतना और स्वस्थ जनवादी विचारधारा की राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा का उन्मुक्त गायन है। उनकी रचना कोकिल का स्वर विद्रोह और समर्पण की रसात्मक अभिव्यक्ति है।

आधारित रूपक भारतीय आत्मा का स्वर। लेखक थे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिन्हा और प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर सुनील केशव देवधर। ये रूपक हमारे आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया था।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए दीवान कनवाल का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमलेश कुमार का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

सुरेश प्रसाद के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं।

0: ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने।

0: की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पछेती धान की वैज्ञानिक खेती विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर JP आदित्य।
5: किसान भाइयों, धान खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और बेहतर आजीविका के लिए जरूरी है। पिछले 5 दशकों में धान के उत्पादन तथा उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 1965 में हमारे देश में धान का उत्पादन 30 मैट्रिक टन था, जो कि आज 108 मैट्रिक टन हो गया है। इस वृद्धि में मुख्य योगदान सिंचित धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियाँ, उर्वरकों का प्रयोग तथा बीमारियों व कीटों के बेहतर प्रबंधन के फलस्वरूप है। इस तरह से जहाँ 1960 के पूर्व के वर्षों में धान का आयात होता था, आज हमारे देश ने न केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मसुरक्षा प्राप्त की है, बल्कि देश से धान का निर्यात होने लगा है। इतना ही नहीं, आज देश में 20 मैट्रिक टन धान गोदामों में सुरक्षित रखा जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान एक प्रमुख फसल है। पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती सिंचित एवं असिंचित दोनों दशाओं में की जाती है। सिंचित धान की खेती पहाड़ी घाटियों में की जाती है, जहां सिंचाई की सुविधा नदी द्वारा उपलब्ध है, जबकि असिंचित धान की खेती उपराऊ क्षेत्र में की जाती है, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और यह क्षेत्र पूरी तरह वर्षा पर निर्भर कर रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित अवस्था में ज़्यादातर क्षेत्रफल में चैती धान की जाती है, जिसकी बुआई मार्च के द्वितीय पखवाड़े से लेकर अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक की जाती है, जो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना होता है, इसलिए इसे चैती धान या चेतकी धान कहते हैं। जो किसान भाई बहन इसकी खेती करते हैं, उन्होंने इसकी बुआई कर ली होगी, क्योंकि इसकी बुआई का समय चला गया है। चैती धान की खेती परंपरागत रूप से प्रचलित 2 वर्षीय फसल चक्र चैती धान, गेहूं, मड़ुआ, परती के अंतर्गत की जाती है। इस फसल चक्र को अपनाने से किसान भाई बहन 2 वर्षों में केवल 3 फसलें ही ले पाते हैं, क्योंकि चैती धान की फसल लंबी अवधि की होती है। अतः हमारे विवेकानंद

पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा धान की कम अवधि वाली प्रजातियों के विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिसकी बुआई जून के प्रथम पखवाड़े में की जाती है, जो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार जेठ का महीना होता है, इसलिए जेठी धान कहते हैं। यह फसल सितंबर अंत या अक्टूबर प्रारंभ में पककर तैयार हो जाती है, जिससे कि आगामी रबी मौसम की कोई भी फसल उगाई जा सकती है तथा इसकी उपज क्षमता भी चैती धान के बराबर ही होती है। इसको अपनाकर किसान भाई बहन 2 वर्षों में चार फसल ले सकते हैं तथा इसको अपनाने से खेत को खाली रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जेठी धान के लिए अनुमोदित किस्म है वीएल धान 221, विवेक धान 154, वीएल धान 156 तथा वीएल धान 157। इन प्रजातियों की उपज क्षमता

धान के बराबर ही होती है। इसको अपनाकर किसान भाई बहन 2 वर्षों में फसल 4 फसल ले सकते हैं तथा इसको अपनाने से खेत को खाली रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जेठी धान के लिए अनुमोदित किस्म है वीएल धान 221, विवेक धान 154, वीएल धान 156 तथा वीएल धान 157। इन प्रजातियों की उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इनकी बुआई के लिए अनुमोदित बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 2 किलोग्राम प्रति नाली है। बुआई के समय पक्ति से पक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा बीज 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। ज़्यादा गहराई में बीज बोने से या तो बीज जमता नहीं है या जमाव में कमी आती है। पुराने एवं अप्रमाणित बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका जमाव कम रहता है। बीजों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अच्छी प्रजाति का खराब बीज या खराब प्रजाति का अच्छा बीज कभी अच्छी उपज नहीं दे सकता है, बल्कि अच्छी प्रजाति का अच्छा बीज ही अच्छी उपज देता है। अच्छे बीज की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अच्छा बीज अनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है। अनुवांशिक शुद्धता हमेशा दृश्य निरीक्षण से निर्धारित नहीं की जा सकती है। अनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका एक विश्वसनीय स्रोत से बीज प्राप्त करना है। इसलिए किसान भाइयों को बीजों की खरीदारी हमेशा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही करना चाहिए, जैसे कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, तराई बीज निगम, पंजीकृत बीज कंपनी या डीलर। अच्छे बीज निष्क्रिय पदार्थों जैसे भूस, खाली तथा टूटे बीज से मुक्त होते हैं। छोटा सिकुड़ा और टूटे बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि पौधे के विकास के लिए इनमें पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध नहीं रहता है। अच्छे बीज का उच्च अंकुरण दर होता है, इसमें कम से कम 80-85% अंकुरण देने की क्षमता होती है, जिससे बीज की आवश्यकताओं की सटीक गणना में सुविधा होती है। इससे बीज का बहुत कम या बहुत ज़्यादा प्रयोग रोकने में सहायता मिलती है। अगर बीज का एक बड़ा हिस्सा नहीं उगता है तो उससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। अच्छे बीज का प्रयोग कर किसान इन नुकसान से बच सकते हैं। अच्छा बीज रोग, कीट तथा घास के बीज से मुक्त होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो बीज के द्वारा फैलती हैं। अगर रोग ग्रसित बीज को अगले वर्ष फसल उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह बीज जनित रोग की गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए अच्छा बीज स्वस्थ एवं मजबूत फसल उगाने के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा अच्छे बीज में तेजी से जड़ की वृद्धि होती है, जिससे वह मिट्टी से पोषक तत्वों को जल्दी एवं प्रभावी रूप से आकर्षित करने में सक्षम होता है। अच्छे बीज का एक समान अंकुरण एवं विकास होता है, जिससे किसानों को समय पर फसल प्रबंधन के तरीके में आसानी होती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जब अज्ञात मूल का बीज हो तो हमेशा याद रखना चाहिए कि केवल एक बीज के नमूने को देखकर उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है। अनुवांशिक दोष, अनुचित सूखापन, रोग और कीट ग्रसित बीज अक्सर खुद को तब तक प्रकट नहीं करते हैं जब तक कि उस बीज को बोया न जाए और उसमें विकास शुरू होना नहीं हो जाता है। इसलिए यकीन के लिए बीज का नमूना एक छोटा सा हिस्सा का परीक्षण कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि यह बीज आपको स्वीकार्य है। किसी भी प्रजाति का 3 प्रकार का बीज उपलब्ध रहता है, जनक बीज, आधारीय बीज और प्रमाणित बीज। जनक तथा आधारीय बीज को प्रमाणित बीज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी बीजों की शुद्धता ज़्यादा होती है, इसलिए यह महंगा होता है। किसान भाई बहन प्रमाणित बीज का प्रयोग कर सकते हैं, यह जनक तथा आधारीय बीज से सस्ता मिलता है। बीज के बोरों पर उत्पादक का नाम, फसल एवं प्रजाति का नाम, बीज की मात्रा, बीज उत्पादन वर्ष, बीजों की शुद्धता प्रतिशत, अंकुरण क्षमता प्रतिशत, बीज उपचार, नमी प्रतिशत अंकित होता है। बीज खरीदते समय बोरों पर लगे टैग से आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का बीज है, क्योंकि जनक बीज के लिए पीला सुनहरा, आधारीय बीज के लिए सफ़ेद तथा प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग का टैग लगता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई अच्छे बीज एवं उससे फसल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। सिंचित धान की अगर बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता असिंचित धान से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फसल नुकसान का जोखिम सूखा के कारण कम होता है। साथ ही इसमें अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां ज़्यादा हैं। हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से सिंचित धान के लिए 2 तरह की प्रजाति विकसित की गई है। पहली वह जो 1 से 15 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिसे अगेती प्रजाति कहते हैं, तथा दूसरी मध्यम प्रजाति है जो 125 से 135 दिन में पकती है। अगेती प्रजाति में मुख्य प्रजाति है वीएल धान 81, विवेक धान 82, वीएल धान 85 तथा वीएल धान 86। इनकी उपज क्षमता लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्यम प्रजातियों में वीएल धान 61, विवेक धान 62,

0: धान 65 तथा व्हील धान 68 मुख्य हैं। इनकी उपज क्षमता लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रजातियां थोड़ी लंबी हैं, इसलिए किसान भाई इनका उपयोग दाना तथा चारा दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंचित धान के रोपाई के लिए पहले नर्सरी की बुआई करने की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी की बुआई रोपाई से 20 से 25 दिन पहले करनी चाहिए। 15 मई से 15 जून तक किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी नर्सरी डालें उसके 20 से 25 दिन बाद पौध की रोपाई कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुरानी नर्सरी लगाने से पैदावार में कमी आती है। जहाँ तक नर्सरी के बुआई के लिए क्षेत्रफल की बात है, तो किसान भाई जितने क्षेत्रफल में रोपाई करना चाहते हैं उसका 1/10 भाग क्षेत्रफल में नर्सरी की बुआई करें। उदाहरण के लिए अगर एक नाली यानी 200 वर्ग मीटर में रोपाई करना चाहते हैं तो इसका 1/10 भाग यानी 20 वर्ग मीटर में नर्सरी की बुआई करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में नर्सरी की बुआई मुख्यतः दो विधियों से की जाती है, सूखी नर्सरी एवं गीली नर्सरी। सूखी नर्सरी में सूखा बीज सूखी क्यारी में छिड़काव विधि या लाइन में बोते हैं तथा मिट्टी की एक पतली परत से ढक देते हैं। सूखे बीज सूखी बेड को अक्सर सिंचित करते रहते हैं। नर्सरी को 20 से 25 दिन के बाद उखाड़ते समय नर्सरी बेड में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे नर्सरी के जड़ को क्षति न पहुँचे। गीली नर्सरी के लिए क्यारी में पानी भरकर 2 से 3 बार खड़ी जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह ले युक्त हो जाए और खरपतवार नष्ट हो जाए। इसमें बीज को पहले 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं। इसके बाद पानी से निकालकर गीले बोरे से ढककर छांव में 24 से 36 घंटे के लिए रखते हैं। बीच बीच में बोरे के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे कि यह बीज अंकुरित हो जाता है और अंकुरित बीज को तैयार लेह युक्त क्यारी में छिड़काव विधि द्वारा बोते हैं। रोपाई हेतु खेत की अच्छी तैयारी के लिए 2 बार सूखी जुताई करने के पश्चात खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देना चाहिए तथा पुनः 2 बार खड़े पानी में जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह लेह युक्त हो जाए। खड़े पानी में जुताई कर पाटा लगाने से खेत की मिट्टी नरम हो जाती है, पानी ज़्यादा समय तक खेत में रुकता है तथा खरपतवार का नियंत्रण होता है। सूखी गोबर की खाद तथा उर्वरकों की आधारीय खुराक अंतिम पाटा लगाने से पहले देनी चाहिए। 20 से 25 दिन पुराना पौध जो कि 4 से 5 पत्ती का हो जाता है, नर्सरी से उखाड़कर रुपाई वाले खेत में 2 से 3 पौधा एक साथ 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई धान की अच्छी फसल उगा सकते हैं तथा अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी। पर्वतीय क्षेत्रों में पछेती धान की वैज्ञानिक खेती विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर JP आदित्य। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विवरण हमारे केंद्र से। इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष एवं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद 2:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म निर्देशक राज खोसला पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। अपराह्न 3 बजे हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी। शाम 5 बजे हिंदी समाचारों के साथ कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैल स्वर का समय रहेगा शाम 5:05 पर, जिसमें हमारे आज के कलाकार होंगे विमला बोरा और साथी। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे रविवार स्तरीय संगीत सभा के अंतर्गत श्री ए वीरैया का कर्नाटक शैली में सैक्सोफोन वादन, ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनते हैं संध्या 5:15 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा तंबाकू निषेध दिवस। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम पुराश के अंतर्गत चर्चा की जाएगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। साथ ही

आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय रहेगा मिशन लाइफ स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। शाम 7 बजे आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक लोकगीत। शाम 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि में जानकारी का विषय रहेगा सब्जियों में कीट प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रताप दिवेकर और संचालक होंगी श्रीमती रेणु सनवाल। भक्ति संगीत का आनंद लीजिए शाम 6:41 पर, जिसमें हमारे आज के कलाकार होंगे मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे सबरस में और रात्रि 9:30 पर सुगम संगीत के तहत। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फनकार में। मैं हूं आपकी दोस्त शोभा पांडे, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के फनकार हैं हिंदी सिनेमा में सस्पेंस, थ्रिलर और मेलोडी के बेताज बादशाह मशहूर निर्देशक राज खोसला, जिनकी आज जयंती है। राज खोसला साहब का नाम जहन में आते ही याद आती है वो रहस्यमयी रातें, वो गहरी परछाइयाँ, वो दिलकश धुनें और गीतों को पर्दे पर इस तरह फिल्माना कि मानो हर शॉट खुद एक कहानी बयां कर रहा हो। उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस सफ़र की शुरुआत करते हैं साल 1956 में आई उनकी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के गीत से, जिसने अभिनेता देव आनंद और राज खोसला की जोड़ी को अमर कर दिया। फिल्म का नाम है CID, संगीत है OP नैयर का और आवाज़ें हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की।

श्रोताओं, फिल्म निर्देशक राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब में हुआ था। उनके बारे में बेहद दिलचस्प बात यह है कि वे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बने नहीं, बल्कि एक पार्श्व गायक बनने का ख्वाब लेकर आए थे। इसीलिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी, लेकिन किस्मत को मंजूर था कि वे सुरों को अपनी फिल्मों के जरिए अमर करें। जब वे गुरुदत्त साहब के सहायक बने तो गुरुदत्त ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके निर्देशन के बाद राज खोसला ने अभिनेत्री साधना के साथ रहस्यमय ट्रिलॉजी बनाई, जिसने सस्पेंस फिल्मों के मायने बदल दिए। इस कड़ी में शामिल थी वो कौन थी, मेरा साया और अनीता, जिसके बाद वे अपने करियर में आगे ही बढ़ते चले गए और कई फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें CID, दोस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, दो बदन, मैं तुलसी तेरे आंगन की और प्रेम कहानी जैसी फिल्में शामिल हैं। आइए सुनते हैं राज खोसला के निर्देशन में बनी वो कौन थी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मदन मोहन की।

श्रोताओं, राज खोसला 1950 के दशक से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्म उद्योग के शीर्ष निर्देशकों, निर्माताओं और पटकथा लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतीय सिनेमा में नियो नोयर शैली लाने के लिए जाना जाता है और अभिनेत्रियों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करने के कारण उन्हें महिला निर्देशक भी कहा जाता था। उन्हें उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 9 जून 1991 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट सिनेमा की वो परछाइयां, वो क्लोजअप शॉट्स और सुरीले नगमे हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। आइए सुनते हैं राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म मेरा साया का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

मेरा साया फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम एक ही फनकार यहीं पर संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उसकी वजह आप हो। ये मुस्कुराहट चेहरे पर एक रौनक सी ले आती है और हमारी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कान, यही तो है खुशनुमा जिंदगी की पहचान। तो श्रोताओं, इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सदाबहार गीत किशोर कुमार की आवाज में। अनोखी अदा फिल्म से शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कौन कहता है कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं? बेशक तस्वीरें बोलती हैं और रूह तक को झकझोर के रख देती हैं। तस्वीरें ही तो होती हैं जो खुद में कई लफ्ज़, कई यादें और कई अफसाने छुपाए रखती हैं। बेशक तस्वीर निर्जीव हो, मगर हमारे मन से निकले अल्फाज उनको सजीव बना ही देते हैं। ये हमारे जीवन का खूबसूरत अफसाना बयां करती है। आइए सुनते हैं इसी तस्वीर से जुड़ा ये गीत माया फिल्म से, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है।

श्रोताओं, मोहब्बत एक एहसास है, एक बेहद ही सुंदर एहसास जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, जो दिलों को जोड़ता है, दूरियों को मिटाता है। ये वो खुशबू है जो हवा में बहती है, वो गीत है जो कभी पुराना नहीं होता। मोहब्बत वो चिराग है जो अंधेरों में भी राह दिखाता है। ये वो सुकून है जो हर दर्द को भुला देता है। ये वो बंधन है जो कभी नहीं टूटता। आइए सुनते हैं इसी मोहब्बत को दर्शाता ये नगमा प्रेम रोग फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। शब्द रचना संतोष आनंद की है और आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

श्रोताओं, जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो तो उसके इंतज़ार में लम्हे सदियों की तरह लगने लगते हैं। इंतज़ार में जब प्यार करने वाला तड़पता है तो दिल से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ यही कहता है। हर शाम से तेरा इजहार किया करते हैं, हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। दीवाने ही तो हैं हम तेरे, जो हर वक्त तेरे मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी इंतज़ार की तड़प को बयां करता अनुरोध फिल्म का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जुल्फों में उसकी बीती मेरी सुबह, जुल्फों में ही बीती मेरी शाम थी। और क्या बताऊं जिंदगी के बारे में, मेरी तो सारी उम्र बस उसी के नाम थी। श्रोताओं, शायरी की जुबा में इन जुल्फों को घटा कहा जाता है। घटा भी वो जिसकी सुंदरता पर मोहित होकर आशिक का दिल अपनी महबूबा के लिए किसी मोर की तरह नृत्य करने लगता है। जुल्फों की खूबसूरती को तमाम गीतों ने अपने अपने लहजे से बयां किया है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत नया दौर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, जिसे संगीत दिया है ओम प्रकाश नैयर ने और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

0: इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: जैसे रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी।
0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार अपराहन के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रथम प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुँचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार

0: खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे सभी कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर आकाशवाणी के बागेश्वर केंद्र से और मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र से भी रिले किए जा रहे हैं। कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैलस्वर में आइए सुनते हैं विमला बोरा और साथियों से कुमाऊनी लोकगीत।

विमला बोरा और साथियों के गए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ अब आज का शैलस्वर कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10 बजे रविवासरी संगीत सभा के अंतर्गत श्री ए वीरैया का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 6:50 पर और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बातें होंगी तम्बाकू निषेध दिवस पर। उत्तरायण कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 5:45 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुराश। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर और वार्ता विषय रहेगा मिशन लाइफ स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। भक्ति संगीत का आनंद उठाइएगा 6:41 पर। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक लोकगीत। आज शाम 7:15 पर आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। विषय रहेगा सब्जियों में कीट प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रताप दिवेकर और संचालक होंगी श्रीमती रेणु सनवाल। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर। सरप्राइज कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं रात्रि 8 बजे। इंद्रधनुष कार्यक्रम होगा 9:15 पर और सुगम संगीत का आनंद उठाएगा रात्रि 9:30 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है सुबह 5:25 पर। विचार बिंदु 6:05 पर, जिसके बाद 6:10 पर आराधना के अंतर्गत भक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। आज की बात आप सुनेंगे 6:40 पर। 6:45 पर सुनिएगा देश गान। विविधा कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 6:50 पर। 7:10 पर आप सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान पाठ। लोकमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कुमाऊनी लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर। 8:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर आप सुनेंगे 9:05 पर। 10:05 पर कार्यक्रम होगा सबरंग। सुरबहार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 10:35 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम होगा 11 बजे। 11:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। घर संसार महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा 12:30 पर। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा रेड्यूज रीयूज और रिसाइकिल का गोल्डन रूल। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे श्रीमती कविता जोशी की वार्ता। विषय रहेगा अभिभावकों के अनुभव हमारी पूंजी। सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा 1:15 पर। 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1296वीं कड़ी। उत्तराखंड के लोकगीत सुनिएगा 2 बजे। 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा वार्ता पर्वतीय क्षेत्रों हेतु कीवी की वैज्ञानिक विधि से बागवानी विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर SK वर्मा। फिल्म संगीत सुनिएगा 2:45 पर और अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत।

कल की सायंकालीन सभा में रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार 6:50 पर और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के

प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। प्रकाश रावत से कुमाऊनी लोकगीत सुनिएगा शैलसोर कार्यक्रम में 5:05 पर। 5:15 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम युववाणी। कल इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी ग्लोबल अभिभावक दिवस विषय दिवस पर अभिभावकों की सीख जीवन की सीख विषय पर। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:45 पर। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चाएं वैश्विक अभिभावक दिवस, विश्व दुख दिवस और मिशन लाइफ ई कचरा कैसे निवारण करें विषय पर। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा श्रीमती ज्योति पत्नी की वार्ता, विषय रहेगा ईजा बाबू प्रति हमारे कर्तव्य और दायित्व। भक्ति संगीत का आनंद उठाएगा 6:41 पर। कल शाम 7 बजे आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। कल इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी डिजिटल कृषि के लाभ और विश्व दुग्ध दिवस विषय पर। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा फसलों पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव विषय पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा 7:40 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। फिल्म संगीत पुनः सुनिएगा इंद्रधनुष कार्यक्रम में 9:15 पर। 10 बजे सुनिएगा सुगम संगीत और रात्रि 10:30 पर एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

मई माह के आखिरी तारीख यानी 31 मई 2026 के इस कार्यक्रम में प्रकृति के खूबसूरत एहसास के साथ आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मौसम ने ऐसी करवट ली है कि समर के पीक में जहां एसी कूलर से नीचे बात ही नहीं होती, हम अपने स्टूडियो में जैकेट पहने हुए हैं और आपसे रूबरू हैं। यही तो खूबसूरती है पहाड़ों की दोस्तों, कि हमेशा खुशनुमा मौसम रहता है। तो साहब, इस मौसम में कहीं ना कहीं शायद आप भी यही गुनगुना रहे हों।

दोस्तों, कितना बढ़िया है ना कि गर्मियों में जाड़ों का एहसास है। लेकिन खास बात यह है कि बदलते मौसम में हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसलिए हम तो दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन हेल्दी फूड, थोड़ा सा प्रिकॉशन और थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ। दोस्तों, आज जैसा कि हमने शुरू में बोला था कि तारीख है 31 मई और आज का दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। तो चलिए आज की बात की जाए इस विशेष दिन के बारे में। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दोस्तों तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हर साल दोस्तों 31 मई को दुनिया भर में लाखों लोग एक ऐसे भयावह संकट को याद करने के लिए रुकते हैं जो सालाना 80 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि तंबाकू का सेवन आज भी दुनिया भर में मृत्यु के सबसे रोके जा सकने वाले कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू महामारी की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए सन 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। ये वार्षिक अभियान तंबाकू के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालता है और इसके सेवन को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष तंबाकू नियंत्रण में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नया विषय निर्धारित किया जाता है। अब आप कहेंगे कि 2026 का विषय क्या है, तो 2026 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। दोस्तों, तंबाकू सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मानव शरीर के लगभग हर अंग को क्षति पहुंचाता है। इसके प्रभाव लगभग लगभग लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते हैं और समय के साथ बढ़ते जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है जो जीवन प्रत्याशा को काफी कम कर सकती है।

सकती है और जीवन की गुणवत्ता को घटा सकती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार धूम्रपान शुरू करने के कुछ ही मिनटों के भीतर अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं। अब अल्पकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं इस विषय पर। जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगती है। इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वालों को सहन शक्ति में कमी, लगातार खांसी और स्वाद और गंध की अनुभूति में कमी महसूस होती है। अगर हम इसके दीर्घकालिक परिणामों की बात करें तो ये कहीं अधिक गंभीर हैं। फेफड़ों का कैंसर तंबाकू से होने वाली सबसे भयानक बीमारी है, लेकिन ये एकमात्र खतरा नहीं है दोस्तों। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एम्फिसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। धूम्रपान करने वालों में धूम्रपान ना करने वालों की तुलना में कोरोनरी हृदय रोग होने की संभावना 2 से 4 गुना अधिक होती है। तंबाकू उपयोगकर्ताओं में मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी, दांतों का झड़ना और अन्य दंत समस्याओं की दर भी काफी अधिक होती है। मुंह तंबाकू के जहरीले रसायनों के संपर्क में आने वाला पहला बिंदु होता है और बार बार संपर्क में आने का सबसे अधिक प्रभाव इसी पर पड़ता है। हालांकि तंबाकू के सेवन का सबसे व्यापक रूप से पहचाने जाने वाला परिणाम फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन इससे होने वाला नुकसान श्वसन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। तंबाकू एक प्रणालीगत विष है जो शरीर के लगभग हर अंग और ऊतक के कामकाज को बाधित करता है। जैसे कि अगर हम आंखों की बात करें तो लंबे समय तक तंबाकू का सेवन मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देता है, और जो कि वृद्ध वयस्कों में दृष्टि हानि के प्रमुख कारण हैं। तंबाकू रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाकर और गुर्दे में रक्त प्रवाह को कम करके पुरानी गुर्दे की बीमारी की प्रगति को तेज करता है, जो विशेष रूप से हाई BP या मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अतिरिक्त तंबाकू रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे शरीर संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिनमें तपेदिक भी शामिल है, जो भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी है। साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि धूम्रपान करने वालों को COVID-19 सहित श्वसन संक्रमणों से अधिक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि सेकेंड हैंड स्मोक क्या है? शायद जानते होंगे, लेकिन चलिए इस विषय पर भी प्रकाश डालते हैं कि तंबाकू का शायद सबसे क्रूर पहलू यह है दोस्तों कि यह निर्दोष लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। निष्क्रिय धूम्रपान किसी और की सिगरेट से निकलने वाले धुएं में सांस लेने से गैर धूम्रपान करने वाले लोग 7,000 से अधिक रसायनों के उसी घातक मिश्रण के संपर्क में आ जाते हैं, जिनमें कम से कम 70 ज्ञात कैंसर कारक शामिल हैं। अब तंबाकू और तंबाकू के हमारे शरीर पर होने वाले खतरनाक जोखिमों की बात तो दोस्तों हमने कर दी, लेकिन इससे कैसे हम छोड़ सकते हैं, इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो चलिए इसकी क्या रणनीतियां हो सकती हैं, इस बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो दोस्तों तंबाकू छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। सही सोच, व्यवहारिक रणनीतियों और चिकित्सकीय सहायता के संयोजन से हर साल लाखों लोग इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे कारगर तरीका कोई एक उपाय नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव, सहयोग प्रणाली और निरंतर प्रयास का मिश्रण है। दोस्तों, उन स्थितियों, भावनाओं या दिनचर्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जो हमें तंबाकू की तलब जगाती हैं, जैसे तनाव, ऊब या सामाजिक परिवेश। एक बार जब इस पैटर्न को हम पहचान लेते हैं तो स्वचालित प्रतिक्रिया देने के बजाय अलग तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, धूम्रपान की जगह सकारात्मक गतिविधियों को अपनाएं।

जो उसी जरूरत को पूरा करती हों, जैसे कि तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लेना, व्यायाम करना या ध्यान करना सीखें, और सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वास से प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अभ्यास करें, साथ ही सहायक लोगों के साथ रहें। दोस्तों, धूम्रपान छोड़ने में सफल होने के लिए या होने वाले कई लोगों के लिए दोबारा उसी स्थिति में लौट जाना एक आम बात हो सकती है और यह प्रक्रिया का एक हिस्सा भी हो सकता है। हर प्रयास आपको अपने ट्रिगर को बेहतर ढंग से समझने और अगले प्रयास के लिए अपनी मुकाबला करने की रणनीति को परिष्कृत करने में मदद करता है। अगर हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचे तो दोस्तों यही कहेंगे कि किसी चीज को छोड़ना एक यात्रा है, कोई एक बार की घटना नहीं। असफलताओं के बावजूद लगातार बने रहना और प्रतिबद्ध रहना ही अंततः दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। तो ये तो बात थी तंबाकू निषेध दिवस पर, और चलिए आपको सुनवाते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत सा गीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

युवाणी कार्यक्रम में घटनाक्रम अंक में दोस्तों आज हम साझा कर रहे हैं जानकारी भारतीय डाक के विषय में। भारत सरकार का संचार मंत्रालय के अधीन संचालित एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट है। इसकी प्रमुख सेवाओं की बातें अगर हम करें तो डाक वितरण, बैंकिंग और बचत योजनाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और बीमा जैसी कई सेवाएं इसके द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य जो इसके हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो भारतीय डाक विभाग सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, पेंशन वितरण और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए पार्सल डिलीवरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो भारत में डाक सेवा का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। आधिकारिक आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1766 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। देश का पहला आधिकारिक डाकघर वर्ष 1774 में कोलकाता में खोला गया था। पिछले कई सालों में डाक वितरण के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है दोस्तों, और यह डाकिये द्वारा चिट्ठी बांटने से स्पीड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से ई पोस्ट के युग में पहुंच गया है। पोस्ट कार्ड 1879 में चलाया गया जबकि वैल्यू पेबल पार्सल यानी कि वीपीपी पार्सल और बीमा पार्सल 1977 में शुरू किए गए। भारतीय पोस्टल ऑर्डर 1930 में शुरू हुआ। तेज डाक वितरण के लिए पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन कोड 1972 में शुरू हुआ। तेजी से बदलते परिदृश्य और हालात को मद्देनजर रखते हुए 1985 में डाक और दूरसंचार विभाग को अलग अलग कर दिया गया। समय की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1986 में स्पीड पोस्ट शुरू हुई और 1994 में मेट्रो राजधानी व्यापार चैनल ईपीएस और वीसेट के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया गया। दोस्तों डाक विभाग की बात हो और डाकिया ना हो, ये संभव है क्या? डाकिया जो है वो डाक विभाग का एक महत्वपूर्ण या ये कहिए कि रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए डाकिये की भी जानकारी साझा की जाए। दोस्तों हर एक पारंपरिक समुदाय के लोक साहित्य में डाकिये का स्थान काफी ऊंचा है। भारत में प्रायः सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डाकिये की कहानियां और कविताएं मिल ही जाती हैं, है ना? पुराने जमाने में हर एक डाकिये को ढोल बजाने वाला मिलता था जो जंगली रास्तों से गुजरते समय डाकिये की सहायता करता था। रात गिरने के बाद खतरनाक रास्तों से गुजरते समय डाकिये के साथ दो मशालची और दो तीरंदाज भी चलते थे। ऐसे कई किस्से मिलते हैं कि जिनमें डाकिये को शेर उठा ले गया या वो उफनती नदी में डूब गया या उसे जहरीले सांप ने काट लिया या वो चट्टान से फिसलने या मिट्टी गिरने से दब गया या चोरों ने उसकी हत्या कर दी। भारत सरकार ने इस खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए जन सूचना निदेशक ने 1923 में संसद को बताया था कि वर्ष 1921-22 के दौरान राहजनी करने वाले चोरों द्वारा डाक लूटने की 57 घटनाएं हुई थी जबकि इसके पहले ऐसी 36 मामले प्रकाश में आए थे। 457 मामलों में से 7 मामलों में लोगों की जाने गई थी, 13 मामलों में डाकिये घायल हुए थे। दोस्तों जो डाक विभाग है वो राष्ट्र को जोड़ने का एक मजबूत साधन है। कैसे चले जानते हैं? डाकघर ने राष्ट्र को परस्पर जोड़ने, वाणिज्य के विकास में सहयोग करने और विचार व सूचना के अबाध प्रवाह में मदद की है। डाक वितरण में पैदल से घोड़ा गाड़ी द्वारा, फिर रेल मार्ग द्वारा, वाहनों से लेकर हवाई जहाज तक विकास किया है। पिछले कई सालों में डाक लाने ले जाने के तरीकों और परिणामों में बदलाव

है। आज डाक यंत्रीकरण और स्वचालन पर जोर दिया जा रहा है, जिन्हें उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने तथा उत्तम डाक सेवा प्रदान करने के लिए अपना लिया गया है। दोस्तों, डाक सेवाओं के सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य हैं जो कारोबारी नजरिए से बिल्कुल अलग हैं। विशेषतः विकासशील देशों में ऐसा ही है। भरोसेमंद डाक व्यवस्था आधुनिक सूचना और वितरण ढांचे का अहम अंग है। इसके अलावा वो आर्थिक विकास और गरीबी कम करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 150 वर्षों से अधिक समय से डाक विभाग देश के संचार का आधार रहा है और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। दोस्तों, अगर हम ये कह रहे हैं तो गलत नहीं है कि भारतीय नागरिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा डाक विभाग। तो ये तो बात हुई डाक विभाग के विषय में, और चलिए कुछ ऐसी ही बात ये भी कर रहे हैं।

और अब दोस्तों कार्यक्रम में समय हो गया है प्रश्नोत्तर का। तो हमारा आज का प्रश्न नोट कीजिए, हमारा आज का प्रश्न है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। तो हमें इंतजार रहेगा आपके प्रश्न

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत छू आपू सभी लोग ना कार्यक्रम में। श्रोताओं आज रविवार छू और हर रविवार हूँ हम आपू लोगों के लिजी लिबेरुनू आपू लोगों के फरमाइशी लोकगीतों कार्यक्रम बुराश जैमें हम आपू लोगों के आपू लोगों की पसंद पर कुमाऊनी और गढ़वल लोकगीत सुनू। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आप लोगों की फरमाइशों के शामिल करूँ आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और आप लोगों की चिट्ठियों के शामिल करूँ और आप लोगों के सुनूल आप लोगों की पसंद पर कुमाऊनी और गढ़वल लोकगीत। तो श्रोताओं कार्यक्रम में फरमाइशों के शामिल करण है पहली बात कर लेनू आज एक खास दिन पर। श्रोताओं आज 31 मई छू और 31 मई हूँ दुनी भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाई जा। श्रोताओं हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई हूँ विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन करी जा ताकि तंबाकू और वीक उत्पादों के सेवन बटी जुड़ी हुई जोखिमों और परिवार समाज और पर्यावरण पर एक नकारात्मक या गलत प्रभावों पर में जागरूकता बढ़ाई जा सको। श्रोताओं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू महामारी तरफ दुनिया ध्यान आकर्षित करणक लीजिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना करी। यह वार्षिक अभियान तंबाकू सेवन बटी जुड़ी हुई स्वास्थ्य जोखिमों बारे में बतू और यह सेवन कम करणक लीजिए प्रभावी नीतियों के बनौन में मदद करूँ। श्रोताओं हर साल तंबाकू नियंत्रण में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करणक लीजिए एक विषय यानी कि एक थीम निर्धारित करी जाए और साल 2026 है कि यानी कि यह साल एक थीम छू आकर्षणक पर्दाफाश करण निकोटीन और तंबाकू की लतक मुकाबला करण। तो श्रोताओं जब आज पूर दुनी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाई जान लाग रो तो हमू के लिए यह बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि तंबाकू सेहतक लीजिए बिल्कुल लभल नहीं है। यह सेवन करने कई प्रकार का कैंसर होने की संभावना सब है ज्यादा है। अनुमान छू कि तंबाकू का सेवन करने हर साल लगभग 1 करोड़ है ज्यादा मन की मर जानी। श्रोताओं तंबाकू केवल स्वास्थ्य के प्रभावित नहीं करन बल्कि अलग अलग तरीके यो पर्यावरण पर ले गलत प्रभाव डालू। श्रोताओं अगर बात करी जाओ तंबाकू के सेवन करने होनी वाली बीमारियों के बारे में तो यह कारण अनेक प्रकार घातक बीमारी मनखी के है सकनी जिसकी यह अलग अलग प्रकार कैंसर है जानी यह के अलावा फेफड़ों की बीमारी यह है मधुमेह यानी कि शुगर एक परेशानी तंबाकू के सेवन करने है जे हृदय रोगों खतर बहुत ज़्यादा यह बढ़ जा यह के अलावा यह मनखियक मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूर्ण तरीके खराब कर दियो।

तंबाकूक सेवन मनखियक मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गलत बहुत न प्रभाव डालू मनखी अपन दिमागक कंट्रोल में नीरून। तो श्रोताओं देखी जाओ तो हर तरफ बटी तंबाकूक सेवन करण हमार स्वास्थ्यक लीजी बहुत हानिकारक छू और यह सेवन करने होनीवल रोग अल्पकालिक ले है सकनी यानी कि कम बखतक लीजिले है सकनी जो कि घातक होनी और दीर्घकालिक ले है सकनी यानी कि बहुत लंब बखत तक ले येल होनी वाल रोग बहुत लंब बखत तक चलनी। और श्रोताओं हर परिस्थिति में तंबाकू सेवन करने जो ले रोग होनी वो बहुत घातक रोग होनी। तो यस में तंबाकू सेवन छोड़न में समझदारी छू हमू के यह बात पर विशेष ध्यान देने चाहे कि येल भल तो किए नहीं हुन लेकिन हमार स्वास्थ्य पूर्व तरीकल बिगड़ जरूर जा। तो श्रोताओं समझदारी यही बात में छू कि हम बखत रहते तंबाकू सेवन छोड़ू अपन आसपास हमू के कोई यस मनखी मिलनी जो बहुत ज़्यादा तंबाकू सेवन करनी धूम्रपान करनी जेल उन स्वास्थ्य पर न प्रभाव पड़ना तो हमू के उनके समझूण चे उनके समझूण हमारी जिम्मेदारी हमारे कर्तव्य ले होने चाहें कि तंबाकू सेवन करण स्वास्थ्यक लीजिए बहुत गलत छू। और श्रोताओं जब हम सब यह बात के समझुल और क्वेल अगर तंबाकू सेवन करण लाग रहो वो अगर यह तंबाकू सेवन करण के छोड़ल तो तब है तंबाकू निषेध दिवस जस यो जो दिन मनाई जान लाग रही मनखियों के जागरूक करणक लीजिए इनके मनोणिक सार्थकता तब सिद्ध हो। तो श्रोताओं कार्यक्रम में अघिल बातचीत आप लोगों दगड़ करते रूल तली आप लोगों को मनोरंजन करनू मुन्नी टमटाक गाई हुई यह कुमाऊनी लोकगीतक दगड़।

0: श्रोताओं, मुन्नी टमटाक स्वर में आपुलोगुन सुनो यह कुमाऊनी लोकगीत और कार्यक्रम में अब अखिल बढ़नू और आप लोगों के सुनोनू मिशन लाइफ स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ विषय पर भैंसिया छाना ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती जो प्रियंका जोशी दगड़ हमारी बातचीत। तो आज हमने कार्यक्रम में शामिल किया है अल्मोड़ा जिले की भैंसिया छाना ब्लॉक की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती प्रियंका जोशी जी को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैम। मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली एक पहल भारत सरकार द्वारा चलाई गई है जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी दैनिक जीवन शैली में पर्यावरण अनुकूल बदलाव करने के लिए प्रेरित करना है। और मैम, आज हम कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी हुई जरूरी चीजों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू
0: मैम। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि मिशन लाइफ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हम जिसको कह सकते हैं, तो मिशन लाइफ एक ग्लोबल मास मूवमेंट है, भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, ताकि हम पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण सुरक्षित रहे। यानी कि हमें इको फ्रेंडली बदलाव के लिए लोगों को प्रेरित करना है इसमें। तो ये मिशन जो है ये 3 सूत्र रणनीति पर काम करता है, जो कि है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। जैसे हमें चीजों का कम उपयोग करना है, जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करना है, पुनः उपयोग करना है और पुनः चक्रित करना है।
0: बिल्कुल। तो मैम, आज हम मिशन लाइफ के अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली की बात करने जा रहे हैं, तो स्वस्थ जीवन शैली से क्या मतलब है, एक स्वस्थ जीवन शैली की क्या पहचान होती है?
1: स्वस्थ जीवन शैली की पहचान ये है कि इस पे हमारा WHO भी कहता है कि जो व्यक्ति सिर्फ बीमारियों से फ्री ही ना हो, बीमारियों से मुक्त ही ना हो, बल्कि वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊर्जावान होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्वस्थ है या स्वस्थ जीवन शैली ये अपना रहा है। जैसे कि सुबह तरोताजा उठना, दिन भर सक्रिय रहना, इसका मुख्य आधार है। जैसे अच्छी नींद लेना, तनाव मुक्त रहना, सकारात्मक रहना और सामाजिक जुड़ाव रहना, जैसे रिश्तों को समय देना, सुखी रहना, तो ये हमारा स्वस्थ जीवन शैली के अंदर आता है।
0: बिल्कुल। इसके अलावा मैम, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर हमें अपना दिन अच्छा व्यतीत करना है तो हमारी कुछ जरूरी जो आदतें होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत करने के लिए कुछ अच्छी आदतों का होना भी जरूरी होता है ताकि हमारा दिन पूरा बेहतर तरीके से व्यतीत हो, तो दिन की शुरुआत किन अच्छी आदतों के साथ किसी को करनी चाहिए?
1: जी बिल्कुल, दिन की शुरुआत अच्छी आदतों के साथ करनी चाहिए, अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी मानसिक शांति के साथ। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे कि रात भर के जो हमारी पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, वो दूर होता है और हमारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। दूसरा, व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट योगा करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, टहलना चाहिए, इससे तरोताजा महसूस होता है। और आजकल जैसे सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का जमाना है, तो हमें स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रहना है, स्क्रीन से दूर रहना है, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बजाय हम सुबह के समय प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, जैसे ध्यान कर सकते हैं, चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं और हरी घास पे हम नंगे पैर चल सकते हैं, जिससे कि हमें प्रकृति महसूस हो, ये चीजें कर सकते हैं। दूसरा, हमें ग्रेटिट्यूड रखना है, कृतज्ञ रहना है अपने हर नए दिन के लिए, हमारी सारी चीजें जो हमारे पास हैं, इसके लिए हमें कृतज्ञ रहना है, ये हमें दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है।

0: जी
1: और साथ ही हमें पौष्टिक नाश्ता करना है, अच्छा खाना खाना है, जिससे कि ये पूरे दिन हमें ऊर्जा देता है।
0: इसके अलावा मैम आपने भी अभी बात करी कि हम प्रकृति के बीच में रह सकते हैं, सुबह उठकर कुछ व्यायाम वगैरह कर सकते हैं, तो नियमित व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है?
1: प्रतिदिन जो हम व्यायाम करते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो मदद मिलती है, साथ में संतुलित रखता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को।
0: जी
1: जैसे इससे शारीरिक चीजें हमारी होती हैं, जैसे हमारी मांसपेशियां जो हैं या हड्डियां हैं वो मजबूत होती है, और उम्र के साथ जो समस्याएं होती हैं जैसे कि हड्डियां कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, तो इसका खतरा भी कम रहता है अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं।
0: जी
1: दूसरा क्या है, हमारा जो हमारा अगर हम व्यायाम करते हैं इससे हमारा रक्त संचार अच्छा बना रहता है, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहते हैं जो हमारी दिल की बीमारियों से हमें बचाता है। और इससे हमारा व्यायाम से हमारी कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिससे कि अनचाहा मोटापा दूर रहता है। और अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं तो रात में अच्छी और गहरी नींद भी आती है।
0: बिल्कुल
1: ये तो हमारे शारीरिक बदलाव हैं। अब इन शारीरिक बदलाव की से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। जैसे अच्छी नींद आएगी तो तनाव और चिंता भी कम हो गया,
0: जी
1: ठीक है। हमारे एंडोर्फिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जिससे कि हमारी तनाव और चिंता को भी कम करते हैं, डिप्रेशन से बचाव होता है। अगर हम शारीरिक व्यायाम करते रहेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर फिट रहता है, तो इससे हम सकारात्मक बदलाव देखते हैं अपने शरीर में और आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है इससे। तो इस
0: जी
1: तरह से व्यायाम हमारा डेली हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है।
0: तो मैम स्वस्थ जीवन शैली की बात हम कर रहे हैं, तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए या फिर स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना कितना जरूरी है और एक व्यक्ति को कितनी नींद लेनी चाहिए?
1: हाँ, प्रतिदिन हमें 7 से 9 घंटे की नींद रात को बहुत जरूरी है। वैसे ये जैसे बच्चों में या स्कूल जाने वाले बच्चों में, किशोर में और जो बुजुर्ग हैं, सब में नींद का अलग अलग समय है, बट अगर हम देखें तो हमारा एवरेज 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इससे हमें क्या होता है कि ध्यान केंद्रित करने में अच्छा रहता है। अगर हम रात को अच्छी नींद लेंगे तो हमारा अगला दिन ऊर्जावान रहेगा, हमें तनाव नहीं होगा, थकान नहीं होगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, जिससे हम अच्छा फोकस कर सकते हैं अपने काम पे। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे कम होती है, बीमार कम पड़ते हैं।
0: जी इसके अलावा मैम खान पान की या फिर हम कहें संतुलित आहार की क्या भूमिका होती है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए या अच्छी दिनचर्या के लिए?
1: जी बिल्कुल, स्वस्थ जीवन शैली में संतुलित आहार की ही भूमिका है सबसे जरूरी। तो ये क्या करता है, अगर हम स्वस्थ आहार लेते हैं, जैसे जो भी हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, विटामिन है, खनिज पदार्थ जो भी हम लेते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं, और जो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कहें तो उसको भी मजबूत करता है। और हमें डायबिटीज और जो भी हृदय रोग वाली जैसे गंभीर बीमारियां हैं इनके भी रिस्क को बहुत कम करता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में लें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो इससे हमें दिन भर सक्रिय रहने की ऊर्जा मिलती है। और जैसे हम जो संतुलित आहार लेते हैं तो इससे हमारा मोटापा और अन्य समस्याएं दूर रहती हैं। और हम अच्छे से जो फल फूल खाते हैं उससे हमें विटामिन सी मिलता है, तो ये हमारी जो कोशिकाएं हैं उसकी मरम्मत करता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में भी ताकत मिलती है। और
0: बिल्कुल
1: अच्छा जो हम भोजन लेते हैं, अगर हमारा उससे शरीर स्वस्थ है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
0: इसके अलावा मैम अक्सर ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की भी सलाह दी जाती है कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और समय समय पर हमें भले ही बहुत कम मात्रा में हम पिए लेकिन लगातार पानी पीने की सलाह दी जाती है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर के लिए क्यों आवश्यक है?
1: जी, पर्याप्त पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखिए मानव शरीर जो हमारा है इसका लगभग 60% हिस्सा पानी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारे अगर हम सही से पानी लेते हैं, पर्याप्त पानी लेते हैं, जो कि हम कहें लगभग 2 लीटर तो पानी हर किसी को पीना चाहिए दिन में, तो इससे क्या होता है कि पानी पीने से हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो हमारे शरीर में बहुत गर्मी होती है, तो अगर हम पानी पीते हैं तो इससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है।
0: जी
1: दूसरा ये क्या करता है, जो हमारे हानिकारक टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है,
2: रहता है, ठीक है। और हमारे इससे हमारे जोड़ स्वस्थ रहते हैं और जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिकाओं तक पहुंचता है हमारे, तो हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है, इससे कब्ज को रोकता है यह और भोजन पचाने में मदद करता है। इससे हमारी पानी पीने से जो हमारा गुर्दे और हमारी जो किडनी की समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। यूटीआई जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसका खतरा भी बहुत कम रहता है। और हम जो पानी पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और त्वचा भी हाइड्रेट रहती है, जिससे कि त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होती हैं, ठीक है। इससे और क्या होता है, पानी की कमी से थकान और सिरदर्द हो सकता है, तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पियेंगे, हमें हाइड्रेशन रहेगा, तो इससे हमें ऊर्जा भी मिलेगी और ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल। अब इसके अलावा मैम, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
2: बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल भी है, जैसे आजकल बच्चे फोन ज्यादा चलाते हैं, तो इसके लिए ये कि बच्चों की आदतें विकसित करने में देखिए, सबसे पहले उनका प्राथमिक जो काम होता है वो है परिवारजन का,
0: जी
2: तो उनके जो परिवार ही है वही प्राथमिक पाठशाला होती है। तो जैसा उनके माता पिता या उनके परिवारजन जो वातावरण रखेंगे, जो अपना कार्यों का नियम रखेंगे, तो वही बच्चे देखते हैं और देख करके सीखते हैं। तो
0: बिल्कुल
2: सबसे पहले तो मैं ये अभिभावक को कहना चाहूंगी, पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना रूटीन ठीक रखें। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि सुबह उठ के आप पानी पी सकते हैं, योगा कर सकते हैं और फोन ना देख करके आप प्राकृतिक चीजों का आनंद ले सकते हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो आपका बच्चा यही सीखेगा। दूसरा, यही आदर्श आप जो प्रस्तुत करेंगे यही बच्चा सीखेगा, बजाय कि आप उन्हें उपदेश दें कि ये करो, आप ऐसे रूटीन बनाओ, इससे अच्छा आप अपना रूटीन बनाएं तो वो बच्चे देखेंगे। दूसरा, परिवार के सदस्य संतुलित भोजन कर सकते हैं, संतुलित पोषण ले सकते हैं, वही वो अपने बच्चों को भी देंगे।
0: बिल्कुल।
2: और दूसरा, बच्चों की शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना है, जैसे उन्हें साइकिलिंग, पढ़ाई के साथ साथ साइकिलिंग या दौड़ना या डांस, फिर योगा एक्सरसाइज, इन सब के लिए बच्चों को टाइम दें, फोन के बजाय उनके लिए रूल सेट करें, उनके नियम बनाएं कि आप इतना टाइम फोन देखेंगे बस, बाकी आप ये फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, इतना टाइम आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा बच्चों को भावनात्मक रूप से बच्चों को आपने समझना है, उनको टाइम देना है, उनकी बातें सुननी है, वो अपने क्या बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं ये सब सुनना है, भावनात्मक समर्थन के साथ स्वच्छता का ध्यान देना है बच्चों का, जैसे छोटी छोटी हाइजीनिक चीजें हैं कि ब्रश करना है, दो टाइम आपने ब्रश करना है, अपने पास रुमाल रखना है, साफ साफ कपड़े पहनने हैं, ये सब चीजें बच्चों को बता सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो मैम, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले कौन से ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए ताकि वो उन स्वस्थ आदतों को अपना सके और अपनाने के साथ साथ लंबे समय तक उन स्वस्थ आदतों के साथ वो बना रहे?
2: जी बिल्कुल, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत अचानक से बड़े बदलाव नहीं आते, तो इसके बजाय हम छोटी छोटी चीजें ही अपने जीवन में हम ला सकते हैं, छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, वही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे हम सबसे पहले पानी का सेवन बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सुबह आप 1 से 2 ग्लास गुनगुने पानी पी सकते हैं, ये हाइड्रेशन रखेगा, आपका ऊर्जा बढ़ाएगा, पाचन क्रिया बढ़ाएगा, तो हम ये छोटे स्टेप कर सकते हैं, जैसे पानी की मात्रा अपने दिनचर्या में बढ़ाया, पानी पिया, और एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है, जैसे 20 से 30 मिनट का योगा करना है, या पैदल चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट से शुरू किया, 30 से 40 मिनट, इस तरह से आदत बनानी है। और चीनी या मीठे को अपने उस पर कम करना है, जैसे चाय या कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें आर्टिफिशियल शुगर होती है, इसे हमें कम करना है, ठीक है, जैसे बिस्किट है, जंक फूड है, जो भी स्नैक्स हम लेते हैं, ये सब कम करना है। इसके बजाय हम मौसमी फल ले सकते हैं, फल जूस ले सकते हैं और ताजी हरी सब्जियां खा सकते हैं। और एक समय का भोजन हमें कम करना है, रात के समय, सुबह हमें बहुत अच्छा एनर्जेटिक खाना खाना है जिससे दिन भर ऊर्जा बनी रहे, और रात के समय हम अपना खाने का आधा हिस्सा कर सकते हैं, और उसमें सलाद हमें रखना है, खाने में सलाद मिक्स कर सकते हैं जिससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहे। और आजकल का टाइम है, जैसे मोबाइल फोन ये सब हमें हैं, स्क्रीन टाइम को हमें बहुत कम करना है, और रात सोने से आधा घंटे पहले हमें बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखनी है, जिससे कि हमें अच्छी नींद आए। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो हम शुरुआत में कदम उठा सकते हैं।
0: जी, इसके अलावा मैम अंत में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए तो अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि शुरुआत करें अपने जीवन को स्वस्थ करने के लिए, यही छोटे छोटे स्टेप से आप शुरुआत करें। अच्छा पानी पिएं, व्यायाम करें, और जैसे कि मैंने बताया स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा यही है कि आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं। तो इन चीजों पे ध्यान दें, योगा करें, अच्छा पानी लें, अच्छा भोजन लें, अपनी दिनचर्या अच्छी करें, छोटे छोटे से शुरुआत करें।

0: जैसे आप WHO की हमारी परिभाषा भी है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊर्जावान रहना है। सुबह उठें, गर्म पानी पिएं, तरोताजा रहें और दिन भर सक्रिय रहें, अच्छी नींद
1: जी
0: लें, व्यायाम करें, अच्छा भोजन करें
1: बिल्कुल।
0: और स्क्रीन टाइम कम करें।
1: तो मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी और आपने स्वस्थ जीवन शैली को लेकर हमारे श्रोताओं के साथ ये बातचीत साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप लोगों सुनी स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित भैंसिया छाना ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती प्रियंका जोशी दगड़ हमारी बातचीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, आप कार्यक्रम में अखिल बर्णू और अब बखत है गो कार्यक्रम में आप लोगों की फरमाइशों के शामिल करण। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबू है पहली फरमाइश जो हमारे पास है रहे जैके हम शामिल कर रखो उके भेजनी वाल हमार श्रोता छे कोसी अलमड़ बटी आशुतोष रावत, रंजना रावत, प्रियांशु रावत और इनर इजबा दनिया अलमड़ बटी प्रिया दिया करण शिवा और इनर दगड़ी और धारानौला अलमड़ बटी अनिल शाह, ज्योति शाह, सुरेंद्र शाह और कमला शाह। और श्रोताओं, यो लिखनी कि हम आकाशवाणी नियमित श्रोता छूं और आकाशवाणी बटी प्रसारित होने वाले लगभग हर कार्यक्रम हम सुननू और उत्तरायण कार्यक्रम में प्रसारित करे जाने वाले जो कुमाऊनी लोकगीत हैं, चाहे शंकर उप्रेती जी हो, चाहे दीवान कनवाल हो, चाहे हीरा सिंह राणा जी हो, यो विख्यात लोक गायकों लोकगीत सुनन उनके बहुत भल लागू। और उन्होंल फरमाइश कर रखी कि हमू के कार्यक्रम में आज हीरा सिंह राणा जी स्वर में एक कुमाऊनी लोकगीत सुने दियो। तो बिल्कुल श्रोताओं, आप लोगों की फरमाइश पर प्रस्तुत छू हीरा सिंह राणा स्वर में यह कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, हीरा सिंह राणा स्वर में आप लोगों सुनो ये कुमाऊनी लोकगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अखिल बढ़नू और शामिल करनू एक और फरमाइश, जैके भेजनी वाल हमारे श्रोता छे रुद्रप्रयाग बटी, कार्तिक, सुरेश चंद, पार्वती देवी, पूजा और इनर परिवारक सदस्य, और गैरसैण बटी अनिल बिष्ट, पंकज जोशी, वीरेंद्र सिंह, जगदीश कारकी और इनर दगड़ी। और श्रोताओं, इन्होल फरमाइश कर रखी कि हमू कहें एक गढ़ वाली लोकगीत सुने दियो। तो श्रोताओं, आप लोगों की फरमाइश पर प्रस्तुत छू समूह स्वर में यह गढ़ वाली लोकगीत।

श्रोताओं, समूह स्वर में अपुलोगुल सुनो यो गढ़वाली लोकगीत। और कार्यक्रम में अब अगिल फरमाइश हमारे पास ऐ रहे सोमेश्वर बटी और भेजणी वाल हमारे श्रोता छे समृद्धि, वैभवी, रिया, अन्विता, प्रमोद कुमार, राजेंद्र सिंह, गोपाल सिंह और परुली देवी, और ताकुला अलमोड़ बटी, चंदन लाल, राजुला देवी, प्रेमा बिष्ट और रेवती देवी। और इनूल फरमाइश कर रखी कि माहेश्वरी बिष्ट और शंकर उप्रेती जी स्वर में एक कुमाऊनी लोकगीत सुने दियो। तो श्रोताओं, प्रस्तुत छू शंकर उप्रेती और माहेश्वरी बिष्टक स्वर में यह कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, आप लोगों सुनो शंकर उप्रेती और माहेश्वरी बिस्टक स्वर में यकुमावनी लोकगीत। और श्रोताओं, अगर आप लोग ले अपन फरमाइशा कुमावनी और गढ़वल लोकगीत सुनन चाचा, तो आप लोग हमुके अपन फरमाइश हमार व्हाट्सएप नंबर के माध्यम भेज सकता। और फरमाइश भेजनक लीजिए हमार व्हाट्सएप नंबर छू 9491101122। तो आप लोग अपन फरमाइशी लोकगीतों के हमुके भेज सकता। और यह के दगड़ आजक उत्तरायण कार्यक्रम इत्ती के संपन्न करने नेहा जोशी के दियो आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:28 हुए हैं। अब कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
0: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
0: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
0: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र ग्यारोला।

0: ले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है और चमोली जिले की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हो गया है। आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी कल कृषि विभाग द्वारा आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यह कार्यक्रम ढाकी सहसपुर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी किसानों, कृषि विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर कृषि भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन तथा कृषि क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों में जन जागरण के लिए 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान KCC निर्माण, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, कृषि यंत्रीकरण एवं विभिन्न योजनाओं के लाभ भी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अल्मोड़ा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के निर्देश पर विकासखंड लमगड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज मेरगांव में बहुउद्देशीय एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विधिक अधिकारों तथा कानूनों की जानकारी आमजन को प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया। शिविर के माध्यम से कुल 629 लोगों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित किया गया।
2: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है। अब श्रद्धालु पूरी

0: श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि आज सुबह केदारनाथ घाटी और पैदल मार्ग पर तेज बारिश और खराब मौसम के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया था। जैसे ही बारिश थमी और मौसम खुला, प्रशासन व पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए सभी पड़ावों पर रोके गए यात्रियों का आवागमन दोबारा शुरू करवाया। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों को मौसम देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।
1: 31 मई को प्रातः काफी बारिश हो रही थी और इसी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहाँ पर हैं वहाँ थोड़े समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो भी वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ

0: मौसम खुला, प्रशासन व पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए सभी पड़ावों पर रोके गए यात्रियों का आवागमन दोबारा शुरू करवाया। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों को मौसम देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।
1: 31 मई को प्रातः काफी बारिश हो रही थी और इसी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहाँ पर हैं वहाँ थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो भी वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
0: चमोली जिले की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हो गया है। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस अनूठे आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना तथा युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर काबीना मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम को सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बना है। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन 31 मई से 2 जून तक किया जाएगा। उत्तरकाशी में मौसम के लगातार बदलते मिजाज के बावजूद चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा और मां यमुना के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। अब तक दोनों धामों में 9,05,498 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन के चलते बीच बीच में बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। मौसम में बदलाव के कारण गंगोत्री धाम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, फिर भी प्रतिदिन 10,000 से 12,000 श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है व्यवस्थाएं अच्छी हैं।
2: मैं मेहरानी से आया हूं, जिला ललितपुर से आया हूं और यहां पे आके हमें काफी अच्छा लगा और काफी बढ़िया तरीके से, मतलब बारिश और ठंड होने के बाद भी हमने गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाई और मतलब काफी बढ़िया व्यवस्था के बाद हमने यहाँ पे दर्शन भी किए और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो काफी बढ़िया व्यवस्था।
0: गंगा सभा समिति के अध्यक्ष संजीव सेमवाल ने बताया कि बरसात के मौसम में भी आस्था के बीच कोई कमी नहीं आई। गंगा सभा समिति ने यात्रियों के लिए खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की है।
3: बारिश हुई और यात्री का जो सैलाब है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। गंगा सभा के द्वारा और मंदिर समिति द्वारा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, जो आग की व्यवस्था जो है गंगा सभा और मंदिर समिति द्वारा जो है किसी प्रकार की जो है यहाँ पर यात्रियों की।
0: शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों विषय पर 2 दिन तक पौड़ी मुख्यालय में चले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया है। यह ऑनलाइन सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार एवं हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा आयोजित किया गया था। पौड़ी गढ़वाल के अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हेमंत काला ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोगों में एआई के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के विषय में जागरूकता करना है। इसमें विश्व भर से 406 शोधार्थियों ने अपने अपने शोध भी भेजे और प्रस्तुत किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है। और चमोली जिले की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हो गया है। आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मन्ना डे के गाए भक्ति वंदन से।

0: सुमन कल्याणपुर से अभी आप ये भजन सुन रहे थे और अब इसी के साथ आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुआ चाहते हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में अंजलि भट्ट।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, सरकार देश का धरोहर स्थलों का संरक्षण का खातिर हर संभव प्रयास करनी चाहिए। आकाशवाणी बटिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी का मौसम में सुरक्षित रहने को आग्रह करी। रुद्रप्रयाग जिला और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होता ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा पर लगी अस्थायी रोक हटाई और चमोली जिला की नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को शुभारंभ भेगी। आयोजन में देश का 28 राज्यों बटिन 933 प्रतिभागी हिस्सा लेना छिन। अब समाचार विस्तार बटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों का संरक्षण का खातिर प्रयासरत छी। आकाशवाणी बटिन मन की बात कार्यक्रम में उन बताए कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ का मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी का पांडु वंश का महर्षि बालार्जुन बटिन जुड़े दुर्लभ तांबे की पट्टियां मिलें।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने बोली कि नीदरलैंड सरकार हाल ही में चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत तक लौटाई जी, जैसे दुनिया भर का तमिल समुदाय में विशेष उत्साह जी। श्री मोदी ने बोली कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का दगड़ी उनका संबंध होते दर्शाती जी।
1: ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी देशवासियों बटिन भीषण गर्मी का मौजूदा मौसम का दौरान अत्यधिक सावधानी बरतन और सरकारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील करी।
1: देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने बोली कि भारतीय आमन वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई जी और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का खातिर बहुत महत्वपूर्ण जी। केदारनाथ धाम यात्रन ये साल नयो इतिहास रेची। 22 अप्रैल बटिन कपाट खुलना बाद 30 मई तक मात्र 39 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं बाबा केदार का दर्शन करीन। आधिकारिक आंकड़ों का अनुसार अब तक 10,497 श्रद्धालुओं केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना केरी। देश विदेश बटिन बड़ी संख्या में पहुंचने वाला श्रद्धालुओं का कारण ये वर्ष यात्रन नयो रिकॉर्ड स्थापित केरी। यह उपलब्धि यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता और श्रद्धालुओं की गहरी आस्था थे भी दर्शाती थी। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमरन बताए कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या तय देखता हुआ सुरक्षा और सुगम दर्शन का व्यापक प्रबंध किए गए। पार्किंग, यातायात प्रबंधन, पैदल यात्रा मार्ग, केदारनाथ धाम परिसर में व्यवस्थाओं तय लगातार सुदृढ़ किए जाणुचे।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: रुद्रप्रयाग जिला और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होता ही प्रशासन और पुलिस यात्रा पर लगी अस्थायी रोक तय हटाई जी। अब श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह

0: दगड़ी बाबा केदार का दर्शन का खातिर अग्नय बढ़ सकदा छिन। आज सुबेर केदारनाथ घाटी अर पैदल मार्ग पर तेज बरखा अर खराब मौसम का कारण यात्रियों की सुरक्षा तय देखदा हुआ प्रशासनन यात्रा तय अस्थायी रूप बटिन रोकी छे। जनी बरखा रुकी अर मौसम खुले प्रशासन व पुलिसन तुरंत सभी पड़ावों पर रोकी गए यात्रा को आवागमन दोबारा शुरू केरी। जिला प्रशासन की तरफ बटिन यात्रियों तय मौसम देखी कर ही यात्रा कन की सलाह दिनी। चमोली जिला की नीति घाटी मा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को शुभारंभ वेगी। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और आईटीबीपी का सहयोग से आयोजित ये आयोजन मा देश का 28 राज्यों बटिन 933 प्रतिभागी हिस्सा लेना छिन। 3 दिवसीय ये आयोजन को उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों तय बढ़ावा दियोन, स्थानीय संस्कृति तय राष्ट्रीय पहचान दिलोन और युवाओं में फिटनेस का प्रति जागरूकता बनोन ची। ये अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में यू आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम तय सीमांत क्षेत्रों तक पहुँचाने को सशक्त माध्यम बताए। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गॉर्डन बताए कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन 31 मई बटिन 2 जून तक किए जालो। अल्मोड़ा का जिला अधिकारी अंशुल सिंगन ब्याली जागेश्वर क्षेत्र को स्थलीय निरीक्षण केरी। ये दौरान उन पर्यटकों की असुविधाओं और व्यवस्थाओं तय और अधिक सुदृढ़ कन का दिशा निर्देश अधिकारियों तय दिने। जिला अधिकारी पुनवा नौला मा बिखरिया कूड़ा पर नाराजगी जाहिर केरी तथा कूड़ा को समुचित प्रबंध का खातिर संबंधितों तय दिशा निर्देश देने। यख उन पार्किंग की आवश्यकता पर बल देंदा हुआ बताए संबंधितों ते बोली कि पार्किंगों का खातिर उपयुक्त भूमि की तलाश किए जाली। ये का बाद जिला अधिकारी अरतौला पार्किंग में यातायात व्यवस्था तथा साफ सफाई आदि की समीक्षा केरी। ये दौरान उन व्यवस्थाओं को निरीक्षण केरी तथा बोली कि जागेश्वर धाम में बढ़ती पर्यटकों की संख्या का दृष्टिगत पार्किंग व्यवस्थाओं तय विस्तृत किए जान आवश्यक ची। ये का खातिर उन लोक निर्माण विभाग का अधिकारियों तय अरतौला पार्किंग तय मल्टी स्टोरी पार्किंग का रूप में विस्तारित कन का खातिर आगणन बनाकर प्रस्तुत कन का निर्देश दिन। उन यख कूड़ा प्रबंधन और शौचालयों की नियमित साफ सफाई कन का निर्देश दिन। चमोली जिला में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा यूं दिनों चरम पर ची। द्वी पवित्र धामों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचड़ा छिन। विशेष रूप बटिन बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन लगभग 30,000 श्रद्धालु दर्शन करना छिन। यात्रा का बढ़ता दबाव का बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ बटिन मारवाड़ी का बीच क्षतिग्रस्त सड़क और मरम्मत कार्य का चलदा यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बनियों ची। सड़क का कुछ हिस्सों में ऊंचा नीचा स्तर और भारी वाहनों की आवाजाही का कारण बीच बीच में वाहनों का खराब होने की घटनाएं भी सामने आनी ची। ये स्थिति में चमोली पुलिसन प्रभावी गेट सिस्टम लागू केरी। चमोली जिला का पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारन बोली कि सोशल मीडिया पर कुछ प्रसारित कुछ तस्वीरों तय जाम की स्थिति बताकर प्रस्तुत किए जानो ची, जबकि वास्तव में वी गेट सिस्टम का तहत व्यवस्थित रूप से खड़ा वाहन छिन। उन बोली कि वर्तमान में मार्ग पर यात्रा नियंत्रित सुरक्षित और सुचारू रूप बटिन संचालित होनु ची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली सरकार देश का धरोहर स्थलों का संरक्षण का खातिर हर संभव प्रयास करनी ची। आकाशवाणी बटिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लोगों से गर्मी का मौसम में सुरक्षित रोड को आग्रह केरी। रुद्रप्रयाग जिला और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होंदा ही प्रशासन और पुलिसन यात्रा पर लगी अस्थायी रोक हटाई। अर चमोली जिला की नीति घाटी मां नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को शुभारंभ वेगी। आयोजन मां देश का 28 राज्यों बटिन 933 प्रतिभागी हिस्सा लेना छिन। ये दगड़ी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यूं अंक समाप्त वे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन ब्रिजवासी के गाए कुछ ब्रिज के लोकगीत।

प्रादेशिक लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मदन मोहन ब्रिजवासी के गाए कुछ ब्रिज के लोकगीत। कार्यक्रम का समापन करते हैं इन्हीं के गाए एक और लोकगीत से।

मदन मोहन ब्रिजवासी के गए इसी ब्रिज के लोकगीत के साथ अब आज का प्रादेशिक लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि।

0: का विषय है सब्जियों में कीट प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रताप दिवेकर और संचालन किया है श्रीमती रेणु सनवाल ने।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
2: नमस्कार काश्तकार बंधुओं, कृषि समृद्धि कार्यक्रम में मैं रेणु सनवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। काश्तकार बंधुओं, आज हमारी चर्चा का विषय है सब्जियों में कीट प्रबंधन और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान डॉक्टर प्रताप दिवेकर महोदय को। नमस्कार महोदय, कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद मैडम, और सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि सब्जियों में कीटों से कितना नुकसान होता है।
3: देखिए मैडम, पहले हम भारत में सब्जी उत्पादन के बारे में थोड़ा समझते हैं। सब्जी उत्पादन में भारतवर्ष विश्व में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। भारत में लगभग सब्जियों का जो उत्पादन है वो है 217 मिलियन टन
2: जी।
3: और उसमें उत्तराखंड राज्य में 10 लाख टन की लगभग मतलब उत्पादन होता है
2: जी,
3: जो कि राष्ट्रीय उत्पादकता से कम है। लेकिन हम पूरे भारतवर्ष में अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है
2: जी।
3: लेकिन हम पूरे भारतवर्ष की भी बात करें और उत्तराखंड की भी बात करें तो इसमें मुख्य एक समस्या जो आती है कीटों की वजह से ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। अगर हम नुकसान का अगर आकलन करें तो उसमें लगभग 25-40% तक विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं जो कि चूसक कीड़े हो गए या कुछ बोरर्स हो गए जो फल भेदक या फल छेदक, उनकी वजह से भी काफी नुकसान आर्थिक क्षति होती है
2: जी।
3: इसलिए सब्जियों में विभिन्न सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीटों की पहचान एवं उनकी नियंत्रण के बारे में जानकारी किसान भाइयों को होना बहुत जरूरी है
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमारे काश्तकार बंधुओं को कीटों से जो उनकी फसलों में नुकसान होता है उत्पादन में वो 25-40% तक होता है, तो ये हमारे काश्तकार बंधु आपसे, क्योंकि हम अभी सब्जी फसलों की बात कर रहे हैं और खरीफ का मौसम चल रहा है, तो इस समय हम आपसे खरीफ में लगने वाली जो हमारे टमाटर की फसल है उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और उनकी पहचान और नियंत्रण हमारे काश्तकार बंधु कैसे कर सकते हैं।
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मैडम। टमाटर में हम देखेंगे तो तीन मुख्य प्रकार के कीट आते हैं। एक होता है फल भेदक सूंडी, दूसरा है तंबाकू की सूंडी
2: जी,
3: और तीसरा है सफेद मक्खी
2: जी।
3: और पहले पहचान के बारे में बात करते हैं
2: जी।
3: फल भेदक सूंडी की बात करें तो यह टमाटर का एक प्रमुख कीट है। इस कीट की सूंडी टमाटर के कच्चे फलों में छेद करके उसके गुदे को खा जाती है
2: जी।
3: जिन फलों में यह सुराख कर देती है उसमें फफूंदी का प्रकोप हो जाता है, फलस्वरूप फल पूर्ण तरह से सड़ जाते हैं
2: जी।
3: और इसकी पहचान की बात करें कीड़े की तो इस कीट की वयस्क मादा भूरे रंग की होती है। इसकी लंबाई 1.5 से 1.7 सेंटीमीटर तथा पंख फैलाने पर भूरे रंग की आड़ी तिरछी
2: धारिया
3: पाई जाती है। अगले पंख पर काली बिंदी जैसी रचना होती है तथा निचले पंख पर काली शिराएं पाई जाती है। ये कीट फूलों, कोमल पत्तियों तथा फूलों के ऊपर एक एक अंडे देती है
2: जी। जो फल भेदक सूंडी होती है वो टमाटर के जो फल हैं उन पे जो है ये एक एक अंडे देती है, तो जिससे कि फल को नुकसान पहुंचता है सर। तो ये हमारे काश्तकार बंधु इसका नियंत्रण कैसे करेंगे?
3: एक जो पहला बहुत ही अच्छा विधि है जिसको हम कल्चरल कंट्रोल कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें होता है कि टमाटर के 16 पंक्तियों के बाद आपको गेंदे की एक लाइन लगानी है। इसके लिए 40 दिन के गेंदे का पौधा होना चाहिए एवं 25 दिन का टमाटर का पौधा जो एक ही साथ आप लगाना चाहिए
2: जी।
3: फिर अगला जो कंट्रोल होता है वो जो एक फेरोमोन ट्रैप आप लेंगे, उसको एक प्रति नाली, एक नाली के लिए आपको एक फेरोमोन ट्रैप लगाना है जो कि नर कीट को आकर्षित करके उसको नष्ट भी कर देना है
2: जी।
3: फिर अगला हम उसके लिए नियंत्रण के बारे में बात करें तो ट्राइकोग्रामा प्रजाति के 1000 से 1200 कीड़ों के अंडे प्रति नाली की दर से फूल, जब भी टमाटर में फूल आने की शुरुआत हो जाए तब 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 12 छोड़ना है
2: जी।
3: और अगर इन उपायों को भी करने के बावजूद भी अगर फल भेदक सूंडी का नियंत्रण नहीं होता है तो हमें जो विभिन्न रसायन या रासायनिक कंट्रोल है उस पर जाना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि CIBRC यानी जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है उनके द्वारा जो प्रमाणित किए जो इंसेक्टिसाइड्स है उसमें जैसे कि ब्रोफेनिलीडिन 20 EC उसकी मात्रा है 0.25 ml प्रति लीटर, क्लोरेंट्रिनिपोल हो गया यानी जिसको कोराजन के नाम से जाना जाता है वो 0.3 ml प्रति लीटर, इस मात्रा से आपको छिड़काव करना है
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमारे टमाटर में दूसरी जो कीट लगती है वो तंबाकू की सूंडी होती है,

0: तो इसकी पहचान हमारे कासकार बंधु कैसे करेंगे और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे?
1: मैडम, ये जो तंबाकू की सुंडी है, यह कीट टमाटर के अलावा शिमला मिर्च, गोभी, सोयाबीन, मूंगफली, तंबाकू और रामदाना इत्यादि फसलों को भी क्षति पहुंचाती है। यह सुंडी मुख्यतः पत्तियों को खाती है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इस कीट की मादा एक वयस्क तितली होती है। इसके अलावा इसके अगले पंखों का रंग गहरा होता है जिस पर लहरदार गहरे धब्बे होते हैं तथा पिछले पंखों का रंग सफेद एवं किनारा भूरे रंग का होता है। वयस्क मादा पत्तियों पर झुंडों में अंडे देती है
0: जी।
1: और उसके नियंत्रण की बात करें तो इसके अंडे झुंड में दिखाई देने पर उसको तुरंत ही तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। और इसका जैविक नियंत्रण की बात करें तो उसमें एक परजीवी कीट होता है जिसको हम लोग पैरासिटॉइड बोलते हैं, जिसका नाम है टेलिनोमस रिमस। उसके अंडे का प्रयोग करके हम लोग एक जैविक नियंत्रण की तरफ भी जा सकते हैं। और अगले जैविक नियंत्रण बात करेंगे तो NPV जो होता है, तो एक वायरस होता है जिसका 5 larval इक्विवेलेंट, इसकी मात्रा 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करें
0: जी।
1: और अगर हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो ऊपर में जो हमने फल विधेयक सुंडी में देखा था, ब्रोफेनिल और कोराजन, ये जो केमिकल्स हैं इनका ही छिड़काव आप कर सकते हैं इसके नियंत्रण में।
0: तो सब तीसरा जो कीट टमाटर में लगता है वो आपने बताया कि सफेद मक्खी लगता है, तो सफेद मक्खी हमारे कासकार बंधु कैसे पहचान सकते हैं और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
1: सफेद मक्खी ये जो कीट होता है, इस कीट की वयस्क एवं शिशु दोनों ही मुलायम पत्तियों के निचले भाग से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और चिपचिपा द्रव निकालकर सूटी मोल्ड उत्पन्न कर देते हैं जिससे पत्तियां गंदी दिखाई देती हैं, फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। अगर इस कीट की हम बात करें तो इस कीट की पहचान के लिए वयस्क जो कीट होते हैं वो सफेद रंग के तथा छोटे होते हैं। शिशु काला अंडाकार होता है तथा प्यूपा जो होता है जो सफेद रंग का होता है
0: जी।
1: अगर इसके हम नियंत्रण की बात करें तो इसके प्रबंधन में क्राइसोपरला कार्निया जो एक प्रेडेटरी इंसेक्ट है, उस परभक्षी कीट का खेतों में हम लोगों को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए
0: जी।
1: और 5 से 6 चिपचिपे पीले ट्रैप, यानी जिसको हम स्टिकी येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, 5 से 6 स्टिकी ट्रैप पर प्रति नाली की दर से प्रयोग करना प्रभावी होता है
0: जी।
1: नीम के तेल यानी नीम ऑयल जो बोलते हैं हम, उसका 3% या मछली के तेल से बना हुआ जो रोजिन सोप होता है उसका 25 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें
0: जी।
1: और अगर हम CIBRC की द्वारा प्रमाणित इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो उनमें हम मुख्यतः देखेंगे सायंट्रेनिप्रोल जो एक दवाई आती है उसका 1.8 ml प्रति लीटर की दर से, अथवा दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है डाइफेनथ्यूरान 50 WPU का 1.2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं
0: जी। तक सब ये तो रही टमाटर में लगने वाले कीट और उनके नियंत्रण की जानकारी। अब जो हम दूसरी सब्जी फसल की बात करेंगे वो शिमला मिर्च की बात करना चाहेंगे, तो शिमला मिर्च जो है इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और इनकी पहचान हमारे कासकार बंधु कैसे कर सकते हैं?
1: शिमला मिर्च के कीट के बारे में बात करें हम लोग तो इसमें मुख्य जो कीट आता है वो आता है थ्रिप्स
0: जी।
1: इस कीट के जो वयस्क एवं शिशु दोनों पत्तियों के उत्तकों को खुरचते हैं एवं रस चूसकर उनको क्षति पहुंचाते हैं। अगर इसके हम इन कीट की पहचान की बात करें तो इस कीट का पंख कटा हुआ दिखाई पड़ता है
0: जी।
1: वयस्क कीट हल्के पीले भूरे रंग का होता है और इसके शिशु बिना पंख के होते हैं। इनके प्रकोप से पत्तियां सफेद धब्बे युक्त एवं मुड़ी हुई दिखाई देती है तथा पौधों का विकास कम होता है। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें तो इसके नियंत्रण में शुरुआती अवस्था में इन कीटों से ग्रसित पौधों एवं पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। हमने देखा था कि सफेद मक्खी भी चूसक कीट है जिसके नियंत्रण के लिए हमने पीला जो मतलब येलो स्टिकी ट्रैप है उसको इस्तेमाल किया था, लेकिन थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आपको नीला वाला जो स्टिकी ट्रैप है जिसको ब्लू स्टिकी ट्रैप बोलते हैं वो उनका इस्तेमाल 5 से 6 प्रति नाली, मतलब 5 से 6 ट्रैप आपने लगाना प्रति नाली इन कीट के नियंत्रण के लिए। और अगर हम रासायनिक दवा की बात करेंगे जो व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी के लिए जो कीटनाशक थे वही उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सायंट्रेनिप्रोल हो गया और डाइफेनथ्यूरान, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं
0: जी।
1: अगर शिमला मिर्च का दूसरा मुख्य जो कीट है उसके बारे में बात करें तो वो है महू, जिसको हम इंग्लिश में एफिड कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में यह कीट मिर्च का एक प्रमुख कीट है। इसकी पहचान की बात करें तो इस फसल पर ये माऊ जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का माऊ का प्रकोप होता है, एक का रंग काला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। इस कीट की वयस्क तथा शिशु दोनों ही मुलायम पत्तियों के निचले भाग तथा कोमल शिराओं का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। अगर इसके नियंत्रण की बात करें तो ये लगभग सफेद मक्खी के लिए नियंत्रण में जो जो प्रभावी उपाय थे
0: वो
1: इस पर भी लागू होते हैं।

0: फिर
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब, इसमें जो शिमला मिर्च है इसमें कटुआ कीट लगता है, तो उसकी जानकारी भी हमारे काश्तकार बंधुओं को दी।
0: शिमला मिर्च में कटुआ कीट लगता है, इस कीट की काले रंग की सूंडी रात्रि में कोमल तनों को काटकर खाती है तथा नई फसलों में पौध अवस्था में सबसे ज्यादा क्षति देखी गई है। ये कीट शिमला मिर्च के अतिरिक्त गोभी, टमाटर, कद्दू वर्गीय सब्जियां, भिंडी, मटर एवं अन्य सब्जियों को भी भारी क्षति पहुंचाती है। इसकी पहचान की बात करें तो वयस्क कीट गाढ़े भूरे रंग की तितली होती है, के अगले पंख पर गाढ़े लहरदार धब्बे होते हैं, परंतु पिछला पंख हल्के रंग का होता है और इसकी वयस्क मादा जो होती है वह जमीन में अंडे देती है। इसके नियंत्रण की हम बात करें तो छोटे खेतों में इनकी सुंडियों को हाथ से चुनकर नष्ट किया जा सकता है, खेतों में पानी भरकर भी इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और तथा प्रकाश प्रपंच यानी जो लाइट ट्रैप होता है उसके द्वारा भी कीट को पकड़कर नष्ट किया जा सकता है। अगर हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो उसमें अधिक आक्रमण होने पर क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधों के चारों तरफ से कर देना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो हमारे जो खुले खेतों में लगने वाले टमाटर और शिमला मिर्च है इसकी हमने बात की, आपसे इसकी जानकारी ली कि कौन कौन से कीट लगते हैं और उसमें नियंत्रण होता है। अब हमारे काश्तकार बंधु आपसे यह जानना चाहेंगे कि अगर पॉली हाउस में उन्होंने कोई भी फसल लगा रखी है तो उसमें कीट नियंत्रण में उन्हें क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए।
0: देखिए, पॉली हाउस बनाने के बाद तथा पहली फसल लगाने से पूर्व पॉली हाउस की मिट्टी का शोधन कर सौरीकरण द्वारा करें, जिससे मिट्टी में पहले से उपस्थित कीट या उनकी जो सुप्त अवस्था होती है या उनके जो अंडे है वो नष्ट हो जाएं।
1: जी, मिट्टी को मतलब खोद कर सूर्य में खुला छोड़ दें ताकि उसमें कीट नष्ट हो जाए।
0: तथा समय समय पर अनुमोदित कीटनाशकों मतलब जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड द्वारा जो अनुमोदित कीटनाशक है उनका शोधन करते रहे तथा फसलों में कीट आ जाने की स्थिति में तुरंत अनुमोदित तरीके से कीट निदान अवश्य करें।
1: जी,
0: फसलों के अवशेष को पॉली हाउस में ना रहने दें जिसके कि उसमें जो कीटों की जो अवस्था विभिन्न अवस्था जो छुप जाती है
1: वो
0: उनका वो विनाश हो सके तथा पॉली हाउस में प्रवेश करने अथवा बाहर आने के तुरंत बाद दरवाजे बंद कर दें। उपरोक्त वर्णित नियंत्रण विधियों का प्रयोग कीटों के प्रकोप के अनुसार ही करें। विभिन्न नियंत्रण विधियों का समेकित प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ध्यान रखें कि रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम से कम हो एवं फसल से आर्थिक लाभ कीट प्रबंधन विधियों पर आने वाले व्यय से ज्यादा हो।
1: जी, मतलब हमारे जो काश्तकार बंधु हैं जो आपने बात बताई है उस पर अगर विशेष ध्यान देंगे तो अपनी आने वाली फसल का जहाँ एक और उत्पादन अच्छा ले सकेंगे वहीं अपनी फसल को कीटों से भी बचा सकेंगे ताकि उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिल सके। काश्तकार बंधुओं, यहाँ आए विशेषज्ञ डॉक्टर प्रताप दिवेकर जी ने सब्जियों में कीट प्रबंधन से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी आपको दी है। आशा करती हूँ कि आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। काश्तकार बंधुओं, यदि आपको इस विषय पर या फिर कृषि से संबंधित किसी अन्य विषय पर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800-1802311 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। कृषि समृद्धि कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा। इसी के साथ मैं यहाँ आए विशेषज्ञ डॉक्टर दिवेकर को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। विषय था सब्जियों में कीट प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रताप दिवेकर और संचालन किया था श्रीमती रीनू संभाल ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुआ जाते हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। शाम के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगड़ में योगिता बिष्ट। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार देशक धरोहर स्थलों संरक्षण लीजिए हर संभव प्रयास कर रहे। आकाशवाणी बटी मनक बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मैशो हेते रूड़ी मौसम में सुरक्षित रुणक अपील करी। रुद्रप्रयाग झील और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक कै हटे है। और चमोली जिलक नीति घाटी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक शुभारंभ हैगो। आयोजनम देशक 28 राज्यों बटी आई 933 प्रतिभागी हिस्से लेरी। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की सरकार देशक अमूल्य धरोहरों संरक्षण लीजी प्रयासरत छू। आकाशवाणी बटी मनक बात कार्यक्रम उन्होंने बता कि ज्ञान भारत अभियानक तहत छत्तीसगढ़क मल्हारम छठू सातु शताब्दी के पांडु वंशक महर्षि बाला अर्जुन हेबे जुड़ी दुर्लभ तांबक 3 पट्टिकाएं मिल रही।
3: भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री को की नीदरलैंड से सरकारल हाल में चोलकालीन ताम्र पट्टिका भारत के लॉटरी जैल दुनी भरक तमिल समुदाय में खास उत्साह छू। श्री मोदी को की यू पट्टिकाएं चोल साम्राज्य समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों दगड़ उनर संबंधों के दर्शानी।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: श्री मोदी देशवासियों हेते आजकल बहुत उमाओं के मौसम के दौरान सावधानी बरतन और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहे।
3: समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: श्री मोदी को की भारतीय आमल वैश्विक बाजार तक पहुंच बन रहे और आम हमेर कृषि अर्थव्यवस्था की जी बहुत जरूरी थी। केदारनाथ धाम यात्रा यो साल नई इतिहास रच है। 22 अप्रैल हते कपाट खुलने बाद बटी 30 मई तक सिर्फ 39 दिनों में 10 लाख हवे ज्यादा श्रद्धालुओं बाबा केदारक दर्शन करेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आज तक 10,497 श्रद्धालुओं केदारनाथ धाम पुजबेर पूजा अर्चना करी है। देश विदेश बटी बहुत संख्या में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं कारण यो साल यात्रा नई रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। यह उपलब्धि यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में करी गई व्यवस्थाओं प्रभावशीलता और श्रद्धालुओं को गहरी आस्था के लिए दर्शी। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमरल बता कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के देखते हुए सुरक्षा और सुगम दर्शन का व्यापक प्रबंध करी जा रही। पार्किंग, यातायात प्रबंधन, पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम परिश्रम व्यवस्थाओं के लगातार भल करी जा रो। प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। रुद्रप्रयाग झील और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिसल यात्रा पर लगाए अस्थायी रोक के हटे है। अब श्रद्धालु पूर्व श्रद्धा और उत्साह दगड़ बाबा केदारनाथ तक दर्शनक लीजिए आगिल जा सकनी। बता दियूं कि आज रत्ती केदारनाथ घाटी और पैदल मार्ग पर भौतिक और खराब मौसम कारण यात्रियों की सुरक्षा

0: कहें देखते हुए प्रशासनल यात्रा कहें अस्थायी रूपल रोके छी। जशद जो रुको और मौसम साफ हो, प्रशासनल और पुलिसल उससे मुस्तैदी दिखाते हुए सभी पड़ावों पर रोकी गई यात्रियों का आवागमन दोबारा शुरू कर है। जिल प्रशासनक ओर बटी यात्रियों कहें मौसम देख बे रहे यात्रा करनक सलाह दीजे रहे।
1: इनको प्रातः काफी बारिश हो रही थी और इसी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थ यात्री जहाँ पर हैं वहाँ थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो कि वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभाल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
0: चमोली जिला नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक शुभारंभ है गो। पर्यटन विभाग बटी भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोगल है यो आयोजन।

0: चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभाल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
1: चमोली जिला नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक शुभारंभ है गो। पर्यटन विभाग बटी भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोगल है यो आयोजन। देशक 28 राज्यों बटी आई 933 प्रतिभागी भाग ले रही। 3 दिनी यो आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के बढ़ावा देन, स्थानीय संस्कृति के राष्ट्रीय पहचान दिलान और जवान नंतिनु में फिटनेस प्रति जागरूकता बढ़ान छू। यह मौके पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी कौ की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व यो आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मुहिम के सीमांत क्षेत्रों तक पुजाणक सशक्त माध्यम बन गो। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ल बता कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन 31 मई बटी 2 जून तक करी जान। अल्मड़क जिलाधिकारी अंशुल सिहल बेई जाक्षर इलाकक स्थलीय निरीक्षण करो। यो एक दौरान उन्होंने पर्यटकों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के आय ज्यादा भल करनक निर्देश अधिकारियों के दी। जिलाधिकारी पनवा नौलाम इथा उथा पड़ी गद्दर के निबेर नाराजगी जताए और गद्दरक समुचित प्रबंधन लीजी संबंधितों के दिशा निर्देश दी। यहाँ उन्होंने पार्किंग जरूरत पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों हेतें कौ की पार्किंग लीजी उपयुक्त जमीनक तलाश करी जाओ। यह एक बाद जिलाधिकारी अड़ताला पार्किंग यातायात व्यवस्था और साफ सफाई की समीक्षा करी। यो दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करो और कौ की जाक्षर धाम बढ़ती पर्यटकों की संख्या के ध्यान में धरते हुए पार्किंग व्यवस्थाओं के विस्तृत करी जान जरूरी छू। यह लीजिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों हेते कौ की अड़ताला पार्किंग के मल्टी स्टोर पार्किंग रूप में विस्तारित करनक लीजिए आगणन बनाबेर प्रस्तुत करो। उन्होंने यहाँ गद्दर प्रबंधन और शौचालयों को रोज साफ सफाई करनक निर्देश ले दी। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा आजकल चरम पर छू। द्वीय पवित्र धामों में हर दिन बहुत संख्या में श्रद्धालु पूजेरी। विशेष रूपल बद्रीनाथ धाम हर दिन लगभग 30,000 श्रद्धालु दर्शन कर रही। यात्रा के बढ़ते दबाव के बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योतिर्मठ बटी मारवाड़ी के बीच क्षतिग्रस्त सड़क और मरम्मत कार्यों के चलते यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बन रहा। सड़क का कुछ हिस्सों में उच्च नीचे स्तर और भारी वाहनों का आवाजाही कारण बीच बीच में वाहनों खराब होना घटना लय सामने आ रही। इस स्थिति में चमोली पुलिस प्रभावी गेट सिस्टम लागू कर रहा। चमोली जिला पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारल कौ की सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ तस्वीरों के जामक स्थिति बतबेर प्रस्तुत करी जा रहा, जबकि वास्तव में ऊ गेट सिस्टम के तहत व्यवस्थित रूप ठड़ गई करी गई वाहन छन। उन्होंने कौ की एल में मार्ग पर यातायात नियंत्रित सुरक्षित और सुचारू रूप संचालित हो रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार आय सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार देशक धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे। आकाशवाणी बटी मनक बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मैसू हेते रूड़िक मौसम में सुरक्षित रूणक अपील करी। रुद्रप्रयाग जिल और केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम साफ होते ही प्रशासन और पुलिस यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक के हटे है और चमोली जिला नीति घाटी नीति एक्सट्रीम रनक अल्ट्रा रनक शुभारंभ है गो। आयोजन देशक 28 राज्यों बटी आई 933 प्रतिभागी हिस्से ले रही। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है थ्री इडियट्स फिल्म से, आवाज़ें कुमार सोनू निगम और शांतनु मोइत्रा की हैं।

आओ अब लौट चलें। जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, उदित नारायण और जस्टिन दत्त नरूला की आवाज़ों में।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद राज आनंद का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है हद कर दिया आपने।

0: कुछ कुछ होता है।
1: जी हाँ, नाम है फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, उदित नारायण, अलका याग्निक और मंजीत अख्तर का गाया हुआ। प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: उदित नारायण, अलका याग्निक और मंजीत अख्तर की गायक कुछ कुछ होता है फिल्म के संगीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस।
1: 19वीं सदी दे गुलाम फरीद नू हुण तक दी पंजाबी सूफी शायरी दा आखरी वड्डा शायर मन्या जांदा है। बाबा शेख फरीद ते ख्वाजा गुलाम फरीद विच 7 सदियां दा फासला है। मिलन दी पुकार सदियां दा हनेरा चीर के फरीद तो फरीद तक मन दियां तारां लरजा जांदी है। गुलाम फरीद दियां काफियां दा रंग गुड़ा मुल्तानी है। इस काफी विच ओ कह रहे ने, मेरे यार सिपाहिड़ा आवास मेरे कोल।
0: कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेंद्र कौर का गाया ये गीत।

इला अरुण से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम में आइए सुनते हैं एक और गाना। गायक कलाकार हैं शान और सागरिका।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। प्रोग्राम में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह से गजल।

बशीर बद्र की लिखी ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी जगजीत सिंह की। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं आशा भोसले और गुलाम अली से ये गज़ल।

आशा भोसले और गुलाम अली से ये गजल अभी आप सुन रहे थे, और अब इसी के साथ आज का सफरस कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी। भारत ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की प्रशंसा की। राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में मनु भाकर और सम्राट राणा का शानदार प्रदर्शन, रजत पदक किए अपने नाम। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारत की मेंस डबल्स जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में खेल मंत्री ने कहा कि इस जीत के साथ 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। डॉक्टर मांडविया ने इसे भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। आइए जानते हैं किसी प्रकार भारतीय जोड़ी ने कुशल खेल प्रदर्शन करते हुए खिताब को अपने नाम किया है।
1: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने आज पुरुष डबल्स फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री की जोड़ी को हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती गेम में पिछड़ने के बाद रोमांचक मुकाबले में 18-21, 21-17 और 21-16 से जीत दर्ज करते हुए सुपर 750 का अपना तीसरा खिताब ही हासिल किया। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज इस भारतीय जोड़ी के लिए ये जीत महत्वपूर्ण है। सात्विक और चिराग ने पिछली बार 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था। तब से वो 4 फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन हर बार उप विजेता रहे। सिंगापुर में जीत के साथ उन्होंने खिताबी सूखे को भी समाप्त कर दिया है। फाइनल से पहले भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया की इस जोड़ी के खिलाफ खेले गए 3 मुकाबलों में से 2 में हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रतिद्वंदी जोड़ी के खिलाफ उनकी पिछली हार जनवरी में मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में हुई थी। कड़े मुकाबले वाले पहले गेम में पिछड़ने के बावजूद भारतीय जोड़ी ने अपने खेल की गति बढ़ाई और लंबी रैलियों में दबदबा बनाते हुए विश्व नंबर 3 इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ मुकाबले का रुख पलट दिया। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के मौजूदा विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त किम वोन हो तथा सियो सेंग जे की जोड़ी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन इस भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 2 वर्षों में अपना पहला खिताब जीता। ये उनके करियर का 9वां BWF विश्व टूर खिताब है। अब सीधे रुख कर लेते हैं अहमदाबाद की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट का महामुकाबला जारी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 74 रन बना लिए हैं। फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। साई सुदर्शन ने 12 रन की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल ने 10 रन बनाए। निशांत सिंधु ने 20 और जॉस बटलर 19 रन पर आउट हुए। अभी वॉशिंगटन सुंदर और अरशद खान क्रीज पर मौजूद है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो जैकब डफी ने 3 ओवर में 22 रन दिए। भुवनेश्वर कुमार ने 11 रन दिया है 2 ओवर में। जॉश हेजलवुड ने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए। वहीं रशिक सलीमदार ने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। अब रुख कर लेते हैं एथलेटिक्स की ओर। भारत ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ चीन शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 18 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें संस्करण में रांची में आयोजित हुए फेडरेशन कप में 100 मीटर फ्री स्टाइल दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने भारत के दोनों एथलीटों से फोन पर बात भी की और उनके संघर्ष की कहानी सुनी।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर

0: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके दौड़ ले या खेल ले। जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और

0: तू पार्टिसिपेट कर. मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली.
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ. अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ. मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं. तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था. मैं बहुत खुश होता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है. तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया. तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है. वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो. तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा. मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा. तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो. तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है. तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता वो देखती है.
1: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो.
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर. फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी. उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा. तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा. तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे. तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं. और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है. तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है. तो वो भरोसा जब मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और आज हर इंडियन बोलता है इंडियन स्प्रिंट कर.
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है.
3: गुरिंदर वीर और अनिमेश ने शुभकामनाएं और प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. अब रुख कर लेते हैं निशानेबाजी की ओर, जहां निशानेबाजों ने कई पदकों पर निशाना साधा. म्यूनिख में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में मनु भाकर और सम्राट राणा ने रजत पदक जीता.
4: राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप के आखिरी दिन मनु भाकर और सम्राट राणा की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा. भारतीय जोड़ी को चीन के विश्व नंबर एक और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन याओ क्यानसुन और हु काई ने 0.3 अंक से मात देकर स्वर्ण पदक जीता. भारत रजत पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा. भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते जबकि चीन 4 स्वर्ण और 3 कांस्य के साथ पहले स्थान पर रहा. जर्मनी के म्यूनिख में मनु और सम्राट की शुरुआत धीमी रही. 5-5 शॉट की पहली सीरीज के बाद भारतीय जोड़ी ने कुल 100 का स्कोर किया और 4 टीमों के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही. इसमें सम्राट ने 51 और मनु ने 49 का स्कोर किया. दूसरी सीरीज में मनु ने अपनी लय पकड़ते हुए 51.5 का शानदार स्कोर किया जबकि सम्राट के 49.9 के स्कोर की मदद से ये जोड़ी दूसरे स्थान पर पहुंच गई. तीसरी सीरीज के आखिर में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी के साथ अंकों का अंतर घटाकर सिर्फ 0.1 कर दिया. इसमें मनु ने 51.8 का बेहतरीन स्कोर किया जबकि सम्राट ने भी 50.7 का एक और अच्छा स्कोर किया. अगली एलिमिनेशन सीरीज में सम्राट ने 31.2 का स्कोर किया लेकिन मनु के 19वें और 20वें शॉट में चूकने से चीन की जोड़ी को वापसी करने का मौका मिल गया. मनु ने आखिरी सीरीज की शुरुआत 10.6 के स्कोर से की लेकिन सम्राट सिर्फ 8.8 का स्कोर ही कर पाए जिससे चीनी जोड़ी की बढ़त और बढ़ गई. याओ ने 23वें शॉट में खुद 8.7 का स्कोर किया लेकिन हु काई ने 3 शॉट में 10 से ज्यादा का स्कोर करके इसकी भरपाई कर दी. इस बीच भारतीय जोड़ी बढ़त को सिर्फ 0.3 अंकों तक ही कम कर पाई जिससे उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया. आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन.
3: अब बात कर लेते हैं.

0: शतरंज पर भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अपने हमवतन आर प्रज्ञानंदा को क्लासिकल मुकाबले में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए और खिताब की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा, जबकि महिला वर्ग में दिव्या देशमुख शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं मैग्नस कार्लसन को वेस्ली सो से हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला जेस्पर डी जोंग से जारी है, जबकि महिला सिंगल्स में मार्ता कोस्तियुक ने दिग्गज ईगा स्वायतेक को हरा दिया। वहीं प्रतियोगिता में उलटफेर का दौर जारी है। फ्रांस की डायने पेरी ने छठी वरीयता प्राप्त अमांदा अनिसिमोवा को 3 सेट तक चले मुकाबले में हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड में जगह बनाई। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाने के लिए इंपैक्ट प्लेयर नियम को खत्म करने के सुझाव दिए। दिग्गज बल्लेबाज सचिन ने पुरस्कार समारोह में कहा कि इससे खेल संतुलन सुदृढ़ होगा।
1: The impact player needs to go away. That is my personal opinion. I feel when T20 format, you just have to play 20 overs and then you are adding one more batter to that lineup where bowlers are already being challenged. I find that imbalance. The second one may be a suggestion that the power play of 6 overs with field restrictions, only 2 fielders allowed outside the ring. Let the first 4 overs be batter's power play with same field restrictions, and post that the remaining 2 power play overs should be determined by the fielding captain as and when he wants to take. But those 2 consecutive overs will also get 1 fielder extra outside the ring at any stage of the game. So, you know, you are able to control the game better. And 1 bowler should be allowed to bowl 5 overs. Because you would invariably, the best bowler of the side is going to bowl that 5th over. Wouldn't you want to see that best bowler bowl more? Like the top batters are batting sometimes even 20 overs. Why shouldn't the best bowler be bowling 5 overs?
0: सचिन तेंदुलकर ने युवा वैभव सूर्यवंशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैभव ने लाइन एंड लेंथ पिक करके शानदार बल्लेबाजी की है।
1: It was magnificent. I mean, it's something truly special. And not just the ability to hit the ball, but what also fascinated me was the wrist work that he has. And that allows for any good batter to be able to play in all directions of the ground. You need good wrist work. And he's not slogging the ball. He's just picking the line and length earlier than the rest of the guys, and he's able to clear the rope comfortably.
0: रुक कर लेते हैं स्क्वैश की ओर। भारत के अभय सिंह और वीर चोटरानी ब्रिटिश ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं रमित टंडन और अनाहत सिंह इस पीएसए डायमंड स्तर के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां फाइनल मुकाबला जारी है। गुजरात टाइटंस ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। राहुल तेवतिया अभी अभी क्रीज पर आए और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिक

0: नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
3: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
2: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
3: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
2: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
3: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग-अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinderveer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power Manohar Lal today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को अभी आप सुन रहे थे शगुन फिल्म में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार खयाम। आइए सुनते हैं चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत, जिसके रचनाकार हैं एक बार फिर साहिर लुधियानवी। फिल्म का नाम है फासना।

इंद्रधनुष कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए प्रेम पर्वत फिल्म के इस गीत से। शब्द रचना जानिसार अख्तर की, धुन जयदेव की।

लता मंगेशकर के गाए प्रेम पर्वत फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं निदा फाजली की गजल, जिसे आवाज दी है चंदन दास ने।

0: जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन, साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत कार्यक्रम में समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। प्रोग्राम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह की गई गजल, जिसे लिखा है कतील राजस्थानी ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय

गुलाम अली की गाई ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे, और आवाज़ के सुगम संगीत प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं अहमद फराज की गज़ल। फनकार हैं मेहदी हसन।

0: मेहदी हसन की गाई इसी गजल के साथ अब आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया इज अ रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
2: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड

0: आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर पियर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एर्रैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग बृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: You have been listening to the saxophone recital by Sri Asanapurappu Yerraya and party in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on special dolu by Sri V. N. Balachandar. This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र

0: 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ou Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Second